मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म

कॉम वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फिरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा भोर सुहानी की। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 5:38 और 54 सेकेंड। दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत सिर्फ दो दिलों के बीच का रिश्ता नहीं होती, मोहब्बत अपने काम से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, अपनी जिम्मेदारियों से और सबसे बढ़कर जिंदगी से भी होती है। जब दिल में नेकी और अपनापन हो तो हर रिश्ता खूबसूरत बनता है और हर दिन एक नई रौनक लेकर आता है। इन्हीं खूबसूरत जज्बातों से सजा ये अगला नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस गीत को अपनी बहुत ही शानदार आवाज से यादगार बनाया है किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब और शैलेंद्र सिंह ने। इन तीनों महान गायकों की ऊर्जा ने और इस अंदाज ने इस गीत को एक अलग रंग दिया है, एक अलग ताजगी बख्शी है। तो आइए इस खुशनुमा सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट, सकारात्मक सोच और दिल में मोहब्बत के इस एहसास के साथ करते हैं। कहते हैं हर दिन किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, हो सकता है आपका एक अच्छा लफ्ज, एक छोटी सी मदद या एक सच्ची दुआ किसी की पूरी सुबह खूबसूरत बना दे, पूरा दिन खूबसूरत बना दे। मोहब्बत बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है, और इसलिए अपने अल्फाज में मिठास रखिए, अपने व्यवहार में अपनापन और अपने दिल में उम्मीद। इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं इस बेहद खूबसूरत परवरिश फिल्म के नगमे के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। सुबह के 5:53 और 35 सेकेंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का स्वागत है। और श्रोताओं, ये वक्त है कि हम आपको ये बताते हुए आगे बढ़ें कि आज हमारे साथ इस सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुनीता चौहान। और 6:44 पर आप सुनेंगे श्री राम चरित्र मानस गान बालकांड भाग 104 आप सुनेंगे, जिसे लेकर आपके बीच रहेंगी सुनीता चौहान। 6:55 का समय होगा संस्कृत में समाचार का और 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में। सात बजकर पांच मिनट पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

7:10 पर आप सुनेंगे योग पर आधारित कार्यक्रम। और उसके पश्चात आप सुनेंगे गोल्ड सुप्रभात।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है, 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि

0: की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को, जनता को, संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी।

0: स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इको सिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
1: उत्तर प्रदेश आरक्षिबलिना श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य दानराशि वंचना प्रकरणे प्रथम सूचना प्रतिवेदनाधारेण अष्टौ जनाः निगडिताः। इदं तावत् प्राथमिकं प्रतिवेदनं मुख्यमन्त्रिणः योगिनः आदित्यनाथस्य निर्देशेन विशेष निरीक्षण दलस्य अनुशंसानन्तरं पञ्जीकृतम् आसीत्। इदं प्रकरणं श्रीरामजन्मभूमितीर्थक्षेत्रन्यासेन प्राप्तानाम् उपहाराणां दानानां च वञ्चनासम्बद्धारोपाणां प्रकाशनानन्तरं सम्मुखम् आगतम्। न्यासस्य अनुरोधेन मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन एकस्य विशिष्टनिरीक्षणदलस्य सङ्घटनाय आदेशः प्रदत्तः। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् सोमवासरं यावत् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, पूर्वीयोत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्रोत्तराखण्डेषु, लक्षद्वीपस्य कतिपयक्षेत्रेषु च तडित्पातस्य सम्भावना अस्ति। कोलकाता दुर्घटनायां आहतानां संख्या एधित्वा षोडश संजाता अस्ति। तत्र व्रणितानां उपचारः एसएसकेएम चिकित्सालये प्रवर्तते इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में दो नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के दो विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए।

अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। एफआईएच पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: has risen to 920. Nearly 3,300 people have been injured. Rescuers are searching through the rubble in a rush to save lives after earthquakes struck near the capital. The United States has conducted strikes against Iran, saying the action was in response to a drone attack on a cargo ship in the Strait of Hormuz a day earlier. The U.S. Central Command, CENTCOM, said its forces targeted missile and drone launch sites as well as coastal radar installations across Iran overnight. The strikes came shortly after U.S. President Donald Trump told reporters at the White House one will find out if there will be consequences for Iran's violation of the ceasefire agreement. Meanwhile, Iran's military spokesperson Ibrahim Al-Fikr said that Iran's response to the U.S. attack this time will be swift and decisive. In a series of posts on social media, Al-Fikr said that Iran will choose the appropriate time and place to answer back. In FIFA World Cup 2026, France defeated Norway 4-1 in Group 1 clash at Boston Stadium in Massachusetts, U.S. Ousmane Dembele scored a first-half hat-trick, helping France to finish atop of Group 1. In other Group 1 fixtures, Senegal defeated Iraq 5-0 in Toronto. This big win keeps Senegal in contention of reaching the last 32 as one of the best third-placed teams. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashed Pakistan 7-1 at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London. After Abu Bakar gave Pakistan an early lead, India staged a remarkable comeback with seven different goal scorers. Sukhjit Singh and Harmanpreet Singh scored in the second quarter, while Hardik Singh, Jugraj Singh, Abhishek and Rajkumar Pal added four more goals in the third. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह एक वक्फे के बाद।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओ
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर, क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कैसे क्लिक में, अरे वाह।
7: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नई सुबह का नया प्याम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी, और आज एक बार फिर मेरे साथ हैं मेरे साथी
1: शबीर अहमद वानी। समीन, मेरा भी सलाम कबूल फरमाएं। हमारी यही दुआ है कि आप जहां भी रहें आबाद रहें, शादाब रहें।
0: शबीर, कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो दरवाजे पर दस्तक नहीं देती, बल्कि खामोशी से दिल में उतर जाती हैं। खिड़की से आने वाली रोशनी, ठंडी हवा का लमस और एक नए दिन की खुशबू इंसान को जिंदगी की तरफ दोबारा मुतवज्जा करती है।
1: निज़ामी साहब, और शायद जिंदगी का हुस्न भी यही है कि हर तलू आफ्ताब के साथ हमें एक नया मौका मिलता है सोचने का, सीखने का।

0: और अपने गिर्द पेश को बेहतर बनाने का।
1: बिल्कुल सही, और साथ ही मौका मिलता है अपने ख्वाबों को पूरा करने का, अपने मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने का। शबीर, माशरे की तामीर सिर्फ बड़े मंसूबों से नहीं होती बल्कि छोटे छोटे मजबूत रवैयों से भी होती है।
0: जी, एक मुस्कुराहट, एक अच्छा लफ्ज और दूसरों के हकूक का एहतराम बज़ाहिर मामूली बातें हैं, मगर इनका असर जो है बहुत दूर तक जाता है। निज़ामी साहब, हम अक्सर तब्दीली की बात करते हैं
1: जी, जी।
0: लेकिन हर तब्दीली का आगाज अपने आप से होता है।
1: बिल्कुल, जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो माशरे के बहुत से मसाइल खुद ब खुद कम होने लगते हैं।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पैगाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान शबीर अहमद वानी
6: और मैं रशीद निजामी। सुबह के 7:27 और 5 सेकंड हुए हैं। हम अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आज दिन में 11:10:30 पर, जी हाँ, हमारे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, पैगाम सुबह के दूसरे हिस्से में आपके साथ मुलाकी होंगे SSP ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद भट्ट साहब। आपके साथ हमने आज जो मौजू चुना है शबीर, वो है रोड सेफ्टी अवेयरनेस, सेफ ट्रैवल, सेफ सोसाइटी, यानी सड़कों पर जिम्मेदारी का शऊर, महफूज सफ़र, महफूज माशरा। और शबीर, हम तकरीबन रोज़ तवारीख के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन कौन सी शख्सियात पैदा हुई हैं, कौन से अहम वाक़यात पेश आए हैं और कौन सी आला शख्सियात ये दुनिया कर छोड़ कर चली गई।
5: आज भी हम तफसीलन आपके साथ तारीख के चंद अवराग शेयर करेंगे, मगर थोड़ी देर बाद। आज ही के दिन की मुनासबत से बात करेंगे। आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ड एंटरप्राइजेस डे भी मनाया जा रहा है।
6: बिल्कुल शबीर साहब, ये सही हकीकत है। देखा जाए तो तरक्की सिर्फ बड़े कारखानों से नहीं बल्कि छोटे ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाले मेहनती हाथों से भी जन्म लेती है। छोटे कारोबार बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनते हैं।
5: माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ड एंटरप्राइजेस डे मनाने का मकसद छोटे और दरमियाना दर्जे के कारोबारों की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि यही इदारे किसी भी मुल्क की मईशत की मजबूत बुनियाद तस्वर किए जाते हैं।
6: शबीर, ये इदारे न सिर्फ लाखों अफराद को रोज़गार फराहम करते हैं बल्कि इख्तरा, मकामी सन्नत, हुनरमंदी, माशी तरक्की में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। खसूसन नौजवानों, खवातीन और नए कारोबारी अफराद के लिए ये इदारे, यानी छोटे छोटे इदारे, तरक्की और ख़ुद इन्हिसारी के लिए बेशुमार मौके पैदा करते हैं।
5: निज़ामी साहब, इस दिन के ज़रिए हुकूमतों, मालियाती इदारों और समाज को ये पैगाम दिया जाता है कि छोटे कारोबारियों की हौसला अफजाई की जाए, आसान कर्ज़ों की फराहमी

0: मैसूब।
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
0: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
1: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगू रोज सिर्फ आपके लिए।

0: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: पयामे सुबह आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपका मेजबान, आपका दोस्त, आपका होस्ट रशीद निजामी, और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी शब्बीर अहमद वानी।
3: निजामी साहब, वैसे अके बहुत ब्रोह कथ कर आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज कारोबार दो मनान।
2: बिल्कुल सही, दो सिर्फ अमे बापत मनाना जी जन सन नौजवान लक लकट कारोबार यन कर तम गौसला अफजाई सपदन।
3: बिल्कुल
2: वे सात दह मनान कह सात मनाव यह गि सिर्फ ऑन पेपर आसन कह।
3: बिल्कुल
2: ज्यादा सा सपदे हु तकरीब पत सपदे यह तकरीब हम कौर तकरीर यम कौर तकरीर
3: जमीनी
2: सतह पर। बह वो तुम पुन मुशाह वो मुशाह क्या मुशाह ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वारिया कोशिश करमच जे नौजवानन गोच कारोबार खतर मली मामलस मेलिन यजन यूटी गवर्नमेंट ती कोशिश करान जी यस ती स्कीम लॉन्च करान छे सेंट्रल गवर्नमेंट सो गस यूटी गवर्नमेंट असल पट येती
3: इम्प्लीमेंट करें।
2: इम्प्लीमेंट करें
3: बिल्कुल।
2: क्या तो अच्छा बासन तिम छ असल पट इम्प्लीमेंट गसा
3: वनकेस मे छ बासन अगर कहते कोशिश करे या जे का नौजवान गवर्नमेंटस निश या गसुन त सो हे मे बसान इम हेकान मन तो तु इन जवान हौसला अफजाई कर मगर अस पान तम खर बेदार
2: वो बो तुम अखत यह जन मे कैचन नौजवान सत कम तम आई मे नश सिर्फ यह कत कर खतरे जी यह करते कुन तरीके मसल हाईलाइट।
3: बिल्कुल।
2: लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला, हमने सोचा था इस मामले में कि कभी किसी गेस्ट को लाएंगे, लेकिन इस वक्त वनकस मिले हुए थोड़ा मौके कत कर खतरे वारे नौजवान आए अस नश तमो वो अस युवा मिशन लोन खतर यह जन सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्त स्कीम अकिस नौजवान
3: खतम
2: एप्लाई कर।
3: बिल्कुल
2: अस वो केस बैंक मगर बैंक वाले अन
3: रुकावट
2: रुकावट क्या जन तुम गि पे कड़ी।
3: बिल्कुल
2: बेची दपान तमो नून में नुकता निकालने की।
3: बिल्कुल
2: जम जान क्लियर कट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अत कह गारंटर जरूरत अत तम लवाजमत इन मजा टाइम
3: गारंटर वरानी।
2: अच्छा चलो किसी किसी जगह तो देते हैं, जरूरी नहीं है इसमें गारंटर जरूर है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी ना चे कैचमेंट एरिया ये ना चे यूनिट त्रोमुत ना चे ना फलंजा यूनिट चे गोर चे खोलता है अकाउंट दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती है एक नौजवान को, तब जाके बैंक वाले उसको लोन देते हैं।
3: बिल्कुल सही।
2: तो यम चीज से इन से ऐसे कम से कम देखिए अगर ये बिछू ना प्रेत को काम बैंक करान या सारी अनोख बैंक वाले ना ना सारी अनोख नजमर कह मे तम बैंक एम्प्लॉयर वे तम जन चुचि सान हमदर्दी सान अकिस नौजवान मदद कर खतर तैयार सपदान।
3: बिल्कुल। तो वारिया नौजवान वनकस बेरोजगार कि तिकाज प्रथ नौजवान हेक नव गवर्नमेंट मुलाजमत कर
2: तवे तुझे यम जन स्कीम बारसा स्कीम क्या बारसा स्कीम बारसा वो थिंक टैंक
3: बिल्कुल
2: तम सोचान अगर वनकस नौजवान बेरोजगार तलीम हासिल कर डिग्रीज हासिल कर सरकार कत नौकरी तम खुम एवन्यूज इन वत कड़न इन नौजवान
3: खुद अच्छा पढ़ लिखित बच्चे इन जरूरत जन ग मावनत कर युद्ध पुन कारोबार शुरू हेकन कर
2: तवे तिश आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज डे मनावान जी हा लकट लकट कारोबार लकट लकट कारोबार हौसला अफजाई सपदन वो बो वो तुम अकत अगर तुम कह लक बच्चे सो लड़की ऐसी ना लड़के का लकट कारोबार पे महल कर तुम फर्ज चुना वन तम सोदा तम सी।
3: बिल्कुल सही। अच्छा निजाम साहब बहुत कत अजकिस सोशल मीडिया किस दौर में इंसान दिल खुश तक नौजवानों लकट लकट कार शुरू कर ऑनलाइन कार शुरू कर अच्छा मे वह مطلب بزرگ ماج تم پن آنچار کنان
2: وچھنا آنچار یوت نا یہ زن اہس روایو یہ کور کرال کام گئی روایو
3: بالکل
2: ماچھچ کام گئی روایو یہ گئی روایو
3: بالکل
2: یم زن پرانی پرانی کامی آس گئی ساری روایو
3: اچھا ونکس لوک تم کتر بانو بت کھن یہ تم خوش کر
2: بالکل نہ خوشی میڈیکل سائنس
3: بالکل صحیح
2: جتنا آپ اپنی مٹی کے ساتھ جڑ جائیں گے بیماریوں سے
3: بالکل صحیح
2: بہرحال کت سپدن بیت

0: ये छे आकाशवाणी। सुबह के 7:05 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस ब तजम्मुल अहमद गड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सपदन सिचिलस किस त्रेन दोहन हिंदिस दौरस पेट आज रवाना। दाखिल वजीर अमित शाह चु नशखोरी कापी रटनस मुतलिक त्रेन वरियन हुंद अख विजन दस्तावेज जारी कोरमुत। मरकजन चु भारत बरतानिया तिजारती समझौतन ज्याद खुत ज्याद फायदे हासिल करने बापत तिजारती पोर्टल अपग्रेड करने खातर अक्सास मुशीर तैनात करने फैसल कोरमुत। वेनेजुएलास मज चु बनल सत मरण वाले हूं तैदाद करीब 6 सपुदमुत। भारतन चु हंगामी साजो सामान हेत फिजाई ज जहाज रवान करमित। अमरीका तो ईरानन चु मजीद कुन जंगों खतर कम करने की गर्ज बराह रास्त फौजी मवासलती चैनल कायम करने सहित इतफाक कोरमुत। खबर तफसील सान। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सपदन सिशेल्स किस त्रेन दोहन हिंदे सरकारी दौरस पे आज रवाना। ये तम अम मुल्क किस कौमी दौस पे गोल्डन जुबली तकरीबन में शिरकत करन। खर्ज वजारत चु अकिस बयानस मज वोनमुत ज भारतीय हथियारबंद फौज चे अकिस छके अलावा करन भारतीय बहरी ज जहाज ते यमन तकरीबन अंदर शिरकत। पन्नस दौरस दौरान करन वजीर अजम नरेंद्र मोदी सिशेल्स के सदर डॉक्टर पेट्रिक हरमाइनस से कत बात या दौरान पानवंत इलाकई मफाद के मामलन दाल दिन ही। वजीर अजम करन सिशेल्स चे कौमी असम्बली खिताब करन अलाव तत रोजान भारतीय बरादरी हिंदन लोकन से ते मुलाकात। दाखिल वजीर अमित शाह चु नशखोरी निश पाक भारतुक नजरिया हासिल करने बापत अक तफसीली लाह अमल पेश कोरमुत। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दस मुनद मीटिंग दौरान कुर दाखिल वजीरन रात वरी जसा शतवू पेट जसा कुंत्रहस ताम नशखोरी कापी रटनस मुतलिक अक विजन दस्तावेज जारी। अमे ब्रोहन नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी एनकॉर्ड चे दहिमे बहर पाई मीटिंग के खिताब करान दाखिल वजीरन जे नशखोरी खिलाफ लड़ाई में चु सारने हुंद यकजा सपदन जरूरी। तमो वन जे मुनशियातुक बिद्दत चु कौमी सलामती समाजी इस्तेकाम इक्तिसादी मफादन नौजवानन त मुल्की मुस्तकबिल बापत अख बोड़ खतरे। तमो कोर मजहबी लीडरन माजन तो नौजवान बांध बांध ये लड़ाई जेन बापत सब दिन तिम सहरी यकजा।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: दाखिल वजीरन तुल ड्रग डिस्पोजल फोर्टनाइटस तिदास यह तहत करीब 600 करोड़ रुपये मालियतिक जलच 9,500 किलो जब्त करने आमित नशावर चीज जाय करने यिन। दौरान चु वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनमुत ज नशा मुक्त भारत अभियान चु वन अख अवमी तहरीक बनोमुत। समाजी इंसाफ तो बा अख्तियार बनाने किस वजीर ममलिकत बी एल वर्मा सुन

0: मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: लीजिए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, न ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
2: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष

0: सांगवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
1: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
2: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
3: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित

0: किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
2: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
3: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ल्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
6: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टिपत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष

0: की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र

0: के लिए आज सेशल की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से नगर मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रोग्राम है पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट रशीद निज़ामी और आज मेरे साथ हैं मेरे साथी
2: शबीर अहमद वानी।
1: शबीर साहब, अब हम नज़र डालते हैं तारीख के आईने में
2: जी
1: और जानने की कोशिश करेंगे कि आज कौन कौन से अहम वाकयात पेश आए हैं।
2: जी निज़ामी साहब, कनाडा के बहरी जहाज़रा जोशु सोलोकम ने दुनिया का पहला तन्हा बहरी चक्कर 3 साल की मुद्दत के बाद 27 जून 1898 को मुकम्मल किया। उन्होंने तारीखी सफ़र 24 अप्रैल 1895 में ब्रा एयरलैंड से शुरू किया था।
1: 27 जून 1967 में भारत में तैयार किया गया पहला मुसाफिर बरदार तैयारा HS-748 AVRO सरकारी फिजाई कंपनी इंडियन एयरलाइंस के हवाले किया गया।
2: 27 जून 1977 में जिबोती को फ्रांस से आज़ादी हासिल हुई।
1: साल 2007 में आज ही के रोज टोनी ब्लेयर बरतानिया के वजीर आजम के ओहदे से मुस्तहफी हुए।
2: साल 2013 में नासा ने सूरज के मुशाहदे के लिए इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ खलाई मिशन लॉन्च किया। तारीख थी 27 जून की।
1: साल 2014 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की गैस पाइपलाइन में ईस्ट गोदावरी में धमाका हुआ जिसमें कम से कम 14 अफराद जान बहक हुए। तारीख थी 27 जून की।
2: और अब बात उन शख्सियात की जिन्होंने आज के दिन वफात पाई है।
1: सिख सल्तनत के बानी रंजीत सिंह फौत हुए 27 जून 1839 ईस्वी में।
2: भारत के मशहूर फौजी कमांडर और फील्ड मार्शल सैम मेनेकशॉ का भी आज यौम वफात है। वो आज ही के रोज साल 2008 में फोत हुए थे।
1: और जो शख्सियात आज पैदा हुई हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र। भारत के अजीम मूसीकार राहुल देव बर्मन पैदा हुए आज ही के दिन यानी 27 जून 1939 ईस्वी में।
2: इंडियन अमेरिकन माहिर मायशात रवि बात्रा जन्मे हैं साल 1943 में। तारीख थी 27 जून की।
1: भारत की नामवर एथलीट और सियासतदान पीटी उषा का भी आज जन्मदिन है। वो पैदा हुई आज ही के रोज साल 1964 ईस्वी में।
2: आज इंग्लैंड के मारूफ क्रिकेटर केविन पेटरसन अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म हुआ 27 जून 1980 में।
1: और केविन पीटरसन अपनी दमदार बैटिंग के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और एक और क्रिकेटर का आज जन्मदिन है, वो है जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर डेल स्टेन, जो अपनी फास्ट बॉलिंग से याद किए जाएंगे और याद किए जाते हैं। वो पैदा हुए थे 1983 में। तारीख थी आज ही की यानी 27 जून। हमारे साथ रहिए, एक नगमा सुनते हैं, उसके बाद और बात करेंगे।

0: आवाज़ में, और हम बात कर रहे थे राहुल देव बर्मन की। आज उनका यौम पैदाइश है।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। निज़ामी साहब, वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली चलने का, क्योंकि 8:30 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
0: बिल्कुल, सुनते हैं चंद ही लम्हों में।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत के लिए आज इस मुल्क के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज करेंगे। भारत ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री तैयार की है जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। भारत ने जलजले से मुतासर वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। उसने राहत का सामान और तिब्बी इमदाद रवाना की है। इस कुदरती आफत में मरने वालों की तादाद 920 तक जा पहुंची है। FIH मर्दों के प्रो लीग हॉकी में कल रात लंदन में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल में 2 बार का चैंपियन यूरोगोए स्पेन के हाथों 1-0 से हार जाने के बाद फीफा आलमी कप से बाहर हो गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछली बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और 2 तरफा तावुन के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। नीज वो बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे में सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बिरादरी के अरकान से बातचीत करेंगे। आज वो शजरकारी की एक तकरीब में जड़ी बूटियों के एक बाग की सैर करेंगे और सेशल्स के साहिली गार्ड के ठिकाने का दौरा करेंगे। भारत और सेशल्स के दरमियान एक देरीना शराकत दारी है जिसकी जड़ें तारीखी, सकाफती और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों से वाबस्ता हैं। बहिरे बहरे हिंद खित्ते में एक समंदरी पड़ोसी के तौर पर सेशल्स का भारत के विजन महासागर में एक खास मकाम है और आलमी जुनूब के तई इसका एक अहद है। वज़ीर आज़म के इस दौरे से भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और पायदार दोस्ती और सभी शोबों में दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मुश्तरक अज़्म का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह इमदाद बाहमी पर मबनी पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का गुजरात के 14 बड़े शहरों में आगाज करेंगे। ये तकरीब आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में मुनाकिद की जाएगी। जनाब शाह गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। वो बहुत से बुनियादी कामों का भी आगाज करेंगे और कुछ जायजा मीटिंगों की सदारत करेंगे। हमारे नामा निगार ने बताया है कि इस प्रोग्राम में वजीर आला भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी, इमदाद बाहमी शोबे के नुमाइंदगान और 4,000 से ज्यादा ड्राइवर्स शिरकत करेंगे। इस तकरीब के दौरान आला तरीन कारकर्दगी की पेश करने वाले ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से मुतालिक सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: भारत टैक्सी को सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड ने 8 बड़े इमदाद बाहमी इदारों की मदद से तैयार किया है जिनमें अमूल, इफको और नाबार्ड शामिल हैं। ये इदारा अपना कामकाज बगैर किसी कमीशन के अंजाम देता है जिसकी वजह से ज़्यादा माली फ़ायदा बराह रास्त ड्राइवर्स को जाता है। पिछले साल दिसंबर में जब भारत टैक्सी का ऑनलाइन आगाज़ हुआ था तो इस पर सिर्फ गुजरात में 1.5 लाख से ज़्यादा ड्राइवरों और 7 लाख से ज़्यादा सार्फिन ने इंदराज कराया था और तभी से रोजाना 3,500 से ज्यादा लोग इसके जरिए सफर कर रहे हैं। यह सर्विस इब्तदाई तौर पर गुजरात के 14 बड़े शहरों में शुरू की जाए।

0: आएगी, जिनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा भी शामिल हैं, और ये सर्विस एक महीने के अंदर अंदर पूरी रियासत में शुरू कर दी जाएगी। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
1: एटमी तवानाई के महकमे के सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती ने हाइड्रोजन तैयार करने वाली दुनिया की पहली फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। ये फैक्ट्री कॉपर क्लोरीन हरारती कीमियावी तसलसल पर मबनी है और जिसमें न्यूक्लियाई रिएक्टर से गर्मी पैदा की जाती है। ये फैक्ट्री कलापक्कम में एटमी तहकीक के इंदिरा गांधी मरकज में कायम की गई है। डॉक्टर मोहंती ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि न्यूक्लियाई तवानाई को हाइड्रोजन की तैयारी जैसी माहौल के लिए साजगार तवानाई की उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मरबूत किए जाने से तवानाई से मुतालिक एक पायदार मुस्तकबिल की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इस मुनफरिद अहलियत वाली न्यूक्लियाई तवानाई से कार्बन से पाक काबिल इन्हिसार बिजली फराहम होगी। देही तरक्की के वजीर जनाब शिवराज सिंह चौहान इस माह की 28 और 29 तारीख को नई दिल्ली में मुनाकिद होने वाली कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस 2026 की सदारत करेंगे। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस में देही तरक्की के वज़रा, सभी रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के सरकारी सीनियर ओहदेदार और माहिरीन मजमुई देही तरक्की पर तबादला ख्याल करेंगे और अहम प्रोग्रामों का जायजा लेंगे। नीज देही भारत के लिए मुस्तकबिल का खाका तैयार करेंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान की क्यादत में पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पर कौमी देही तरक्याती कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों के तनाजुर में अमरनाथ यात्रा के रास्ते की 24 घंटे मुसलसल निगरानी की गरज से टेक्नोलॉजी पर मबनी निगरानी का मंसूबा प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू किया है। जम्मू के हमारे नामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक अनकरीब अमरनाथ यात्रा के लिए तौसी दिए गए सिक्योरिटी निजाम के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने इस पहल का आगाज किया। प्रोजेक्ट हॉक आई के हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने यात्रा के रास्ते पर फजाई निगरानी के लिए 5 ड्रोन यूनिट्स तैनात किए हैं। हम अपनी सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के हिस्से के तौर पर छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के बारे में एक मजाकरा नशर करेंगे। ये कैफे अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, जिसमें प्लास्टिक कचरे के बदले में खाना पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमने गार्बेज कैफे के इंचार्ज रितेश सैनी से बात की। इस बातचीत को आप 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आज सुपहर 5:10 से सुन सकते हैं। आप हमारे ये प्रोग्राम न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम कल सुबह 9:10 पर भी नशर किया जाएगा। ये खबरनामा आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। वेनेजुएला में 2 ताकतवर जलजलों में मरने वालों की तादाद 920 तक पहुंच गई है और तकरीबन 3,300 अफराद जख्मी हुए हैं। बचाव कारकुन राजधानी के करीब इलाके में इन जलजलों के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने वेनेजुएला में इन तबाहकुन जलजलों के बाद ऑपरेशन एमिस्ताद शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ऑपरेशन एमिस्ताद इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद और कुदरती आफात की सूरत हाल में एक राहत मिशन है, जिससे वेनेजुएला के आवाम के साथ यगानगत का इजहार होता है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस कार्रवाई के तहत भारतीय फजाइया के 2 C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे कल वेनेजुएला भेजे गए थे। ये तैयारे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहत का सामान लेकर गए हैं, जिनमें बचाव टीम के 41 अरकान भी हैं। वेनेजुएला की आर्जी सदर डॉल्सी रोड्रिग्ज ने जलजलों के बाद भारत की यगानगत का इतराफ किया है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई मुश्किल घड़ी में भारत और वेनेजुएला के आवाम के दरमियान तआवुन के जज्बे की हामिल है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और बरतानिया के ताल्लुकात भारत बरतानिया जामे इक्तसादी और तिजारती मुआहदे सेटा की वजह से एक नए संग मील की तरफ बढ़ रहे हैं। लंदन में कल तिजारत से मुतालिक एक मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि बहुत से शोबों की सरकर्दा शख्सियतों से बातचीत एक खुशी का मौका था। یہ شخصیتیں مستقبل کے زبردست موقعوں پر یقین رکھتی ہیں۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے تاجروں کو مدعو کیا کہ وہ سرگرمیوں میں گہرائی پیدا کریں، اختراع کو رفتار

0: आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान ज़िम्मेदार के तौर पर शिरकत करेंगे। वो सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी से मुलाकात, कौमी असम्बली से खिताब और भारतीय तारिकीन वतन से बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात से पाक भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए एक तफसीली लाहिया अमल पेश किया है। इंसदादी मुनशियात के बीरू के जरिए मुनक़दा एक मीटिंग के दौरान वज़ीर दाखिला ने 2026 से 2029 तक के लिए मुनशियात के कंट्रोल से मुतलिक एक विजन दस्तावेज जारी किया। इससे कबल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकॉर्ड की 10वीं आला सतही मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने जोर दिया कि मुनशियात की लानत से कौमी सलामती, समाजी इस्तेकाम, इक्तिसादी मुफादात, नौजवानों और मुल्क के मुस्तकबिल को लाहक खतरात से असरदार तरीके से निपटने की जरूरत है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा, सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा, युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेलोस खिदमत, एसार और मुआशरे के पसमानदा और कमजोर तबके के साथ हमदर्दी का ऐसा अब्दी पैगाम दिया जो हर दौर में इंसानियत के लिए मशले रहा है। उन्होंने कहा कि माशरे को चाहिए कि वो इनकी अजीम सीरत, आला किरदार और इखलाक हुसन से सबक हासिल करे, नीज हक, इंसाफ और इंसानियत के रास्ते पर साबित कदमी से चले। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल जड़ीबल श्रीनगर में बरामद किए गए जुलजना जुलूस में शिरकत की। उन्होंने जुलूस अजा में अजादारों में शरबत और दीगर मशरूबात भी तकसीम किए। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से श्रीनगर के अलमगिरी बाजार चौक में एक सभी लगाई गई। इस मौके पर पार्टी के नायब सदर और वजीर आला उमर अब्दुल्ला, उनके मुशीर नासिर असलमवानी और तर्जमान आला तनवीर सादिक ने तकरीब में शिरकत करके अजादारों में मशरूबात तकसीम किए। पेट्रोलियम और कुदरती गैस से मुतलिक पार्लिमानी कायम कमेटी के चेयरमैन सुनील दत्तात्रेय तत्कार्य की क्यादत में एक वफद ने लोकभवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम, कुदरती गैस और तवानाई के बुनियादी ढांचे से मुतलिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना डोडा के मेंबर असम्बली मेराजुद्दीन मलिक ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर एनएन वोरा के साथ मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मामलों पर तबादला ख्याल किया। इससे कबल बिहार की कानूनसाज असम्बली के स्पीकर डॉ प्रेम कुमार और हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित ठाकुर ने भी वजीर आला के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने कल शाम पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग में 3 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से किए जा रहे सलामती बंदोबस्त का जायजा लिया। मीटिंग में जम्मू जोन में किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का इहाता किया गया। इस मौके पर पुलिस सरबराह ने अमरनाथ जी यात्रा के पुरअमन इनेकाद और यात्रियों की सलामती को अवलीन तरजीह करार देते हुए तमाम एजेंसियों को आपसी तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी। उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो चौकस रहकर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशेवराना तौर पर तैयार रहें। मीटिंग में स्पेशल डीजीपी, जीओसी 26 डिवीजन जम्मू जोन, आईजीपीज, डीआईजीज और एसएसपीज के अलावा दीगर सलामती एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 28 तारीख यानी कल अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 135वीं किस्त होगी। प्रोग्राम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। प्रोग्राम को AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इतलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। सरकार ने पासपोर्ट की इजराई के लिए दरख्वास्त की फीस में इजाफा किया है। वजारत खारजा की एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट की इजराई की फीस अब 5,000 रुपये होगी, जबकि मामूल के तहत इजरा किए जाने वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये होगी। फीस की नई शर्हों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। अब आखिर पर दर्ज हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर्स और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं।
1: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज रीड, हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रीड।
2: समय आदाब, न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं शब्बीरुज़्ज़मा। हमारे आज के शुमारे में नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती मुशीरों का 16वां इजलास मुनक़द, खारजी उमूर से मुतलिक पार्लिमानी कायमा कमेटी का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का 4 रोजा मुतालियाती दौरा मुकम्मल, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का अनंतनाग में यात्रा से मुतलिक 2 रोजा बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब और वजीर आला उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर में झीलों के तहफ्फुज़ के लिए देरपा इदारा जाती तालमेल पर जोर। अब पेश है मौजूआत की तफसील। भारत ने अमरीका और ईरान के दरमियान तैपाई मफामती यादाश्त का खैर मकदम किया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों के 16वें इजलास से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने आपनाए हरमुज के खुलने का खैर मकदम करते हुए कहा कि इससे सप्लाई चेन में हायल रुकावटें दूर होंगी।
3: इंडिया वेलकम्स द एमओयू रीच्ड बिटवीन द यूएस एंड ईरान। वी हैव गॉट कॉशियस ऑप्टिमिज्म एंड वी होप दैट इट विल वर्क। It will help energy security. Opening of the Strait of Hormuz is a very welcome development. It will remove supply chain bottlenecks and many of the shortages in the field of say, fertilizers and chemicals, etc. will be met with. And the freedom of navigation that will be available to the countries in the region and beyond probably will also greatly improve our economic prosperity.
2: खारजी उमूर से मुतलिक पार्लिमानी कायमा कमेटी ने 22 से 25 जून तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का तफसीली दौरा करके यहां खारजी मामलात और सरहदी सलामती का जमीनी सतह पर बगौर जायजा लिया। रुकन पार्लिमान शशि थरूर की कयादत वाली इस कमेटी के दौरे के हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये तफसीली रिपोर्ट।
4: उमूरी खारजा से मुतलिक पार्लियामेंट की कायमा कमेटी का जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जुमेरात को मुकम्मल हुआ 4 रोजा मुतालियाती दौरा भारत की स्ट्रेटेजिक और खारजा पॉलिसी के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस कमेटी ने अपने दौरे के दौरान जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का तफसीली अहाता किया। चूंकि ये खारजा उमूर की कमेटी है, इसलिए इसकी तवज्जो मकामी सियासत या अंदरूनी नज्म व नस्क के बजाय खालिसतन बैरूनी ताल्लुकात और सरहद पार के चैलेंजेस पर मरकूज रही, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी की सूरत हाल, सरहद पार दहशत पसंदी, माहिदा सिंतास के असरात और मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी पेशकदमी के तनाजुर में सिक्योरिटी की तैयारियों की जांच भी शामिल थी। इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि कमेटी ने श्रीनगर और लद्दाख में फौज के आला तरीन कमांडरों और सिक्योरिटी हुकाम से रूबरू मुलाकातें की, जहां फौज ने वफद को हालिया सिक्योरिटी ऑपरेशन, मुस्तकबिल की एहतियाती तदाबीर और दिफाई तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसके साथ ही कमेटी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ भी तामीरी मुलाकातें की, जिससे मुल्क की सियासी क्यादत और जमीनी दिफाई निजाम के दरमियान तालमेल मजीद मजबूत हुआ। अवामी सतह पर एक और अहम कामयाबी ये रही कि कमेटी ने इलाकाई पासपोर्ट दफातर का मुआयना किया और जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए पासपोर्ट की तस्दीक और इसके इजरा के अमल को मजीद डिजिटल और तेज तर बनाने की यकीन दहानी कराई। खुलासा यह है कि पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का यह मुश्तरका दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जुग्राफियाई और सियासी अहमियत को आलमी सतह पर उजागर करने का बाइस बनेगा। रेडियो न्यूज रील के लिए श्रीनगर से मैं सईद मुबशिर रफाई।
2: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तर इंतजाम और तैयारियां पेशगी मुकम्मल करने की हिदायत दी है। अनंतनाग में श्री अमरनाथ जी यात्रा से मुतलिक 2 रोजा बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि गैर यकीनियत के इस दौर में यह यात्रा हमें कसरत में वहदत का पैगाम देती है।
5: श्री अमरनाथ जी यात्रा को एग्जिस्टेंस सहअस्तित्व का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत कर रही है। श्री अमरनाथ जी यात्रा इस बात का संदेश दे रही है कि आस्था का वास्तविक उद्देश्य समाज के सभी लोगों को जोड़ना है। इस अर्थ में यात्रा केवल हिंदू श्रद्धालुओं की यात्रा नहीं बल्कि मानवता के साझा मूल्यों की भी यात्रा है। पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से विकास और संरक्षण के साथ इस यात्रा को आधुनिक सुविधाओं

0: आ गया है। मेरा विश्वास गहरा हुआ है कि अमरनाथ जी यात्रा भविष्य में ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाली है।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहलगाम में यात्रा के नुनवन बुनियादी कैंप का दौरा करके वहां श्रद्धालुओं के लिए किए गए इंतजाम का बरसरे मौका तफसीली जायजा लिया। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस का निजाम गुजशत चंद बरसों के दौरान इनकलाबी तब्दीलियों से गुजरा है। SKICC श्रीनगर में पंचायती राज वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के बाहमी इश्तराक से मुनक्कदा वर्कशॉप सेवा से समृद्धि से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने नेशनल ई सर्विस डिलीवरी रैंकिंग में पहला नंबर हासिल किया है।
0: ढांचा पंचायतों तक पहुंचे, धीरे धीरे वो प्रगति आगे बढ़ी और मैं कह सकता हूं कि नागरिक सेवाएं हो या सामाजिक कल्याण से संबंधित कोई विषय हो, टेक्नोलॉजी के उपयोग से जिस प्रभावी ढंग से वो लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, मैं समझता हूं कि शायद दूसरी कोई व्यवस्था उतनी कारगर नहीं होगी। 3 वर्ष में मुझे याद है 1100 से ज्यादा सेवाएं यहाँ लोगों को मिलने लगी थी और अनेक बड़े राज्यों को जम्मू कश्मीर ने पीछे छोड़ दिया था। ई सर्विस डिलीवरी की रैंकिंग में नंबर 1 जम्मू कश्मीर हो गया मध्य प्रदेश को पीछे छोड़कर। सामान्य नागरिक की सुविधा के लिए ब्लॉक दिवस, थाना दिवस, बैक टू विलेज ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे जिससे आम आदमी को सहूलियत हो सके, उसकी सुनवाई हो सके।
1: वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में झीलों के तहफ्फुज के लिए देरपा इदारा जाती तालमेल, साइंसी मनसूबाबंदी और बरवकत अमलावरी पर जोर दिया है। श्रीनगर में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की 27वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आला ने डल, नगीन, खुशहाल सर और गिल सर जैसी झीलों में जारी तहफ्फुजाती कामों के अलावा इनसे जुड़े बुनियादी ढांचे और इंतजामी मामलात का तफसीली जायजा लिया। उमर अब्दुल्ला ने मुतल्लिका महकमों और अथॉरिटीज को हिदायत दी कि वो कानूनी जवाबित और माहौलियाती मयारात के साथ झीलों से जुड़े जेर तामीर प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार में सुरत लाएं। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने गुज़श्त 2 बरस के दौरान शोबे तालीम में हायल करदा कामयाबियों को उजागर करते हुए कहा है कि सरकार मसावी मौके और इदारों में जदीदियत लाते हुए मयारी और शमूलियाती तालीम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। श्रीनगर में हिमाचल प्रदेश के वजीर तालीम रोहित ठाकुर के साथ बातचीत के दौरान सकीना इत्तू ने कहा कि इख्तिरा और टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए शोबे तालीम को मजीद कामयाबियों से हमकिनार किया जाएगा। दोनों वज़रा ने तालीमी शराकत को मजबूत करने पर गुफ्तगुशनीद की। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी की एक इतला के मुताबिक हज 2027 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ख्वाहिशमंद आजमीन 20 जुलाई तक ऑनलाइन दरखास्त फार्म www.hajcommittee.gov.in पर जमा कर सकते हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने न्यूज रील से बात करते हुए कहा,
2: इसके लिए पासपोर्ट का होना लाजमी है जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2027 तक होनी चाहिए। एक कवर में फैमिली मेंबर्स में 5 आदमी अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम एज जो है अभी सऊदी की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 15 साल होनी चाहिए। आखिरी तारीख इंशाल्लाह 20 जुलाई रहेगी 2026। जज ग्राम को कुर्रा के बाद 10 अगस्त तक 1,52,300 रूपए डिपॉजिट करना होगा, यानी जब एप्लीकेशन क्लोज होंगी उसके बाद कुर्रा होगा।
1: अनंतनाग जिले के मट्टन इलाके में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस की मुनासिबत से एक खसूसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश के दौरान गुरु तेग बहादुर जी की तालीमात, फलसफे और उनकी अजीम कुर्बानी नीज उनकी जिंदगी को दर्शाने वाली मालामाल मुसविरी को नुमाइश पर रखा गया था। इस मौके पर महकमा सकाफत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिज मोहन शर्मा ने न्यूज रील से बात करते हुए कहा,
3: ये भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर है जो पटियाला से, उनकी तरफ से ये एक एग्जीबिशन लगाई है गुरु तेग बहादुर जी की, जो 375वां मार्टिरडॉम था पूरे देश में। भारत सरकार के आदेशानुसार वो पूरे देश में पूरा एक साल उसको कमेमोरेट किया जा रहा है, उसमें एग्जीबिशन लग रही है देश में। लास्ट नवम्बर से शुरू हुआ था, नवम्बर 2025 से और नवम्बर 2026 तक होगा, ये उसी का एक पड़ाव है कि आज मटन में ये इस तरह से गुरु तेग बहादुर जी की पूरी जिंदगी, उनकी टीचिंग, उनकी प्रीचिंग्स पे पूरा उनकी जो एग्जीबिशन लगाई है, इसलिए लोग श्रद्धालु यहाँ आए हैं और देखे और उनको इस पे उनको

0: साइड मिल रहा है। मैसेज वही है जो सबका है, पीस होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, अमन चाहिए और अमन से ही दुनिया चल पाएगी।
1: जम्मू कश्मीर में यकम जुलाई से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार जमानती आजीविका मिशन दी ही नाफिज होगा, जिसकी मंजूरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दी है। इसके तहत दीही घरानों को सालाना 125 दिन के रोजगार की जमानत दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक स्कीम का मकसद रोजगार के मौके बढ़ाना, दीही बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और पायदार तरक्की को फरोग देना है। महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने श्रीनगर में कश्मीर यूनिवर्सिटी और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के इश्तराक से डेटा के साइबर तहफ़ुज़ से मुतल्लिक एक मशावरती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा के तहफ़ुज़, सरकारी डिजिटल निजाम की सलामती और साइबर खतरात से निमटने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। वर्कशॉप में शुरका की तरफ से पेश की गई सिफारिशात कौमी ई गवर्नेंस डिवीजन को भेजी जाएंगी, ताकि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में साइबर सिक्योरिटी के निजाम को मजीद मुअस्सर बनाया जा सके। वादी कश्मीर में इन दिनों सयाहों का अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के मारूफ झील डल और मुगल बागात के अलावा वादी के दूसरे सियाहती मकामात पर भी सयाहों की अच्छी तादाद आ रही है, जो यहां के कुदरती नजारों से काफी लुत्फ महसूस कर रहे हैं। सैलानी मकामी लोगों की मेहमान नवाजी के भी जबरदस्त कायल हो रहे हैं।
2: मेरा नाम अर्शनूर कौर औचला है और मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। मेरे को अभी 3 दिन हो गए हैं, अभी हम दूध पथरी विजिट किया है। मिक्स मौसम है, कभी ज्यादा ठंडी हो जाती है और कभी थोड़ी थोड़ी गर्मी है। लेकिन एक बात और, जो कश्मीर के जो लोग हैं ये सबसे बेस्ट है। इनकी जुबान माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतने प्यारे लोग हैं ना, ये मेरे को तो दिल को टच कर गए। मेरे को सभी ने इतना इतना प्यार दिया।
3: माय नेम दिलावर सिंह, आई एम फ्रॉम हरियाणा। कश्मीर इज द टॉप ऑफ द ब्यूटी, दूपत्री इज अ ब्यूटीफुल, सो मच ग्रीनरी, लैंडस्केप्स, मीडोज, राइट, एंड वन ऑफ द लाइक वन ऑफ द बेस्ट हाउस हाउसिंग।
1: महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर को GIQR कोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौमी एजाज सुकाच से नवाजा गया है। महकमे को ये अवार्ड कॉर्पोरेट टेस्टिंग लेबोरेटरी IICT श्रीनगर के पश्मीना और दीगर दस्तकारी मसनूआत के लिए दिया गया है। महकमा के इस निजाम को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन वजारती इलेक्ट्रॉनिक्स व इतलाती टेक्नोलॉजी की तरफ से GIQR कोड मैनेजमेंट सिस्टम के जुमरे में शामिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक ये निजाम असल कश्मीरी GI मसनूआत की तस्दीक, शफाफियत और आलमी मंडी में उनकी शनाख्त को मजीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 24 जून को लोक भवन श्रीनगर में श्री कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की 36वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कई इदारा जाती इस्लाहात को मंजूरी दी गई। मीटिंग में वजीर आला और यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने कश्मीर खित्ते के जरी मंजरनामे में सुकास्ट कश्मीर के बेहतरीन रोल को उजागर करते हुए इसके अमले और वहाँ जेर तालीम तालिब इल्मों की सराहना की। मीटिंग में जरी तालीम और इख्तरा नीज खिदमात को बढ़ाने की गर्ज से तालीमी, तहकीकाती और इदाराजाती अमूर का तफसीली जायजा लिया गया। वजारती खारजा ने कहा है कि इलाकाई पासपोर्ट दफातर और बैरून ममालिक में काम करने वाले भारतीय मिशनों ने साल 2025 के दौरान 1.5 करोड़ पासपोर्ट इजरा किए हैं। वजारत ने मजीद कहा है कि गुज़श्ता बरस 10 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं और इस साल भी इतनी ही तादाद में ऐसे केंद्र खोले जा रहे हैं। 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर वजीर खारजा डॉक्टर SJ शंकर ने कहा कि एक अहम पेशरफ्त ये भी है कि अब चिप वाले पासपोर्ट की शुरुआत हो गई है, जो ज्यादा महफूज और मुतहरिक हैं। इसके साथ ही न्यूज रील का हमारा आज का शुमारा खत्म हुआ। निगरानी आला अशफाक शाह, तरतीबो तहजीब कोशिकी कश्यप, मुदीर और मेजबान शबीरुज़मा, रिकॉर्डिंग एडिटिंग आसिफ बशीर, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
4: आकाशवाणी श्रीनगर तो तुम बोजान लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह मुश तुम मेजबान शबीर अहमद वानी तो मैसेज मीन सेथी
5: रशीद निजामी। शबीर साहब यूज वन वक्त आसान यहशिर मौसीकी वक्त
4: बिल्कुल
5: ये मौसीकी पेश कर तो अगर जिंदगी हज कत करो जिंदगी दीदव तुम कह मानी
4: बिल्कुल
5: यह तोतम जिंद योतम अत पत कन जिंद मकसद आसान
4: बिल्कुल निजामी साहब जिंदगी गुजारने खतर बामकसद आसन लाजमी तिक बामकसद जिंदगी इंसानस थजरस तो बजरस वातान
5: اگر

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबिलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश सदान वाली बोझो प्रोग्राम सूफी सदा।

شان بڑائی دنائی سونی آ کان تھاون آدن آدن کہ یارو بڑی سردار

0: सुर ताल मिलावित आगस करो फरियाद, आगस करो फरियाद, आगस करो फरियाद, आगस करो फरियाद। वल्लो वनहु अज शाये रहीम पनिन पन।
1: हज़रत शाह अब्दुर्रहीम रहमतुल्लाह अलैहिन हिंद आज़मैशी सिलसिल तो सपो तिंद बालपान पेठे शुरू तिजन गो इथ कन जुन रहीम सब मसा पांच वरी जिंज रफीक शफीक तो मेहरबान मोज गई तिम त्रवित उकबई गरस कुन रवान यीच लक्च वंस अंदर माजि हिंस अबदी जुदई युदवई जहरी अनहार दुश्वार बासान मगर बतनी आसानी हुंद पहलू उस अत दुश्वरी लर लोर पकान सो फरहत बख्श बतनी पहलू यमकी इदराक निश आम इंसान सुंद वहमो गुमान ते अजिज उस
2: माजि हिंदे शफकत साय निश महरूम रहीम सब गई जिंदगी सत वाबस्त वंस हिंद पड़ाव तय करान बलूगियत चे ब्रांद कनि पेठ पोद थावनी गए रहीम सब ने जिंदगी हिंद बुजरगान त दरवेशान आसार आशकार यम फकीरान आसार लग आफताबे निस्फुन निहारिक पेठ सफापोर त अत अंद पक मुजाफातन त अलाकन मंज प्रावतरावने यो उस यमनी रूहानी त सूफियान आसारन हुन नतीजे ज शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाह अलैहिन हिंदिस दरवेशान दरबारस कुन लग अकीदत मंद रजव रुस्ती मयल सब्दने अकीदत मंदन हुन ये युन गसुन ओस वक्ती गर्दिश सूत सूत जारी रोजान
0: डेडी तल हजा मुझ बाव में।

ਮੇਰੀ ਸਰਦਾਰੋ ਮੰਨਿਓ ਵੱਲ ਅੱਜ ਸੋਨ ਕੁੰ ਬਲਈ ਬੇ ਮਾਰੋ।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोझान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नशर सब्दान।

0: सात ब्रिजेस में भी चार ब्रिजेस, हबा कदल ब्रिज, फतेह कदल ब्रिज, हमारा अली कदल ब्रिज और अमीरा कदल ब्रिज, ये डिश्यूज में आ गए हैं
1: जी।
0: हमारा सारा लोड अभी अब्दुल्ला ब्रिज पे पड़ रहा है, बड़शा ब्रिज पे पड़ रहा है, सफा कदल ब्रिज पे और सीमट ब्रिज पे पड़ रहा है
1: जी।
0: तो जब ये इस तरह का जो निज़ाम हो, इस तरह की जो टोपोग्राफी हो किसी जगह की, तो सभी एक लेमैन भी ये समझ सकता है कि जब कहीं आपको फ्रॉम वन साइड ऑफ द सिटी टू अनदर साइड क्रॉस करना है तो आपको ब्रिज लेना ही लेना है, और जब ब्रिज की तरफ आप रुख करते हैं तो कन्वर्जेंस होती है ट्रैफिक की, ट्रैफिक वहां पर एक जगह जमा होता है। वही वजह है कि लोगों को यहां लगता है कि ट्रैफिक के लिए ज़्यादा जगह है नहीं। लेकिन आपने कुछ और मामला छेड़ा था, आपने पार्किंग का मामला छेड़ा
1: जी,
0: था
1: जी, जी, जी।
0: उसके बारे में मैं ये कहूँ कि उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके प्रेफरेंसेस जो हैं वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा है
1: जी।
0: हर कोई अपनी गाड़ी रखना चाहता है। तो इतने सारे जब सिविलियंस हों और इतनी सारी गाड़ियाँ जो हों, उनको कहीं पर पार्किंग स्पेस अवेलेबल करना ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई डेवलप्ड कंट्री भी आप ले लेंगे वो भी इतना नहीं कर पाते कर पाएंगे। मैं आपको रफ फिगर दे दूं, इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट्स हैं 8 लाख के करीब श्रीनगर में रोज गाड़ियां एंटर करती हैं और होती हैं, उसमें से 5 लाख नहीं कुल मिला के श्रीनगर के जो यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं वो 8 लाख के करीब होती हैं, उसमें से 5 लाख से भी ऊपर प्राइवेट व्हीकल्स हैं। तो ये 5 लाख प्राइवेट व्हीकल्स आप अकोमोडेट कहाँ करोगे?
1: सही है,
0: इन रास्तों में कैसे करोगे? एंड लेट मी टेल यू, देयर आर ओनली 1800 किलोमीटर्स जो अवेलेबल रोड्स हैं
1: जी।
0: वो रोड्स जो कि आपके पास जो बाई लेन्स हैं, मेन जो आर्टरीज हैं हमारे पास सभी को अगर आप देख लीजिए, डलगेट से लेकर कहीं भी आप चलें पारिमपोरा तक
1: जी,
0: इस रोड को तो टच करना ही करना है, आप कहीं से भी श्रीनगर में आ जाओ।
1: सही,
0: ये प्रॉब्लम हमें समझने की जरूरत है। तो कुल मिला के ये जो लोग कह रहे हैं कि हमें पार्किंग चाहिए इतनी सारी गाड़ियों के लिए, ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए।
1: सही। सबसे बड़ा चैलेंज एज एन ऑफिसर क्या लगता है आपको शहरी श्रीनगर में आपको दरपेश है?
0: चैलेंजेस बहुत हैं हमारे पास, एक हो तो मैं काउंट करूं। चैलेंजेस हमारे पास, पहले चैलेंज जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उतना है नहीं, जो गाड़ियां हमारे पास हैं जो चलती हैं उनको ले पाए
1: जी,
0: इतना हमारे पास रोड कैपेसिटी है नहीं। दूसरी बात जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है नहीं कि लोग अपनी गाड़ियां घरों में रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट कर लें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है हर एक सिटी में, अगर आपको आप देख लीजिए जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड सिटीज हैं जिसको प्लैनेट सिटी कहा जाए, वहां पर जो है उन्होंने क्या किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बड़ा रोबस्ट बनाया है, और जिसको कहते हैं कि जो प्लानिंग होती है जहां पर आप हैबिटेशंस रखते हैं, जहां पर लोग रहते हैं और ऑफिसेज जहां पर रहते हैं, उनकी जो आपस में जो डिस्टेंस होती है वो कैलकुलेट करके ही आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखना पड़ता है।
1: सही,
0: यहां पर हैफजर्ड चल रहा है सारा, यहाँ पर बदनज़मी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है
1: जी।
0: उनके वो कुछ हम कहते हैं कि आप ये चेंजेस लाओ, दे आर नॉट विलिंग टू डू दैट।
1: ओके,
0: अभी भी वो जो 30 साल पहले जो उनका निज़ाम था वैसे का वैसा आज भी चल रहा है, ना उनको पता है कि हमें कितनी गाड़ियाँ किस सेक्टर में कब डालनी है।
1: सही,
0: हम उनको समझाते रहते हैं, और जो अगर चल रही हैं लोग तभी अडॉप्ट करेंगे जब आप उसको एक तो कंफर्टेबल बनाओ उन गाड़ियों को, दूसरा टाइम जो उसमें है जो आपकी जर्नी टाइम है वो श्योर होना चाहिए, तीसरा ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, तभी जाके लोग ये गाड़ियां ले लेंगे। 3 things इफ यू आर इंश्योरिंग तो सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कर लेंगे, कोई अपनी गाड़ी नहीं निकालेगा। एक चीज कि आपको पता होना चाहिए, मैं घर से निकलूंगा और मुझे बाहर गाड़ी अवेलेबल होगी, बस स्टॉप पे गाड़ी अवेलेबल होगी,
1: सबसे बड़ी बात वही है।
0: दूसरी, अगर आपको कहीं जर्नी करनी हो, सपोज कोई 10 किलोमीटर का रास्ता है
1: जी,
0: अगर उसको आपको 20 किलोमीटर रफ्तार से भी गाड़ी चलेगी तो आधे घंटे में वो पहुंच जानी चाहिए आपको। यहाँ पर जो जो पब्लिक

0: ट्रांसपोर्ट इस वक्त जो मिनी बसेस हैं, कभी वो 15 मिनट में भी आपको पहुंचाएंगे और कभी 2 घंटे में भी पहुंचाएंगे। तो इसको कौन ऑप्ट कर लेगा, यानी कि जर्नी टाइम, आपने कोई घर से आप निकलते हैं तो आपने कोई प्लान करके निकलते हैं,
1: बिल्कुल सही,
0: किसी काम के लिए निकलते हैं, यू कैन नॉट गो फॉर जॉय राइड, आपको तो काम है। तीसरी बात जो है, आपको ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ट्रेसेबिलिटी मींस आजकल जो ऐप वगैरह होते हैं
1: उस पे आप
0: जैसे चलो पता चलना चाहिए,
1: घर से 9:15 बजे निकलूंगा, 9:30 बजे गाड़ी मिलेगी,
0: गाड़ी और इस वक्त गाड़ी कहाँ है,
1: कहाँ है,
0: मेरे रूट की गाड़ी किस जगह है और उसको यहाँ आने पर कितना टाइम लगेगा।
1: अगर वो चीज होती है तो इंसान अपना ट्रांसपोर्ट घर में रखेगा। और एक सिस्टम था ना, कार पूल सिस्टम भी एक था, कहते हैं कि अगर 12 मुल्क से 4-5 आदमी आते हैं ड्यूटी पे यहाँ, वो एक ही गाड़ी निकालते हैं, एक ही गाड़ी से यहाँ आते, चार गाड़ियां नहीं निकालते हैं। तो दैट मीन्स जहाँ 4 गाड़ियां श्रीनगर में दाखिल होनी चाहिए थी वहाँ एक ही गाड़ी दाखिल होती है।
0: इसमें एक और बात है जो हमारी तबीयत की, जो मैंने कहा लोगों की जो तबीयत बन चुकी है वो ये है कि वो जर्नी ब्रेक नहीं देना चाहते। मैं आपको समझाऊं, अगर आप घर से निकलते हैं
1: जी,
0: आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, अगर आपको मैं कहूं कि आपको रास्ते में स्विच ओवर करना पड़ेगा, एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में चढ़ना पड़े, उसके लिए लोग तैयार नहीं है। अभी भी लोग का मिजाज वो बना नहीं है।
1: सही।
0: और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी पता है, मैंने उनसे यही बात की, बट दे आर सेइंग कि लोग जो है ये जनाब हमारी एक गाड़ी से उतर के दूसरी गाड़ी में चलना ये मानेंगे नहीं।
1: सही।
0: लोगों को तबीयत में तब्दीली लानी पड़ेगी, चेंजेस लानी पड़ेगी, जिसको बस हॉपिंग या ट्रांसपोर्ट हॉपिंग कहते हैं, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में चढ़ना, एक जो सेक्टर से दूसरी सेक्टर की गाड़ी में जाना, हालांकि वो अवेलेबल रख सकते हैं, या तो उसमें ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सड़क क्रॉस करना पड़ता है
1: जी, जी जी,
0: या फिर आपको दूसरे बस स्टॉप तक चलना पड़ता है, लोग उसके लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि हम घर से सामान जो है गाड़ी में डालें, लंच बॉक्स डाल दें और अपने ऑफिस तक पहुँच जाएँ, चाहे 3 घंटे लगें चाहे 2 घंटे लगें।
1: ट्रैफिक जैमिंग का यहाँ पे रुझान नहीं था या हमने देखा नहीं था ज़्यादा, अब हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम बहुत होते हैं, खासकर इन महीनों में जब सयाह यहाँ बहुत होते हैं, तब अगर आपको बुलवार्ड रोड पे जाना होगा तो आपको यूँ समझ लेना चाहिए कि मैं घंटा या 1.5 घंटा पहले ही निकलूँ, तब जाकर मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाऊँगा।
0: ट्रैफिक जैम जो है लोग जैम फील करते हैं, इसको जैम नहीं कहा जाता है। देखिए क्या होता है, आप कभी जब घर से निकलते हैं तो आपको एक रास्ता थ्रू मिलता है तो आप तेज़ रफ्तारी से चलते हैं, आगे जाके आपको स्लोनेस आ जाती है। स्लोनेस इसलिए आ जाती है, या तो वहाँ इंटरसेक्शन होता है या फिर जैसे मैंने कहा कि ब्रिज आ जाता है सामने, तो वहाँ पर स्लोनेस हो जाएगी, ब्रिज तो क्रॉस करना है आपको, तो वो कहते हैं जाम हो गया जी। जैम कहीं नहीं है, स्लो मूवमेंट होती है इंटरसेक्शंस पे एंड ऑन द ब्रिजेस एंड जहां पर आपको दूसरी दिशा में टर्न करना हो।
1: कतकलामी के लिए माफी एजाज साहब, देखिए नेहरू पार्क से आप डल गेट आ जाइए, जितनी गाड़ियां दाएं बाएं पार्क की होती हैं उन गाड़ियों को देख के इंसान को लगता है कि ट्रैफिक अमला कहाँ है, इनको क्यों इन्होंने पार्क करके दिया, क्यों पार्क करने दिया। नेहरू पार्क से लेकर के डल गेट तक जितने भी होटलर्स हैं, हाउस बोटर्स हैं, वो सारे जिनके वो सयाह जिनमें आते हैं वो गाड़ियां वहां पे रुकी होती हैं और जो ट्रैफिक वहां पे चलना चाहिए उसमें बाधा आ जाती है।
0: आपको मैं अब डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आपने ये मसला छेड़ा, ये एक ऐसा सेक्टर है पहले समझने की ज़रूरत है, जो बुलवार्ड की आप बात कर रहे हैं, बुलवार्ड इज़ मेंट फॉर रिक्रिएशन, वहाँ पर आप घूमने के लिए आते हैं, आप वहाँ काम करने के लिए नहीं आते
1: जी। जी
0: जब कोई घूमने आता है तो वो लाजमी तौर वो सीनरी देखेगा, वो स्लोनेस लाएगा गाड़ी में, वो पैदल चलेगा, दाएं बाएं देखेगा
1: जी,
0: एक
1: जी।
0: तो वो है। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात पे आ जाते हैं, एक तो हो गया वहाँ कौन आता है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें। आप अगर बिड़ियारी चौक से लेकर नेहरू पार्क तक या उससे आगे जाएंगे, जो कि आगे जो बरिस्ता के पास, दैट्स ओनली 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर रास्ते में जो मैंने पिछले 1 महीने से मैं फील कर रहा हूँ, जब से यहाँ पर टूरिज्म फिर से फ्लो हो गया
1: जी जी,
0: वहाँ सभी टेल गेटिंग करते हैं, वहाँ पर बम्पर टू बम्पर गाड़ी होती है। यू विल नॉट बिलीव, शाम को 6 बजे से लेकर पूरा 10 बजे तक मैं खड़ा रहता हूँ और मुझे कोई रेस्पाइट नहीं मिलता है गाड़ियों में, गाड़ी पीछे एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं चलती रहती हैं चलती रहती हैं। रीज़न बीइंग, इस वक्त जो टूरिस्ट आ गए हैं वो सारे अपनी गाड़ी

0: में आ रहे हैं
1: जी,
0: पर्सनल व्हीकल्स में। अब आप कह रहे हैं कि वहां पर गाड़ियां सड़क पे होती हैं, अब आप दूसरा पहलू में आ जाता हूं, दूसरा पहलू, सड़क तंग की गई है, अवेलेबल ही नहीं थी, वहां पर सिर्फ दो साइड से गाड़ी चल सकती है, एक बरिस्ता टूवर्ड्स जो अपना भडियारी चौक या भडियारी चौक टूवर्ड्स बरिस्ता, जिसको कि ललित क्रॉसिंग कहते हैं, यानी कि तीसरा रो के लिए मुझे जगह नहीं है। मैं चाहूँगा कि अब मैं एक साइड से दो गाड़ियाँ डाल दूँ और एक साइड से एक गाड़ी, मेरे पास वो स्पेस भी नहीं है, बियरली आई हैव स्पेस फॉर टू व्हीकल्स टू पास, हो गया दूसरा मसला। अब तीसरा मसला यह है कि बड़ियारी चौक से लेकर पूरा नेहरू पार्क तक 15 घाट हैं आपके पास।
1: बिल्कुल है,
0: 15 घाटों पे आप समझ लीजिए जब कोई टूरिस्ट आता है, अगर वो 20 सेकंड ही रुके उतरने के लिए, सामान उतारने के लिए, मैं नहीं कहता हूं कि वहां पर गाड़ी रखे और पार्क करे, मैं कह रहा हूं सिर्फ वहां पर उतरने के लिए और शिकारा पे चढ़ने के लिए, अब आप समझ लीजिए 20 सेकंड के लिए आपने ट्रैफिक 15 जगहों पे रोका
1: है। बिल्कुल सही,
0: तो कितना कैलकुलेट कीजिए, एक तो आगे, दूसरी बात, तीसरा बात, पार्किंग पे आते हैं, पार्किंग स्लॉट्स वहां पर दो हैं कुल,
1: टोटली
0: 4 किलोमीटर बरिस्ता तक तो 5 है, उससे पहले ही मैं ले लेता हूं, चलो मैं नेहरू पार्क से आगे ले लेता हूं, जब आप बम्पर टू बम्पर गाड़ी दो साइड से लगा देंगे 4 किलोमीटर पे, अगर उनको 20 फीट भी 10 फीट भी दिया जाए
1: जी,
0: स्पेस
1: जी,
0: दैट मीन्स एक टाइम पे आपको 2,000 से 2,500 गाड़ियां मिलती हैं वहां पर एक टाइम पे, एंड एट वन पर्टिकुलर टाइम। तो ये लोड बेसिकली ये इनटेक एंड जो एग्रेस होता है, जो निकलना होता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: ये
1: जी,
0: सारा हमें कैलकुलेट करना है, फिर हमें कोई बात करनी है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पे तब उंगली उठानी है जब हमें हमारे पास स्पेस अवेलेबल हो।
1: वी डोंट हैव एनफ स्पेस। मैं एजाज साहब आपके डिपार्टमेंट पे आप उंगली नहीं उठा रहा हूँ, एक जो एक मंजर कशी कर रहा हूँ कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है। ये भी हमें पता है, मालूम है कि एजाज साहब खुद कैसे निगरानी करते हैं, रात के 10 बजे तक आप खड़े होते हैं, हमने कई बार आपको खुद देखा है। और आपने एक डायवर्जन जो किया था, आप गाड़ियों को गुपका रोड से भी छोड़ा करते हैं, उससे भी ट्रैफिक जैमिंग में फ़र्क आता है और लोग आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। अब आते हैं हम हादिसात की जानिब, आप क्या समझते हैं एजाज साहब सड़क हादिसात की बुनियादी वजूहत क्या हैं और इंसानी अमल दखल और इंसानी गफलत का कितना हाथ है इसमें?
0: हादिसात की जो बात करें हम, हादिसात का रोल होता है मशीनरी पे, दूसरा होता है मैन पे, मैन बिहाइंड द मशीन,
1: ठीक।
0: गाड़ी, गाड़ी की सेफ्टी फीचर्स क्या हैं, गाड़ी किस तरह की है, गाड़ी कितनी बड़ी है और गाड़ी किस रोड पे चलती है, ये डिटरमाइन करता है कि गाड़ी में एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। अगर कोई गाड़ी जो है उसमें अच्छे फीचर्स नहीं हो, टायर्स वॉर्न आउट हो, उनके ब्रेक सिस्टम ठीक नहीं हो, ब्रेक्स वॉर्न आउट हो, और जो बाकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं गाड़ी के, उसमें फिर इंटरनल फीचर्स आ जाते हैं, आपको जो है क्रैश जब गाड़ी होती है तो आपको सीट बेल्ट बचाता है, या फिर आपको बलूनिंग होती है, बैलून निकलता है वो आपको बचाता है, तो सारा जो है ये गाड़ी में फीचर होंगे तो वो डिटरमाइन करता है कि अगर एक्सीडेंट हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरा होता है जो वो चलाने वाला, वाहन चालक जिसे कहते हैं, जो ड्राइवर है, उसको चलाना भी आता है कि नहीं आता है, उसको गाड़ी को सेफली वो चला भी सकता है कि नहीं चला सकता है। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तब कुल मिला के हमें जो है पता चलता है कि एक्सीडेंट क्यों होता है। उसके अलावा तीसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रॉपर नहीं हो उससे भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है पिछले साल सबसे ज़्यादा कम जो है एक्सीडेंट्स देखने को मिले।
1: अच्छा,
0: एक्सीडेंट रेट पिछले साल सबसे कम थी पिछले 10 सालों में से तो, लेकिन अब इस बार जो हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स की रेट फिर से बढ़ रही है। रीज़न बीइंग यहाँ पर इंटरसेक्शंस हमारे जो यूजुअली जहाँ पर बाईपास के जहाँ तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलती हैं, दैट इज़ आवर बाईपास, तो वहाँ पे इंटरसेक्शंस काफ़ी पुअर हैं, 2-3 जगहों पे, इवन 7 जगहों पे, वो हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, उनको एड्रेस

0: करने की जरूरत है।
1: यानी आप कहते हैं कि 80% इंसानी गफलत का इसमें हाथ है, इंसानी गफलत का।
0: मैं 80 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये डिपेंड करता है, कभी कभार एक्सीडेंट कौन करता है उस पे डिपेंड करता है, एक्सीडेंट कहाँ होता है उस पे डिपेंड करता है, एक्सीडेंट क्यों होता है उस पे डिपेंड करता है। ये मैं 80 इसमें कोई परसेंटेज नहीं हो सकती, कभी कभार तो 100% ड्राइवर की गफलत होती है, कभी कभार तो ड्राइवर की 0% भी गफलत नहीं होती, नहीं तब भी एक्सीडेंट होता है।
1: सही बात है। और एक रुझान जो चला है आजकल, अब जो टू व्हीलर्स पे नौजवान होते हैं हेलमेट पहनते हैं और पीछे जो उनके साथ होता है उसके भी हेलमेट होती है, आपने ये एक अच्छी तब्दीली लाई है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन एजाज साहब, यहाँ पर हम आपके लिए और अपने तमाम सुनने वालों के लिए एक खूबसूरत नगमा पेश करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि एजाज साहब भी इसे पसंद करेंगे और हमारे सुनने वाले भी। आइए सुनते हैं।

आकाशवाणी श्रीनगर से आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह, मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर जनाब एजाज़ अहमद भट्ट साहब के साथ। एजाज़ साहब, दो तीन सवालात जो कुछ लोगों ने हमसे पूछे हैं कि जब भी एजाज़ साहब यहां आएँ तो उनसे ये पूछ लेना। दो सवालात का तो डायरेक्टली आपके साथ कंसर्न नहीं है लेकिन जवाब आप दे सकते हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा उसका कंसर्न आपके डिपार्टमेंट के से है और आपके साथियों के साथ है। वो ये है कि अक्सर लोगों की शिकायत है कि जब हम टू व्हीलर पे होते हैं तो पुलिस एहलकार हमेशा ये समझते हैं कि ये कोई छोटा बच्चा चला रहा है, इसके साथ जैसे सलूक करें वैसे कर सकते हैं, जैसे

0: फीलिंग्स है, हमें जब इस तरह से जो हमें समझा जाए कि वी आर टूल्स इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक, ये हमारे लिए बैठे हैं, बेकार लोग हैं शायद, अगर ये नहीं होंगे तो ट्रैफिक ठीक चलेगा, इस तरह की माइंडसेट भी लोगों के दिमागों में है।
1: ट्रैफिक निजाम नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं।
0: कहने का मतलब है कि हमारी भी इज्जत करें, हम भी इज्जत करेंगे।
1: और इसके साथ कनेक्टेड दो सवाल थे।
0: हाँ, दूसरा सवाल जो आपका था कि सुमोज जो है होती हैं या मिनी बसेस होती हैं, वो हमारा पूरे सफ़र का लेते हैं फेयर, जबकि हम आगे आधे रास्ते में ही उतरते हैं। देखें, पहले मिनी बसेस का तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आरटीओ ने उसकी जो है कितने डिस्टेंस के लिए कितना आपको फेयर बनता है वो डिमार्केट किया होता है।
1: सही,
0: मिनी बसेस के लिए तो है, अलबत्ता जो ये जो आप सुमोज की बात कर रहे हैं, तवेराज की बात कर रहे हैं, ये गाड़ियां जो है असल में इस काम के लिए है ही नहीं, दे आर नॉट अलाउड टू रन। असल में कानूनन इनको चलना ही नहीं है, ये गैर कानूनी है सारा जो कुछ भी चल रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैरेज इसको कहा जाता
1: okay.
0: है। इनको चलना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ये समझ लीजिए आपने किसी गाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर, आपने दो लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ये गाड़ी जी मुझे दे दो, आपको मुझे से श्रीनगर से पहलगाम पहुंचाना है, दिस इज़ फॉर दैट पर्पस। ये आपको जो इसको स्टेज कैरेज कहा जाता है, जो रास्ते में भी सवारियां उठाता है, उसके लिए ये है नहीं।
1: अच्छा,
0: ये सारा गैर कानूनी है। तब भी अब अगर किसी सेक्टर में ये जो है अनऑर्गेनाइज्ड है, मैंने जो आपसे कहा, अगर कहीं पर ऐसी रिपोर्ट्स हैं हमारे ट्रैफिक अमले तक पहुँचाएँ, We will take action against those people. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे। हमारे पास जहां भी रिपोर्ट आ जाते हैं इस तरह के, हमारे जो DSP हजरात हैं, हमारे जो DTI हजरात हैं, वो हमारे पास ऐसे रिपोर्ट्स लाते रहते हैं, एंड वी टेक एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल। वो हमारे जो है जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं, इनके स्टैंड जहां जहां भी हैं, उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो हमारे जो है कॉन्टैक्ट में हैं, और हम जो उनको कहेंगे कि ये तब्दीली लाओ, वो कर लेंगे। अलबत्ता इसमें एक और चीज़ आ गई है, वो ये है कि आवारा गाड़ियाँ
1: जी,
0: एक तो हो गया जो स्टैंड से चलती हैं सुमोज तवेराज, कभी कभार ऐसा भी है कि मतलब ये जो जैसे मैंने कहा ये असल में फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट के लिए है, उसमें जो है आपको ये टूरिज्म सेक्टर में काम आती हैं। अब जब टूरिज्म कम हो गया तो लोग वो गाड़ियाँ उठा के यहाँ चलाते हैं पब्लिक को उठाने के लिए, तो उस उनको आवारा गाड़ियां हम कहते हैं, वो भी आ जाते हैं।
1: ओके,
0: तो इसलिए ये सारी चीजें इसको करना बहुत मुश्किल है।
1: अगर रिपोर्ट हम तक करेंगे हम कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब आते हैं एक और पहलू पे, ये बड़ा पॉजिटिव और मजबूत पहलू है आपके डिपार्टमेंट के तई जब हम बात करते हैं, वो ये कि एक रुझान अब पैदा हो गया है, अब छोटे छोटे लड़के जो स्कूटीज और मोटरसाइकिल्स चलाते हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। एक नया रुझान चला है कि जो पीछे बैठता है उसकी भी हेलमेट होती है और सीट बेल्ट लोग पहनते हैं। लेकिन एक ख़ास बात अभी भी हमने देखी है कि जो बच्चे 18 साल के भी नहीं होते हैं उनको भी माँ बाप गाड़ियाँ भी देते हैं और स्कूटीज़ भी देते हैं और स्कूटर भी देते हैं, और तेज़ रफ्तारी और इस रुझान को कैसे आप आगे देखते हैं?
0: देखिए, जब भी कोई भी व्हीकल चलाए, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या सिक्स व्हीलर हो, जो भी चलाए, जिस तरह का भी ट्रांसपोर्ट चलाए, उसको दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तरफ होती है, अपना ख्याल रखना, जब निकले पहले ये देख ले कि मेरी गाड़ी जो है, जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट से अगर बचना है तो गाड़ी की फिटनेस देख ले, गाड़ी ठीक भी है, इसका जो है ब्रेक सिस्टम ठीक तो है, क्लच सिस्टम ठीक तो है, हमारे जो सेफ्टी फीचर्स वो सारे हैं, टायर ज़्यादा घिसे तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखनी है। तब मोटरसाइकिल चलाता हो तो कम से कम हेलमेट देख ले मेरे पास है, फिर कागजात देख लें, बाहर जाके ट्रैफिक वाला तो पकड़ेगा ना, कागज़ तो चेक करेगा, वो सारे कागजात देख ले, साथ रखे, वो होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर सेल्फ, जब हम अपनी सेफ्टी और जो कानून का जो है वो पालन करते हैं। दूसरा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स, जब आप रोड पे निकलते हैं, आपको ये नहीं समझना है कि ये सारा रोड अब मैंने ऑन कर दिया, जहाँ भी गाड़ी खड़ी कर दूँ मेरा जो है ये सारा इलाका मेरा है, कहीं भी करूँगा कोई कुछ नहीं पूछेगा, कहीं भी रुकते हैं लोग, शॉपिंग करनी हो तो दुकानदार के सामने गाड़ी रखेंगे और अपनी खिड़की से ही

0: तो सामान लेते हैं। आगे जाके जहाँ पार्किंग हर जगह नहीं है, लेकिन जहाँ आपको स्पेस मिले वहाँ तो गाड़ी लगा, वो भी नहीं करते हैं। किसी को अगर बच्चा है घर में, उसको सुबह खुद उसको ड्रॉप करना चाहिए, अगर उसके पास वो माइनर है बच्चा, अभी छोटा है, तो उसको स्कूटी क्यों देते हैं? आप खुद सोते रहते हैं, आराम करते हैं, बच्चे को खतरे में डालना, ये सब चीज़ें जो सोसाइटल चेंजेस में आ जाती हैं, इसमें एनफोर्समेंट कुछ नहीं कर सकता। ट्रैफिक पुलिस ये कहाँ लोगों की तबीयत कैसे चेंज करेगा, वो तो लोगों को खुद करना है ना।
1: सही बात है, सही बात है। तो वैमो तुम्हें जिंदगी हिंदी बेस पहलो उसको एजाज साहब बेहतरीन आर्टिस्ट थे, एजाज साहब गेवन बोजन शौक तो गेवन गेवन शौक।
0: एजाज सुबह तवे एजाज रह ज्यादा पसंद
1: एजाज रहने आवाज में बोजो बोत, मगर तु अगर बो तुम वन अख लाइन गुनगुन पे आवाज में
0: मे यह लक्चार पे अख गेवन सख पसंद मे पता क्या मैं पसंद सह मजबूर मूवी हूं गेवन कभी सोचता हूं कि मैं चुप रहूं, कभी सोचता हूं कि मैं कुछ कहूं।
1: नहीं आप थोड़ा सा
0: आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह। तो तुम्हें पसंद एजाज राह, वो आपके दोस्त भी हैं। एजाज राह साहब ने आवाज में अख कलाम सदाबंद कर कलामे महबूबा मस्तूर मे पूर्व में तुम तो पसंद तो बोजन वाले पसंद।
0: शुक्रिया।

0: महबूबा मस्तूर का कलाम और आवाज़ एजाज राह की। इस वक्त हम बात कर रहे हैं SSP ट्रैफिक श्रीनगर जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब के साथ। एजाज साहब, दो तीन सवाल और हैं जो बड़े अहम हैं। एक सवाल यह है कि पैदल चलने वालों के हकूक और जिम्मेदारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, पैदल चलने वालों के तो अवलीन हकूक हैं। पेडिस्ट्रियंस जो हैं, सिटीज़ ओवरऑल जो इस वक्त दुनिया में हैं, वहाँ पर पेडिस्ट्रियन पाथवेज पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। आप अगर कहीं भी जो डेवलप्ड नेशंस हैं, जहाँ नई सिटीज़ बन रही हैं, वहाँ पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखते हैं, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रखते हैं। उसमें जो ये वहाँ का ट्रेन का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाता है, मेट्रोज़ को बेहतर किया जाता है, और लोगों को उनकी जो ड्वेलिंग्स हैं, उन जहाँ वो रहते हैं, उसको इस तरह से प्लान किया जाता है कि वो उस जहाँ पर भी उनको अपनी जो मेट्रो लेनी हो या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना हो करीब हो, और उसके दरमियान जो रास्ता होता है वो पेडिस्ट्रियंस के लिए रखा जाता है। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आजकल जो है फॉसिल फ्यूल जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, उस वजह से जो हमारा जो माहौल ख़राब हो रहा है, क्लाइमेट जो है ख़राब हो रहा है। आज आप देख लीजिए यूरोप में इस वक्त हीट डोम चल रहा है, वहाँ पर लगभग 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जो पेरिस में चल रहा है, और इसमें ज़्यादा ये इससे भी ख़राबी की बात यह है कि जो नाइट टेम्परेचर्स है वो डाउन नहीं हो रहे हैं। तो ये इसलिए है, उस पर जो सभी साइंटिस्ट्स ने जो रिसर्च किया है उसमें यही पता चला कि जो हम ये गाड़ियां चलाते हैं, व्हीक्यूलर ट्रांसपोर्ट, इसका बड़ा रोल बनता है।
0: सही,
1: तो इसको सही रास्तों से उठाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोगों को आदत डाल दें बाइसिकल चलाने की और जो पेडिस्ट्रियन चलने की। हमें

0: कश्मीर ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है,
1: बहुत
0: श्रीनगर और जो बाकी पूरी वैली है ये इकोलॉजिकल फ्रेजाइल है। यहाँ पर जो है पहले ही आप देख रहे हैं कि वाटर बॉडीज श्रिंक हो रही हैं, हमारा जो पानी की दस्तियाबी है वो कम हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स रिसीड हो रहे हैं। तो हमें ज़्यादा ऑब्जर्वर बनने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा इस तरफ ध्यान देना है कि हम
1: अच्छा, ये
0: किस
1: जो
0: तरह
1: ई
0: से
1: ट्रांसपोर्ट आ रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या?
0: इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज़ द इन थिंग, वो तो अब तो वही करना है ना। फॉसिल फ्यूल्स तो तभी कम हो जाएंगे इस्तेमाल, आप पेट्रोल डीजल से कम, ये कम तभी करेंगे जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाना स्टार्ट कर लेंगे।
1: तब

0: पे आ जाएंगे उसके भी, लेकिन कुछ अपने इश्यूज हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वेल सेट, हमें वॉकवेज बनाने की ज़रूरत
1: ज़रूरत
0: है,
1: है, बहुत ज़रूरत है।
0: बहुत ज़रूरत।
1: और ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों में सबसे ज़्यादा कौन सी खिलाफ वर्जियाँ आपके सामने आती हैं?
0: खिलाफ वर्जियां अक्सर जो हमें आ जाती हैं वो या तो सीट बेल्ट लोग पहनते नहीं हैं ज़्यादा,
1: अच्छा
0: अपनी जो गाड़ियों के कागजात पूरे नहीं रखते हैं, और
1: हाँ,
0: लाइसेंसेस नहीं होती हैं अक्सर।
1: ओके ओके ओके। अब एक खास बात वो ये है कि अवामी बेदारी बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस अवामी बेदारी के लिए किन इकदामात पे काम कर रहा है?
0: आपने देखा ही होगा, दरबार मुंह से पहले जो 6 महीने थे उसमें हमने यही काम किया। हमने सिर्फ अवेयरनेस की तरफ ध्यान दिया,
1: जी
0: हमने एनफोर्समेंट की तरफ ध्यान दिया। लोगों के जो पहले हमारी कोशिश ये रही कि जो यहाँ पर लोग अपने गाड़ियों के कागजात पूरे नहीं करते हैं, आपने देखा होगा विंटर में हर जगह हम कहीं ना कहीं अपना जो है ड्राइव करते थे। उस
1: सही
0: ड्राइव करने की वजह से आज की डेट में जब हम गाड़ियों के कागजात चेक करते हैं तो अक्सर लोगों के पास पूरे होते हैं।
1: बिल्कुल
0: एक तो वो, दूसरा आप जो आप अवेयरनेस की बात करें, अवेयरनेस भी साथ साथ में ही ड्राइव्स के साथ साथ होता रहता है। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
1: बिल्कुल
0: उसको हम कभी हमने फरामोश नहीं किया इस बात को। स्कूलों में जाते हैं, रास्ते में भी जहां हमें लोग मिलते हैं उनसे बात करते हैं। मेरे यूथ के साथ थ्रू सोशल मीडिया कनेक्शन है,
1: बिल्कुल
0: उसके थ्रू भी हम उनको समझाते
1: नहीं,
0: रहते
1: बहुत
0: हैं।
1: अच्छी मूव्स जो आपने कुछ अरसे से की वो कामयाब हुई वो मूव्स, तो उसका समर, उसका जो फल मिल रहा है वो ये कि अभी कंट्रोल रूम से हमारे इंजीनियर तारिक साहब आए और तारिक साहब ने कहा कि कंट्रोल रूम में हमने कई फ़ोन रिसीव किए, खासकर हमने सोनामर्ग से कुछ फ़ोन रिसीव किए। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से एक तो एजाज साहब को सलाम दीजिएगा और साथ ही उनको मुबारकबाद दीजिएगा कि ट्रैफिक महकमा जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है।
0: जी शुक्रिया। मैं तो हमारा तो मानना ही यही है कि जब तक हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन न बढ़ाएं हमें लोगों की मुश्किलात समझ नहीं आएंगे, ना हम एक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये तो सोसाइटी और जो पुलिस है इनको इन टैंडम काम करना पड़ता है, तब
1: बिल्कुल सही।
0: जाके एक अच्छा जो है रिजल्ट निकलता
1: आप
0: है।
1: सोशल मीडिया पे भी बहुत काम करते हैं, क्या आपको लगता है एजाज साहब कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में भी हमें कुछ करने की ज़रूरत है ताकि शऊर स्टूडेंट्स में बेदार हो जाए?
0: मेरा तो मानना है ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम द होम इटसेल्फ। हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको मॉरल वैल्यूज सिखाने के साथ साथ ट्रैफिक के जो कवानीन के बारे में भी बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे स्कूलों में मैं यहाँ गया, वहाँ जो बेसिक तालीम बच्चों को देनी चाहिए जो किड्स होते हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं वो।
1: सही है।
0: कई जगहों पे मैंने बच्चों को जो कि प्राइमरी लेवल के बच्चे थे उनको मैंने पूछा कि अगर आपको सड़क क्रॉस करनी हो तो आपके जो यहाँ असातिज़ा है उन्होंने आपको बताया भी है कि कैसे क्रॉस करना है सड़क? दे वर नॉट विलिंग टू आंसर एक्सेप्ट फ्यू बॉयज़। ये अफसोस की बात है। जब हम बच्चे थे हमें पहला ये सिखाया जाता था, स्कूलों में तालीम दी जाती थी कि गाड़ियां जो हैं सड़कों पे होती हैं, बच्चे को कैसे क्रॉस करना है, बच्चे को सड़क पे कैसे चलना है, बच्चे को किस डायरेक्शन में चलना है। मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो स्कूल्स हैं उससे पहले बच्चों को पेरेंट्स सिखाने चाहिए। पेरेंट्स ही हैं जो की है, उसके बाद स्कूल्स पे बात आती है। स्कूल्स को भी करना है, हम उनके साथ जो है इंटरेक्ट करते रहते हैं। मैं खुद भी जाके काफ़ी सारे स्कूलों में बच्चों के साथ बात करता रहता हूं, तो रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। हर जगह हमें जो है स्कूल अथॉरिटीज़ भी, पेरेंट्स भी मेरे साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो साथ ही साथ जो हमें जो वायलेशंस मिलती हैं उसमें हमने एक इंग्रेडिएंट डाला है, दैट इज़ एडवाइस करना, पनिश नहीं करना। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे जो ईद के बाद जो हमने ड्राइव्स किए उसमें काफ़ी माइनर्स हमने पकड़े, लेकिन हमने एक्शन ज़्यादों के खिलाफ नहीं दी। उसमें कुछ बच्चे भी थे उसको मैंने, मतलब आपने देखा होगा शायद सोशल मीडिया पे कि किस तरह से हम प्यार से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं
1: और उसने भी बड़े मासूम अंदाज में जवाब।
0: बिल्कुल, ये एक की बात नहीं, ये रोज़ होता रहा, क्योंकि उस वक्त जो उनके वालदैन थे उन्होंने वो वीडियो उठा के फिर वायरल कर लिया। अदरवाइज ये हमारा जो अमला ہوتا ہے وہ روز ایسے کام کرتا رہتا ہے.
1: دیکھیے یہ جو ٹریفک کا معاملہ ہے یا مسئلہ ہے یہ پولیس کا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ عام شہری کا مسئلہ ہے, معاشرے کا مسئلہ.
0: بالکل بالکل
1: ہے نا. اب دیکھیے

0: एजाज साहब, आने वाले बरसों में श्रीनगर के ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपका विजन क्या कहता है?
1: देखिए, मेरा जो विजन है उसमें मेरा विजन कुछ नहीं कर सकता जब तक कि बाकी स्टेक होल्डर्स साथ में एक ही पेज पे ना आ जाएं, तब जाके ये श्रीनगर का हम जो ट्रैफिक निज़ाम है ये बेहतर बना सकते हैं। जहाँ तक आप एजाज साहब से अगर आप पूछेंगे तो कैसे करें, उसमें मैं सिंपल एक सेंटेंस में आपको जवाब दूंगा। देखें, हमें प्लान यहाँ पर जापान की तरह नहीं करना है। वी डोंट हैव टू प्लान श्रीनगर इन अ वे वी आर प्लानिंग ए बिग मेट्रो सिटी। वी हैव टू प्लान इट लाइक स्विट्जरलैंड। हमें कश्मीर जो है यहाँ पर एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डाल दें रोड का कि ये सारा ही हमारा इकोलॉजी ख़त्म हो जाए, इकोसिस्टम ही ख़त्म हो जाए, हमारे जो खूबसूरती है वो उस पर दाग लग जाए, तो दिस विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग। मेरे ओपिनियन में यहाँ पे सबसे पहला कदम जो उठाना है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को डिफ़िकल्ट बनाना है श्रीनगर में चलना।
0: ओके,
1: जितनी गाड़ियां हम यहाँ के रोडों से उठा सकते हैं उतने उठाने की ज़रूरत है।
0: अच्छा,
1: इसको टैक्सेबल बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर श्रीनगर में अगर कोई प्राइवेट गाड़ी में अंदर आता है या फिर कहीं सेहत अफजा मुकाम जैसे हमारा बुलवार्ड है वगैरह वहाँ की तरफ जाना चाहे तो इट शुड बी हैवीली टैक्स्ड।
0: ओके,
1: तब जाके लोग गाड़ियाँ घरों में गाड़ियाँ रखेंगे, तब जाके ये ठीक हो जाएगा। मेरे ओपिनियन में वी डोंट नीड मोर रोड्स, वी नीड लेस ट्रैफिक।
0: अच्छा,
1: लेस व्हीकल्स ऑन द रोड।
0: आपने अच्छी बात कही। अगर कोई शहरी ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? कि आम आदमी
1: वो चल सकता है,
0: उसको गाड़ी का इस्तेमाल
1: नहीं करना। मैं अपना बताऊँ, मैं हर रोज ट्रैफिक जो यहाँ पर मैं रेगुलेट करता हूँ, आई वॉक अबाउट 12 किलोमीटर्स एवरी डे, तो चलेंगे क्यों नहीं लोग? यहाँ लोगों को आदत
0: तो
1: पड़ गई है,
0: का ख्याल भी रखना पड़ता है, आप तो उसके लिए भी
1: नहीं, वो हम चलते हैं फ्यूम्स में, हम चलते हैं साउंड जहाँ हॉर्न्स ब्लेयर होती हैं। आई डोंट डू इट इन, मैं कहीं पर जंगल में या कहीं लॉन में नहीं करता हूँ, इट्स ऑन रोड, बैंग ऑन रोड्स, बारिश हो ये हो कुछ हो मैं चलता हूँ एक अम्ब्रेला लेकर या अगर नहीं तो टोपी पहन के। क्वेश्चन इज यहाँ पर लोगों को कितना, अगर आप क्रिस क्रॉस भी श्रीनगर को कर लें, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना है, लेकिन पीपल आर नॉट विलिंग। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन दे विल डू इज दे विल कीप देयर व्हीकल्स एट होम एंड दे विल वॉक टू देयर डेस्टिनेशंस।
0: बिल्कुल
1: मुश्किल है नहीं, सेहत भी बनेगी जैसे आपने कहा। चलो एजाज साहब, आप समझ लीजिए मैं सेहत का ही ख्याल रखता हूँ। करना चाहिए, चलना चाहिए, आदत डालनी चाहिए चलने की।
0: नेट पे मैंने देखा कि कुछ लोगों ने, जब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं ना, बारामूला की बात करते हैं या अनंतनाग की बात करते हैं, कुछ लोगों ने कारपूल सिस्टम शुरू किया है। जिस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा था, वो एक ही गाड़ी डिस्ट्रिक्ट से निकाल करके 10-12 लोग उसमें चले जाते हैं, सारे लोग गाड़ी नहीं निकालते हैं, ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था।
1: अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट को रोड पे लाना मुश्किल बनता है। ये 4 लोग कर सकते हैं, 10 लोग कर सकते हैं, 20 लोग कर सकते हैं, अक्सर लोग नहीं करते हैं। हमारी जो आदत है, मैंने कहा ना, हमारा जो निज़ाम है वो हमारा जो सेट पैटर्न है, हमारा सेट पैटर्न हर सिटीज़न का ये बना है, वो घर से निकलता है, हुक में चाबी रखी होती है या इवन पैंट में ही चाबी रखी होती है, वो उसको दूसरा जो नज़र आता है घर से, जब से वो कदम रखता है दरवाजे के बाहर, उसको गाड़ी नज़र आती है और कुछ नहीं नज़र आता।
0: सुनो, चोटा नीति गाड़ी मजी,
1: यस, उसको गाड़ियाँ
0: मोटरबाइक ये हकीकत। अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई, दुकानदार के सामने लोग शॉपिंग करते हैं गाड़ी रख के, सोचते हैं पिलनामा जान
1: दायरकिन
0: गाड़ी हथा थी गुमत खड़ा था, तमिश ग्रहण आसा गया। एक तो ये है, दूसरा ये है कि दुकानदार किसी और की गाड़ी दुकान के सामने खड़ी करने नहीं देगा लेकिन अपनी गाड़ी वहाँ पे रखता है। ये चीज़ें कब सेट होंगी एजाज साहब?
1: ये सेट नहीं होंगी क्योंकि हम तैयार ही नहीं है।
0: जहन जब सेट होगा तब होंगे।
1: हत अस नेरान सुबस नमान मस्जिद नेरान नमाज पारान इस दोह तसान या जुमा दोह तसान सैन मौलवी हजरात वनान हे नमाज पढ़ू तम जहाँ वनान अत कत पत
0: करो
1: वी स्पीक्स। यहाँ आप देख लो, मैं कल से रो रहा हूँ।

0: मतलब खून के आंसू रो रहा हूं, जो हमने जो पोल्यूशन कल दिन में कर दिया यहाँ पे। क्वेश्चन इज, कितने सारी बोतलें डाल दी हमने
1: सही बात है,
0: सड़कों पे।
1: सही बात है।
0: जब तक कि हम ओनरशिप क्राइसिस है कश्मीर में, सिंपल, जब तक कि हम कहते हैं कि हमारी जो है वैली है खूबसूरत है जी, वी ओन इट, हम लोग तूफान है यहाँ के रहने वाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नोबडी ओन्स कश्मीर। यहाँ सभी जो है इसको ट्रैश बिन बना रखा है,
1: सही बात,
0: जिसको भी मिलता है वो इसको खराब करने पे तुला हुआ है। तो कैसे करेंगे ठीक,
1: मैंने
0: जब तक कि ये हमारे मॉरल्स एथिक्स में नहीं आ जाएंगे।
1: मैंने कई बार अपने इसी प्रोग्राम में यहाँ पर अपने गेस्ट से बात करते हुए ये कहा कि आप बच्चे को अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, आप उसे कहते हैं कि नंबरों की होड़ में तुम आगे चलो, 500 में से 500 ले आओ, लेकिन उसको बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके उनकी बसेस में जो बच्चे बैठे होते हैं, बुलवार्ड पे चलते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो बोतलें डाल में फेंकते हैं, वो बच्चे चिप्स के रैपर फेंकते हैं, ड्राइवर हजरात या टीचर उनको ये नहीं कहते हैं कि ये कहाँ फेंक रहे हो, इसको घर गाड़ी में रखो, घर में जाकर के डस्टबिन में डालो, स्कूल में जाकर डस्टबिन में डालो। जब आप ये एजुकेशन नहीं दे पाते हो, आप कैसे कह सकते हो हमारा डल ठीक नहीं है।
0: जनाब हम यही तो रोना है हमारी सोसाइटी का। हम अपने आप को एजुकेटेड कहते हैं, अपने आप को काबिल तरीन लोग कहते हैं, अपने आप को बासलाह लोग कहते हैं, लेकिन जो बेसिक एथिक्स हैं वो हमारे पास नहीं है। आप पोल्यूशन की बात छोड़ दीजिए, गाड़ी आप चलाते हैं सड़क पे, बात भी अगर किसी के साथ करनी हो ना, सर बाहर निकाल के दूसरी गाड़ी वाले को पहले बात करते हैं या दुकानदार से बात करते हैं, और जब पीछे वाला हॉर्न बज जाता है, जय मुझे तो जाने दो, उसको उंगली दिखाते हैं, एक मिनट। ये समझता नहीं है, मैंने इसका एक मिनट नहीं लिया, पीछे अगर 50 गाड़ियां हैं, 50 लोगों का एक मिनट मैंने लिया, आई हैव वेस्टेड 50 मिनट्स ऑफ द पब्लिक। अब ये चीजें कौन सिखाएगा।
1: और एक और बात, जाते जाते मैं मुझे याद आ गई, मैंने ये इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में दोहराई है, ये तो चुना इस डबल लेन प्रेत कुंजाई के वैम साथ अख छा इस अख सड़क योर चु गसुन तो अथ पर चु और ट्रैफिक के वहां बुछुस ओवरटेक करान एकिस गाड़ी तब पछु और ये वन उस पानी रोड किन पकान ओवरटेक करान करान चुस बई एमिस हावा लाइट्स रोस पाथ।
0: एग्जैक्टली,
1: ये रुझान मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या है। एक मैं ही ओवरटेक कर रहा हूं, उस जो वहां से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है उसका रोड है, मैं ही उसको लाइट दिखा रहा हूं, हेडलाइट्स ऑन करा सिखा सब बात याद कुनी गली में मतलब जाए।
0: निजामी साहब अगर तुम ये बात करो ना तिल लगे न पूरे दो हाथ से इस यू शू इशू मामले इशू सोसाइटी हिंदिस दिमागस में मामले नहीं कि ये तो ठीक करे ना को इस कर इशू नशो नुमा बेसिक नशो नुमा में त्रावन यम साथ लोकचार पेट एकिस बच्चस छ अंग्रेज कित कन छ आसा बाकीन कंट्रीजन में कित कन छ गसा ठीक सॉरी बिकॉज तिमन छ वैल्यू सिस्टम तिमई
1: बथव वमेद जे एजाज अहमद भट्ट साहब लिन बेस प्रोग्राम में से ऐसी इंशाल्लाह जुलाई की सरातस में मैं उम्मीद रखूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो मेरे दोस्तों ने अभी पूछे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन मैंने आपसे अब पूछे ही नहीं क्योंकि हमारा वक्त अभी खत्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले महीने आपके साथ फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। एजाज साहब आपने अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त दिया, आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: शुक्रिया मैं आपका करता हूँ, शुक्रिया, थैंक यू।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का शुक्रिया। अब पायम सुबह से अपने मेज़बान रशीद निज़ामी को दीजिए इजाज़त, अगली आवाज़ होगी सायका सलीम की।
2: जी निज़ामी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समीन हमारे अगले ऐलान का इंतजार फरमाएं। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर कह बजे 30 मिनट सपुत वंश पेश छकर रो सदाकार अब्दुल रशीद डार हरपुरी तथी कलाम रहमान दारियल।

کیا کر یمن پانسن دہن کہن یم یتلج وقت سند کرت گئی

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों

0: बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said that Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said that this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said that he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. Mr. Modi said that during the visit, he will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah will launch cooperative-based taxi service

अब सुनते हैं फिल्म बेताब से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी की मौसिकी और राहुल देव बर्मन के दिए बोल।

ये नगमा हमने लिया है लव स्टोरी से, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की मौसिकी और आवाज आशा भोसले की।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। SKICC श्रीनगर में इस वक्त इंटरफेथ डायलॉग ऑन कश्मीरियत एंड शेयर्ड कल्चरल ट्रेडिशंस के उन्वान के तहत एक तकरीब मुनक्द हो रही है। तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, आज मुदा कार सियासतदान डॉक्टर करण सिंह, कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान के अलावा दीगर मुतअद्दिद शख्सियत शामिल हैं। अपने इब्तदाई कलमात में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा,
1: 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में ये बात कही गई कि जन्म विप्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सभी को सुख दें, ये बात प्राचीन काल से हमारे यहाँ कही जा रही है। तो मुझे लगता है कि सहअस्तित्व और सर्व धर्म संभाव का इतना मजबूत आधार प्राचीन भारत ने तैयार किया, अनेक धार्मिक धाराओं को भारत में एक ऐसा वातावरण मिला जहाँ वे केवल सुरक्षित ही नहीं रहे बल्कि समृद्ध भी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह सेशल्स के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हुए, जहां वो सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान ज़िम्मेदार के तौर पर शिरकत करेंगे। वो सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी से मुलाकात, कौमी असम्बली से खिताब और भारतीय तारिकीन वतन से बातचीत करेंगे। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि भारत की दिफाई फौजों का एक दस्ता और भारतीय बहरिया के 2 जहाज भी इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। داخلی امور اور امدادی باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ امدادی باہمی پر مبنی پہلی ٹیکسی سروس بہادر ٹیکسی کا گجرات کے 14 بڑے شہروں میں آغاز کریں گے۔ یہ تقریب آج گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں منعقد کی جائے گی۔ وزیر داخلہ گجرات کے 3 روزہ دورے پر ہیں، وہ اس دوران کئی کاموں کا بھی آغاز کریں گے اور کچھ جائزہ میٹنگوں کی صدارت کریں گے۔

0: ट्वेल्थ के बाद से ही मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। तो लेकिन यहाँ पे मेरे वालिद और मेरी माँ का बहुत ही अहम रोल प्ले हुआ है। उन्होंने मुझे कभी भी नहीं रोका है किसी भी शोबे में जाने से। तभी मैं अभी चाहे एविएशन की बात करूं, मैं चाहे मैं आपके सामने अभी हूं, तो मतलब इट्स बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दिया हुआ है। उसके साथ साथ मेरे में मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये करना चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, तो वो एतमाद मुझ में था कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को मैं कहीं ना कहीं बरकरार रखना चाहती हूं और आगे भी इंशाल्लाह बढ़ना चाहती हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, उनको लगता है कि अगर हम अपने बच्चों को आज़ादी दें कहीं ये बुरी बुरी डायरेक्शन में ना चले जाए। बिल्कुल, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, आप देखिए कितने ड्रग्स के मुलविस हो गए हैं हमारे बच्चे, कितने ज़्यादा अभी इस चीज़ का हाइप हो रहा है हमारे माशरे में। तो ये बहुत ही एक बड़ा वबा है हमारे माशरे के लिए। तो माँ बाप कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर हमने बच्चों को आज़ादी दे दी कहीं कहीं कहीं ना कहीं ये उस डायरेक्शन में ना चले जाए।
1: नहीं लगता शायस्ता उससे जो बड़ी एडिक्शन है वो फ़ोन की एडिक्शन है, जिसमें हमारे बच्चे मुलव्वस हो गए, जिसकी वजह से वो अपनी तालीमी कारकर्दगी सही से नहीं निभा पा रहे हैं। उसमें माँ बाप को क्या करना चाहिए उस ज़िमन में, ताकि बच्चों को, चले जी ड्रग्स तो बाहर से मिलते हैं, लेकिन जो हम घर में अपने बच्चों को ये फ़ोन की एडिक्शन दिए हुए हैं उसके लिए क्या करना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए आजकल जो पेशेंस लेवल है बच्चों में वो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। आप देखिए अगर माँ बाप जरा सा भी स्ट्रिक्ट हो जाए अपने बच्चों के लिए, तो आजकल देखते हैं सुसाइड का जो रेशियो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो माँ बाप भी डरते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे माँ बाप को, पेरेंट्स को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने घर में। बिल्कुल, अपने बच्चों के साथ वो, उनको पता होना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है या 3 घंटे फोन के साथ है, तो फोन के साथ क्या ही कर रहा है। तो यहाँ पे उनको अगर वो स्ट्रिक्ट माहौल बनाएंगे, जैसे कि कुछ वालदैन मैंने ऐसे देखे हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट माहौल, और बच्चे बोलते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बट उनको जो करना होता है वो वही करते हैं, बच्चों को जो करना हो, बिकॉज जैसे मैंने बोला पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। तो माँ बाप में एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने दुनिया देखी होती है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उनमें थोड़ा सा वो फ्रेंडली एटमोसफियर जो है वो क्रिएट करना चाहिए घर में, ताकि बच्चे भी ईजिली खुल के उनसे वो बात कर सके अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है। हम देखते हैं बहुत सारी वायलेशंस के शिकार कुछ बच्चे होते हैं और वो खुल के नहीं बोल पाते हैं अपने पेरेंट्स को। बिल्कुल, बाहर की तो बात ही नहीं है, बाहर किन से वो बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर घर में होगा, माँ बाप के साथ ही, वो किसी
1: भाई बहन
0: के साथ, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये जो चाहे वायलेशन हो रही है, चाहे किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है बाहर, तो मुझे लगता है
1: बुलिंग भी होती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जिससे बच्चे की साइक पे बहुत ही असर पड़ता है
0: और पता भी नहीं होता है। वो उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पे बच्चे का जहनी तवाजुन जो है वो खराब हो जाता है और माँ बाप को पता ही नहीं चलता है।
1: सही,
0: तो मुझे लगता है एक एटमॉस्फेयर घर में, वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए भी यहाँ पे एक मैं बताना चाहती हूँ उनके लिए भी, नो डाउट वो खुद भी इतने काबिल है कि उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो खुद तो बस फ़ोन के साथ भी बिज़ी रहते, वो बोलते हैं हम भी बिज़ी है, लेट गो कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे माँ बाप को पहले, जैसे खुद में अगर वो उठ के नमाज पढ़ेगा तो बच्चा भी बचपन से ही वही सीखेगा।
1: हाँ, उसकी जो पेरेंट्स होते हैं
0: रोल मॉडल होते हैं, बिल्कुल, और बच्चे घर से ही सीख के निकलते हैं। और मुझे लगता है माँ बाप अगर थोड़ा सा अपने आप में चेंज लाएंगे, ऑब्वियसली बच्चों में भी ऑटोमेटिकली चेंज आएगी। बिल्कुल, और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी, आजकल हम देखते हैं जो पेरेंट्स होते हैं बहुत सारे ऐसे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो सुबह निकलते हैं शाम को आते हैं, एंड दे फॉरगेट अबाउट कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो अपने बच्चों पे वो ध्यान नहीं दे पा रहे। तो यहाँ पे मैं ये भी, ठीक है हमारा काम करना सही है, वो काम कर रहे हैं, वो अपना ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन वो ये भी ध्यान दे कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दे, ताकि ये जो हमारे मुशरे में ये वबा फैले हुए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ख़त्म ही हो जाएंगे फिर
1: इंशाल्लाह रहमान। अच्छा शाइस्ता, आपने अभी बात की कि बहुत सारे ऐसे अमूर हैं जहाँ पे हमारी जो ख़वातीन हैं उनकी पहल हो रही है, जैसे कि पहले क्या होता था कि हमने एक दो शोबे रखे थे, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर मेडिकल में, चाहे टीचर बने या डॉक्टर बने, इसके बगैर तो हम कुछ सोच नहीं पाते थे अपनी ख़वातीन के बारे में।
0: बिल्कुल,
1: हम कहते थे दीज आर द आइडियल प्लेटफॉर्म्स फॉर अ वुमन जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन आज कोई ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे हमारी ख़वातीन शाना बशाना अपने मर्द हज़रात के साथ काम न कर

0: रही हूँ। तो क्या वाकई में हमने उतनी कामयाबी पाई है कि हम वाकई में उनके शाना बशाना काम कर रहे हैं? कोई चैलेंजेस तो नहीं हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, आपने ये बहुत ही अच्छी बात बोली। आजकल अगर हम देखें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी शोभा ऐसा है जहाँ पे औरत नहीं काम कर रही है। बिल्कुल, कुछ शोबे ऐसे थे जैसे फॉरेस्ट्री का था, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन थी, यहाँ पे माना जाता था ये मर्दों का मैदान है। लेकिन आज आप देखिए, आज ये औरत ने अपनी मेहनत से जो है अपनी जगह बनाई है हर एक शोबे में। मैं बोलूँ आपको, आज पायलट है लड़कियाँ, आज एंटरप्रेन्योर है लड़कियाँ, यहाँ पे मतलब हर एक शोबा, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा शोबा है। बिल्कुल, अगर वर्क फ्रॉम होम भी करती है उसमें भी औरतें पाई जाती है। तो औरत का जो रोल है वो हर एक फील्ड में अभी पाया जाता है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, यहाँ पे एक चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो हमारे मर्द हजरात हैं उनको थोड़ा अपनी जो सोच है उसमें थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा। औरत नो डाउट कि काम कर रही है हर शोबे में, कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है, और मुझे लगता है इनफैक्ट मर्दों से आगे जा रही है आजकल। और ये मर्द हजरात बिल्कुल जानते हैं, उनको पता है कि औरत अगर उनके ऑफिस में काम कर रही है और वो उनसे अच्छा भी कर रही है,
0: क्योंकि काफी मेहनत करती है के लिए।
1: बिल्कुल। और आजकल अगर आप देखें, कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेफर करते हैं कि फीमेल ही उनके ऑफिस में जॉब करे। इट्स बिकॉज ऑफ, उनको लगता है कि ये कंटिन्यूटी रखेगी,
0: कंसिस्टेंसी
1: होती है, और उनको पता है कि अगर हम इसको छोटे से छोटा काम भी बोलेंगे शर्माएगी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने घर में हर एक चीज देखी होती है। अगर वो सुबह ऑफिस आएगी, वो वहां पे पहले पूरा साफ करेगी, वो देखेगी, मतलब उसमें अल्लाह ताला ने वो चीज रखे हुए हैं। यहाँ पे मर्द जो है उनमें थोड़ा पेशेंस लेवल कम है इस लिहाज से। तो मुझे लगता है कि मर्द हजरात को थोड़ा सा बस ध्यान देना चाहिए कि ये औरत घर का भी काम करती है, ऑफिस का भी काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, तो इस पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। मर्द हजरात को क्या है, बस आए, खाना रेडी है और खाया, सुबह ऑफिस, बस इनका यही रूटीन है। नो डाउट मर्द हजरात की भी यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्स, उनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम बात नहीं करते हैं, बट खासकर हम अभी औरतों के हवाले से बात कर रहे हैं, यहाँ पे फीमेल्स का प्रोग्राम है, तो ऑब्वियसली हम हाइप थोड़ा औरत को ही देंगे यहाँ पे। नो डाउट कि मर्द हजरात को भी बहुत ज्यादा जरूर
0: स्ट्रेस होता है।
1: बिल्कुल, तो औरत को भी बहुत एतमाद से, बहुत इत्मीनान से इस मर्द को समझाना चाहिए।
0: और मुझे लगता है उसके साथ साथ ऐसे ही हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको भी उसी एतमाद और इत्मीनान से एक खातून को वो वक्त देना चाहिए।
1: बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि अगर एक औरत को हल्का सा सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली की वजह से या अपने हस्बैंड की वजह से, फादर की वजह से, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शोबा है जिसमें वो जाना चाहती है वो नाकाम हो सकती है।
0: ज़रूरी नहीं कि हम शोबों में जाए काम करने के लिए। मुझे लगता है अगर हम अपने घर में भी हमें सपोर्ट मिले,
1: मेंटल पीस अपने घर को भी
0: आला से आला बनाएगी। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ बाहर वाले जो शोबे हैं उन उमूर पे काम करें, हम उन फील्ड्स में काम करें। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, अगर देखा जाए ना, औरत का जो घर है वो एक सल्तनत है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, उसमें फाइनेंस भी है, होम भी है, डिफेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन वाकई में अगर एक औरत को वो सारा सपोर्ट मिले एक अफराद खाना से, मैं नहीं कहूंगी कि खाली मर्द हजरात से, वाकई में उनका जो वो छोटा सा यूनिट है हमारे मुआशरे का, जो एक छोटा सा यूनिट एक घर है, वो उसको बेहतर से बेहतरीन बना सकती है, खुशहाल बना सकती है। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करना है, उसके लिए हमने बाहर ही जाना है। हम अपने घरों में भी अपने आप को प्रूव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, छोटा मोटा कोई भी काम कर सकते हैं।
0: एक औरत अगर अपने बच्चों को पुरएतमाद बनाए, एक कामयाब तरीन इंसान बनाए, उनको अच्छा इंसान बनाए, वो भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा शायस्ता, आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि प्रोग्राम का जो वक्त है इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन स्टूडियो की घड़ी हमें इशारा दे रही है कि हमने प्रोग्राम को ख़त्म करना है। तो चलते चलते आप सामिन कराम को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मेरा यही मैसेज रहेगा कि अगर एक औरत कुछ भी करना चाहती है, किसी भी शोबे में उसकी दिलचस्पी है, तो यहाँ पे उसके वालिद को, उसके भाई को वो एतमाद उसको देना चाहिए
0: कि वो कर सकती है।
1: बिल्कुल, उसका जो कॉन्फिडेंस है उसमें इजाफा करना चाहिए वो लोग, ताकि वो उस शोबे में अपनी कारकर्दगी दिखाए, और वो क्योंकि इस चीज़ से उसका मेंटल पीस भी बरकरार रहेगा। क्योंकि जब वो किसी शोबे में जाएगी, आजकल अगर वो किसी और लड़की को उसी शोबे में देखेगी और उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा कहीं ना कहीं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया शायद साहब प्रोग्राम में आए।
1: शुक्रिया आपका।
0: और वुमेन एम्पावर।

0: के हवाले से आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली।
1: शुक्रिया आपका।
0: उम्मीद
1: भी
0: है हमारी जो समिन किराम है, खसूसन जो हमारी यंग जनरेशन ख़वातीन हैं, आपकी इन बातों पे अमल ज़रूर करेंगी।
1: शुक्रिया।

0: मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries, founded on mutual trust, shared democratic values, respect for diversity and strong people-to-people ties. The Prime Minister said he is looking forward to holding discussions with the President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, to strengthen the enduring friendship between the two nations and deepen cooperation for the progress and prosperity of the people in the Indian Ocean region. During the visit, Prime Minister Modi will have the honour of becoming the first Indian Prime Minister to address the National Assembly of Seychelles. Meanwhile, Seychelles has backed India's bid for a permanent seat on the United Nations Security Council. Speaking ahead of Prime Minister Modi's arrival in the island nation, Seychelles Foreign Minister Barry Ford said the current global order and international institutions need reforms to reflect present-day realities. U.S. Secretary of State Marco Rubio has praised Prime Minister Narendra Modi's leadership, saying India has made significant economic progress and is playing a bigger role on the global stage. In an interview with a news agency at the White House, Mr. Rubio said the Trump administration viewed India as one of the United States' closest strategic partners. He said Prime Minister Modi has led a country that is making strong economic gains and becoming an increasingly influential global power.
3: Prime Minister Modi and what he's done. I mean, he

0: पर जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता।
1: मेरी मोहब्बत पाक मोहब्बत और जहां की खाक मोहब्बत,

जिंदगी क्या है? मोहब्बत का एक लम्हा है, कुछ वक्त का एक हम ये कहेंगे कि कारवां है जो चल पड़ता है किसी अनजान से मंजिल को पाने के लिए। वक्त बदलता रहता है और वक्त के साथ साथ कभी मंजिलें भी बदलती हैं, रास्ते बदलने पड़ते हैं इन मंजिलों तक जाने के लिए। यूँ हासिल ज़िंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, रहती है तो बस मोहब्बत।

इंसान ही इंसान की दवा है। अगर कोई दुख देता है तो वही कोई सुकून बन जाता है। कोई नफरत करता है तो कोई मोहब्बत देकर ये हिसाब भी बराबर कर जाता है। कोई रुलाता है तो वही कोई मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है। अगर कोई ठोकर लगा कर चला जाता है तो वही कोई न कोई इंसान मोहब्बत से सहारा भी बन जाता है। लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता है, ये सब होता ज़रूर है, लेकिन आहिस्ता।

जिंदगी कभी कभार रेगिस्तान की मानिंद हो जाती है, जिसमें हम ढूंढते हैं साए मोहब्बतों के, जो झुलसती जिंदगी को राहत दें।

0: फौजी भाइयों, यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
3: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
2: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन G&K।
0: फौजी भाइयों, आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। मोहब्बत इंसान का पैदाइशी हक है। कोई मजहब, कोई मिल्लत, कोई रहनुमा आपको नफरत नहीं सिखाता। इंसान की फितरत ही है मोहब्बत करना, और इंसान मोहब्बत के लिए ही पैदा हुआ है, और मोहब्बत ही से ये दुनिया चलती है।

कई बार एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर न किसी से शिकायत करता है और न किसी से कोई उम्मीद रखता है, पर मोहब्बत करना छोड़ दे ऐसा भी नहीं होता।

0: फौजी भाई अपना प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे आकाशवाणी श्रीनगर से। 1:50 हो रहे हैं, आइए आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी में खबरें समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोज़ा दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उन्होंने सेशल्स को बेशबहा समंदरी पड़ोसी मुल्क और भारत के महासागर विजन का एक अहम साथी करार दिया है। अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अपने कलीदी साथियों में से सबसे ज़्यादा करीबी समझता है, जो मुश्तरका अकदार और मफाद रखते हैं। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहिमी के वजीर अमित शाह ने गुजरात के 14 बड़े शहरों में इमदाद बाहिमी पर मबनी भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया है। तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का चेन्नई में 73 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारत के मौसमियात के महकमे ने अगले 2 दिन के दौरान जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में तेज से बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल के फीफा आलमी कप में मिस्र पहली बार नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। मिस्र और ईरान का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद सेशल्स के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अपने दौरे में जनाब मोदी सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। जनाब मोदी ने कहा है कि इस दौरे में वो सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करने वाले पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का शर्फ हासिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स में भारतीय बरादरी से भी बातचीत करेंगे, जिसकी वजह से भारत और सेशल्स के दरमियान खुसूसी दोस्ती परवान चढ़ी है और ये बरादरी दोनों मुल्कों के दरमियान एक पुल का काम अंजाम दे रही है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के दौरान सेशल्स की कौमी असेंबली से खिताब करेंगे और भारतीय बरादरी से बातचीत करेंगे। आज उनके प्रोग्राम में बोटेनिकल गार्डन्स में शजरकारी की तकरीब में शिरकत और सेशल्स साहिली मुहाफिज दस्ते के अड्डे का दौरा शामिल है। भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और अवामी रवाबित पर मबनी देरीना साझेदारी है। बहर हिंद के खित्ते में एक अहम बहरी हमसाया होने के नाते सेशल्स को भारत के महासागर विजन और आलमी खित्ते जुनूब के तई वाबस्तगी में खास

0: अहमियत हासिल है। यह दौरा भारत और सेशल्स के दरमियान मजबूत और देरपा दोस्ती के अज़्म का यादा करेगा और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मजीद उसत देने के मुश्तरक अज़्म को तकवियत फराहम करेगा। सुपर्णा साइकिक रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद उम्मार।
1: सेशल्स ने अक़्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सेशल्स आमद से कबल सेशल्स के वज़ीर ख़ारजा बेरी फोर ने कहा है कि मौजूदा आलमी निज़ाम और बैनुल अक़्वामी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि ये मौजूदा दौर के हक़ाइक़ का बेहतर अक्कासी कर सकें। उन्होंने कहा है कि भारत अपनी कसीर आबादी, बढ़ते हुए आलमी रसूख, अमन कायम करने की कोशिशों, बहरी सलामती और कसीर जहती सफारतकारी में अहम रोल की वजह से सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत का पूरा मुस्तहिक है। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत की ये कहते हुए तारीफ की है कि भारत ने खातिर ख़्वाह इक़्तिसादी तरक्की की है और वह आलमी सतह पर एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस में खबर एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया भारत को अमेरिका के करीब तरीन दफाई शराकत दारों में समझती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने एक ऐसे मुल्क की क़यादत की है जो इकतसादी तौर पर मजबूती के साथ तरक्की कर रहा है और लगातार एक मौसर आलमी ताकत बनता जा रहा है। रूबियो ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी करीबी हैं। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के लिए ये एक अहम बात है। उम्र दाखला और इमदाद बाहिमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर के महामंदिर में भारत टैक्सी सर्विस का आगाज किया। इमदाद बाहिमी पर मबनी अपनी नौइयत की ये पहली टैक्सी सर्विस है और इसे अगले दो साल के दौरान मुल्क भर के 500 शहरों और कस्बों तक तौसी दी जाएगी। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी इमदाद बाहिमी के शोबे में तब्दीली लाने की सिमत में एक अहम कदम की हैसियत रखता है। इस सर्विस की शुरुआत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यह सर्विस इस बात को यकीनी बनाएगी कि ड्राइवरों को आमदनी का एक बड़ा हिस्सा मिल सके और मुसाफिर मुनासिब खर्च पर महफूज सफर कर सकें।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: जनाब अमित शाह ने अमूल इमदाद बाहिमी तहरीक की कामयाबी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत टैक्सी भी इमदाद बाहिमी के इसी जज्बे के तहत काम करेगी और इज्तमाही मिल्कियत के तवस्सुत से आवाम को बाख्तियार बनाया जा सकेगा। जनाब अमित शाह ने इन दिनों जनाब अमित शाह इन दिनों गुजरात के 3 रोजा दौरे पर हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा है कि किसी भी जारहियत का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान अमेरिका की जानिब से ईरान के ठिकानों पर फौजी हमलों के चंद घंटे बाद सामने आया है। एक्स पर एक पोस्ट में जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और अमरीका ने भी इसकी मुकम्मल पासदारी की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुआहदे से मुतालिक किसी भी इख्तलाफ को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया तो इसका जवाब फौजी कार्रवाई से दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा है कि अमरीकी अफवाज ने ईरान के मिजाइल और ड्रोन जखीरा गाहों के अलावा साहिली रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक एक कार्गो जहाज पर हमला जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी था। उसने मजीद कहा कि मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज खित्ते में मौजूद रहेंगी। मारूफ तमिल फिल्म अदाकार और हिदायतकार के भाग्यराज का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल हो गया। वो 73 साल के थे। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ताहम डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके पास पसमांदगान में उनकी अहलिया पूर्णिमा भाग्यराज, एक बेटा, एक बेटी और पोते पोतियां शामिल हैं। भाग्यराज एक मुमताज फिल्म साज थे जो अपनी दिलचस्प कहानियों, मुनफरिद स्क्रीन प्ले और हाजिर जवाब मुकालमों की वजह से तमिल सिनेमा में एक खास मकाम रखते थे। उन्होंने कई कामयाब तमिल फिल्मों की हिदायतकारी की। उन्होंने मकबूल हिंदी फिल्म आखिरी रास्ता भी उसकी भी हिदायतकारी की थी। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय डीएमके के सरबराह

आतिफ असलम और चिन्मय श्रीपदा की आवाज़ों में आप नगमा समाप्त कर रहे थे। फिल्म का नाम फटा पोस्टर निकला हीरो। अगला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप तक पहुंचाएंगे, जब हैरी मेट सेजल फिल्म से।

0: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
1: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
0: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन J&K।
3: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 3 बज चुके हैं। अब पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद, आदाब फौजी भाइयों। दूसरी निशिस्त के प्रोग्राम के साथ हम हाजिर और आप सभी का करते हैं इस्तकबाल। फौजी भाइयों, आज आरडी बर्मन यानी राहुल देव बर्मन का यौमे पैदाइश है। आरडी बर्मन जो कि एक लीजेंडरी म्यूज़िक कंपोज़र, गुलोकार और अदाकार थे, जिन्होंने हिंदी सिनेमा पर न मिटने वाले नकूश छोड़े। उनकी मौसीकी ने नस्लों को मुतासिर किया और उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं, बल्कि यूं कहें कि राज करते हैं।

फौजी भाइयों, इस नशस्त में बात हो रही है मशहूर मारूफ लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, गुलकार और अदाकार आरडी बर्मन से मुतालिक। आरडी बर्मन

फौजी भाई इस वक्त अपना प्रोग्राम सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन से। फौजी भाइयों, हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं आर डी बर्मन से मुतालिक। आपको बता दें, बल्कि आपसे पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं कि फिल्म जगत के रॉकस्टार पंचम के नाम से मशहूर आर डी बर्मन को ये नाम किसने दिया? इसके इस सिलसिले में कई सारी कहानियां जो हैं लोग कहते हैं कि किन्होंने इनको ये नाम दिया, जानेंगे ज़रूर इस नगमे के उस पार।

0: अरे लड़के एक कदम पीछे।
1: अरे बैठ।
2: झूम के पीछे घूम और नक दे भाली। हाँ, हाँ, हाँ। अरे लोग बजाएंगे खुश होकर।

फौजी भाइयों, आपसे पूछा था हमने कि क्या आप जानते हैं कि फिल्म जगत के रॉक स्टार आर्य बर्मन, जिनको पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है, क्या आप जानते हैं कि उनको ये नाम कैसे मिला? चलिए हम बता देते हैं आपको कि हुआ यूं कि इसके मुतालिक तो वैसे बहुत सारी कहानियां जो हैं वो मशहूर हैं, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें कि उन्हें जब वो रोते थे तो लोगों का कहना था कि जब वो रोते हैं तो पंचम सुर की आवाज़ जो है सुनाई देती है, लिहाजा सब उन्हें पंचम कहने लगे। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि एक्टर अशोक कुमार ने जब पंचम को छोटी उम्र में रोते हुए सुना तो कहा कि ये पंचम सुर में रोते हैं, तब वो उन्हें पंचम कहने लगे।

जी फौजी भाइयों, इस निशिस्त में हम बात कर रहे हैं आर डी बर्मन की। आर डी बर्मन का जन्म आज ही के दिन यानी 27 जून सन 1939 को कोलकाता में हुआ। उनके वालिद साहब एस डी बर्मन, जो कि जाने माने फिल्मी संगीतकार थे, घर में फिल्मी माहौल की वजह से उनका भी रुझान जो है मौसीकी में जो है आ गया, और उन्होंने अपने इस मौसीकी की तालीम जो है अपने वालिद साहब यानी एस डी बर्मन से ही ली, और उन्होंने उस्ताद अली अकबर खान से सरोद वादन की भी तालीम जो है हासिल की।

0: फौजी भाइयों, प्रोग्राम अभी जारी है। यहाँ रुकते हैं एक कमर्शियल वक्ते के लिए।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
3: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
2: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन G&K।
0: फौजी भाई इस वक्त अपना प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से।

फौजी भाइयों, आपको बता दें कि आर डी बर्मन बचपन से ही बहुत अलग थे और बहुत काबिल भी थे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उन्होंने महज 9 साल की छोटी सी उम्र में अपनी पहली धुन ए मेरी टोपी पलट के आ बनाई, और बाद में उनके वालिद साहब सचिन देव बर्मन ने इसका इस्तेमाल साल 1956 में अपनी फिल्म फंटूश में किया। इसके अलावा उनकी बनाई हुई धुनें जो हैं सरजो तेरा चकराए भी गुरु दत्त की फिल्म प्यासा के लिए इस्तेमाल की गई।

फौजी भाइयों, एक मशहूर संगीतकार का बेटा होने के बावजूद भी आरडी बर्मन अपने वजूद को तलाशते रहे और आरडी बर्मन को लगभग हम ये बता दें कि 10 साल लगे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल उनको 10 साल तक करना पड़ा और फिर वो वक्त भी आया जिसका पंचमदा को कब से इंतज़ार था। साल 1966 में मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के सुपरहिट गाने आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा और हसीना जुल्फों वाली जैसी सदाबहार गानों के लिए के ज़रिए वो बतौर संगीतकार उन्होंने शहरत की बुलंदियों को छुआ। वो पहुँचे शहरत की बुलंदियों पे और वो इसके साथ साथ साल 1972 में पंचमदा को सिने करियर का बहुत ही एक ये साल जो है बहुत ही ख़ास पड़ाव साबित हुआ।

0: 5,000 रुपये होगी, जबकि मामूल के तहत इजरा किए जाने वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये होगी। फीस की नई शर्तों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन ने हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ महकमों में कई ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात कमीशन की वेबसाइट upsc.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 27 जून से 17 जुलाई तक दरख्वास्तें ऑनलाइन दे सकते हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत जारी तहकीकात के सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां 4 अजला के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर अमल में लाई गई, जिनमें श्रीनगर, गांधरबल, कुपवाड़ और अनंतनाग शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि ये छापे 2023 में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर पुलिस स्टेशन के मुश्तरक तफ्तीशी मरकज में दर्ज एक मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में मारे गए। मनशियात मुखालिफ बैन अक्वामी दिन के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमें नौजवान नस्ल को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए अपने अज़्म का इरादा करना होगा। दरियासना जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदोमद से जारी हैं। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक सामाजिक कारकुन मोहम्मद गुलजार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जो ये नौसर समाज में पैदा हुआ है ड्रग्स का, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। पुलिस इसमें बहुत कोशिश कर रही है, बहुत से घर बार बर्बाद हुए हैं, जिनके माँ बाप बहुत तंग आ चुके हैं और इसमें यहाँ तक नौबत आ गई कि बच्चों ने अपने माँ बाप को कत्ल करना शुरू कर दिया है पैसे की लालच से। माँ बाप से भी गुजारिश है सिर्फ उतने पैसे देना है अपने बच्चों को जितनी उनकी जरूरत होगी, जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहिए ताकि समाज हमारा जो है वो अच्छी तरह से रह सके, अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके और बच्चे जो है, जो नौजवान है, ये आज के गुल है, फूल है, ये फले फूले अच्छी तरह से अपने समाज की तरक्की में बहुत रोल इनका रहना चाहिए।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 28 जून को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 135वीं किस्त होगी। प्रोग्राम सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा और ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तला तो नशरियात की वजारत की YouTube चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद मन की बात का इलाकाई जबानों में तर्जमा भी पेश किया जाएगा। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीका की सालसी में एक फ्रेमवर्क मुहदा तय पा गया है जिसका मकसद दीर्घा अमन और सलामती हासिल करना है। इस मुजवजा मुहदे में जंगबंदी भी शामिल है जो इस शर्त पर होगी कि हिजबुल्ला तमाम हमले बंद करे और जनूबी लबनान से पीछे हट जाए। मार्को रूबियो ने खत्ते में इस्तेहकाम बहाल करने की तरफ ले जाने वाला पहला कदम बताया। इसी दौरान अमरीका ने ईरान पर कुछ हवाई हमले किए हैं और कहा है कि यह कार्रवाई आबनाई हरमज में एक दिन पहले एक मालबरदार जहाज पर किए गए ड्रोन हमले के रद्दअमल में की गई। अमरीका के मरकजी कमांड ने कहा है कि इसके फौजियों ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मुकामात को निशाना बनाया। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि ये पता लगाया जाएगा कि आया ईरान की जंग माहदे की खिलाफ वर्जी पर कोई नतज होंगे या नहीं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत टैक्सी के मुल्क गिर तौसी मनसूबे का ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क के ताउन पर मबनी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी को आइंदा 2 बरसों के दौरान भारत के 500 शहरों और कस्बों तक वसत दी जाएगी। भारत टैक्सी की बाजाबता शुरुआत के मौके पर अमित शाह ने कहा कि ये इकदाम ताउन के शोबे में एक इनकलाबी पेशरफ्त है और इस मॉडल के जरिए ड्राइवरों को अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा हासिल होगा जबकि

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पाड़ी प्रोग्राम कैन का मैं तुस्ता मेज़बान शबीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजिर हाँ और सारियों को अदब तज़ीम नाल अस्सलामु अलैकुम अर्ज करदा और उम्मीद है कि तुम सारी खैर खरीद नाल उसो। सामीन मेहनत है मुशक्कत जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और एक इंसानी माशियत का फैसला भी करता है। इंसान जिस वेले मेहनत मुशक्कत करता है तो वह जरूर कामयाबी हासिल कर कहता है। अज असी माइक्रो समाल और मीडियम एंटरप्राइजेज की गल करा तो हिंदुस्तानी माशियत की रीढ़ की हड्डी है। MSMEs GDP दे 3% थी ज़्यादा तो कुल बरामदात का तकरीबन 45% हैं। उस समाजी तो इक्तिसादी तरक्की को अगा बदेने और मुल्क भर में 11 करोड़ थी ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने। सालाना कारोबार बच्च प्लांट मशीनरी आलात और हुकूमत MSMEs की दर्जाबंदी की बुनियाद तक कर दी है। हर दर्जे के तहत उसका अहल होना जरूरी है। माइक्रो समाल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज की वजारत कई प्रमोशनल पॉलिसियां क्रेडिट गारंटी स्कीम टेक्नोलॉजी मरकजा और सर्टिफिकेशन प्रोग्रामा की निगरानी करती है। इस वास्ते उडियाम पोर्टल तक रजिस्ट्रेशन भी हासिल कर सकते हैं और सरकारी स्कीम का फायदा भी हासिल कर सकते हैं। तो सामीन गल्लां और कर सकते आओ सुनते हैं असी काबुल बुखारी की आवाज़ में एक गीत।

मातरम शकील फ़याज़ सबू कलाम पर देता सट मटमी दी कि शकील फ़याज़ सबू कलाम को यूँ सट पसंद आलास बेहतरीन है कसी फिना ज़बानी शायर हूँ कस फिना ज़बानी का लाजिक कोशिश तो हूँ और एक नौजवान हूँ कोशिश ही वैसी कि फिना ज़बान को ही मैं महफूज दहरून बजर एक हर नौजवानी वे चीज़ कोशिश भी जशन और बड़ा कराई हूँ मसला मस्क एक इंसान ज़रूरी निश्किसो एक बड़ो अहदे जे फे बड़ मुकाम जे इफेद सुस्तों में कमी खिदमत थी कोई नौजवान है कोई इंसान है तो मैं दिल कमी खिदमत थो ना ससट दिल जैस के मस्तोमी कई मई खिदमत थम और बेहतरीन मौका हूँ सस कोई भी तरीके से कौमी खिदमत थी बस मफ्तो नसल करबला जो वाकज बारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम को रसूल सल्लम बड़ नवासा सुल और हज़रत अली को सुल वसु बाल और हज़रत फातिमा बाल रसुल हज़रत फातिमा नबी सल्लम बुढ़े बड़ी मलाई और शाठ मलाई सली वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वसी सखावत वसु सबर वैसे कोई तरीका ही हसन अखलाक रसुल्ला मशहूर रसुल नेक सीरत नौजवान किसी कारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाऊँ कि इमाम हुसैन हसन को यहाँ विलोस्टी आखिर तुझ को जनता जी नौजवानों को यहाँ सरदार यासिन और अकी अंदाज में सचा कज लग जोन वजोन कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हसन अलैहिस्सलाम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझती नमाज है असल वैस फ़कीर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला वक्त एक तवील सजदा था तो सहाबी असल मसमा असल वे थे से नबल फिर नबल खोजन सजद जो आखिर को अट सजदा ला वे गबल तक सहाबी से जरूरत थो कि फ़कम मस कमज़ोर कोई बुटो सहाबी असल से जरूरत थे जो फ़कम कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नई शायद सजदे जी को इंतकाल बोलो अचाक भी सहाबी अटो खोफाल सस पत्न वो चुप भी फ़के ही हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाकू जो कोई हाँ सजदे जो हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खाता और अचाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से विनी कारी व सजदा तवील हो अचाक भी नसीन अला मोहब्बत इसलिए नोट इसलिए कोई अगर यजीद सीन अला जंग बोलो वे बोलो करबला को शहीद बहन हाँ हाँ इस्लामी कारी कसम कुर्बानी देना हाँ हाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हसन अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला विनी कुर्बानी विनी कोई अहले बैत हो कोई बस हकी कारी लड़ा जो कोशिश थी कि कोई सुनोना ना हो दीन हो चुप दुनिया थी फैलो जो निकाल और हक सीन लाट याद है वह एक दरस करबला कोई वाका हूँ बस सोट एक दरस दही हूँ तमाम मुसलमान हूँ तमाम इंसान और दुनिया थी कि इंसान हमेशा हक सी दे बज बेशक से सीन ला मुश्किल आती हैं मामला सलाग से जिंदगी पेश पे ख़त्म बहन कुर्बानी दी उन्हें पेशन लेकिन हक कोई हो अल्लाह ताला पसंद हो और अल्लाह ताला से हक हमेशा कोई हो दुनिया चीज सरफरिश छो रही बुलंद छो रही कोट गलत तसी इंसान साथ दे अल्लाह ताला कोई ना हो ससी को रसी कोट अल्लाह ताला इंसान पकड़ते ही हूँ बुटे बड़ी आसी हैं और हर एक से कोशिश भी दे रहे हैं कि वह इंसान हक ज भजन यजन और हकू भजन साथ दिन समी नदी बस नुपुर नामी बड़ग मुफ्त हो नदी मुतिक फणा कलामिक पर जाऊँ।

aş başa asa çık karab, meygo rayt huy la azab.

0: से मैंने भी आपसे बात कर रही थी। आज का शीना प्रोग्राम प्रोग्राम आपके लिए ये पेश कर रहे थे मोहम्मद यूनुस लोन। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन शाम के 5 बजे हैं। एक वक्फे के बाद सुनते हैं गोजरी प्रोग्राम।
1: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
2: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन J&K।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: कड़ी के तहत हमने अपना आर्काइव्स ते मुशायरा कड़ के थारा तक पहुँचाने को सिलसिले शुरू की हुए। महाराज जिन शोरा हजरात ने भी इन मुशायरों में शिरकत की है, जो कलाम है वो हमारे कुल आर्काइव्स में बिल्कुल सेफ है, हमने वो महफूज रखे हुए, तो उनको कलाम जो है वो थारा तक पहुँचा दिया। तो इस मुशायरा की निजामत व सदारत जी महमूद अदरीस शाद साहब और कर रहे हैं, तो अभी मुशायरों सुन लिया।
1: आज हम इतने एक मुशायरे को इनकाद कर रहे हैं और इस मुशायरा में शायर हजरात हिस्सो ले रहे हैं, उनका इसमें ग्रामी है मोहम्मद रफीक जख्मी, मुश्ताक खालिद, इकबाल नदीम, सराज सानी, फरीद अहमद परवाज, चौधरी ताजदीन ताज, बंदो खाकसार मोहम्मद इदरीस शाद। सब ते पहला हूँ मोहम्मद रफीक जख्मी साहब ना अर्ज करूँ कि वे अपनी कलाम सुनावे।
2: नज़्म का कुछ बंद थारी खिदमत में अर्ज़ है।
1: इरशाद।
2: अजब तमाशा डिठा तेरिया बारा मा,
1: वाह वाह
2: अजब तमाशा डिठा तेरिया बारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा,
1: वाह वाह वाह क्या बात।
2: शेरे की फिरत बरछी नाड़ का छंबर शूकेगा,
1: वाह वाह
2: फिरत बरछी नाड़ का छंबर शूकेगा, सोनी ठंडी वायत कठा फूकेगा, बुलबुल कुकू पौर भी आके कूकेगा, मेला लगेगा सुन मस्ती टारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा। असे गावे खूब करें मनमानी इत, असे गावे खूब करें मनमानी इत, नस्ता पजता पहुँचे लोग सैलानी इत, नाज करे कश्मीर की मस्त जवानी इत, बुढ़ा नचे मस्ती देख कवारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा।
1: दोबारा पढ़िए जो बंद।
2: असे गावे खूब करें मनमानी इत, नस्ता पजता पहुँचे लोग सैलानी इत, नाज करे कश्मीर की मस्त जवानी इत, बुड्ढा नचे मस्ती देख कवारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा। ते ताज साहब, पुछो दाछी गाम ते नागा बेरी ते, पुछो दाछी गाम ते नागा बेरी ते, हर एक नीला तला नीली टेरी ते, दुध का दरिया डुलने चार चफेरी ते, चखले कितनो साध मा जी तारा मा, फुला की बस्ती है इन कंडियारा मा। तो शेरे की सरगीना उन कोयल राग सुनावेगी,
1: सरगीना उन कोयल राग,
2: सरगीना उन कोयल राग सुनावेगी, हर एक डाली गीत वफा का गावेगी, आड़ पे होते तोपना छा अजमावेगी, ठंडी मिठी रसे देख अनारामा, फुला की बस्ती है इन कंडियारामा। तो सानी साहब, ले आवेगो सावन तोंद की नेरी फिर, ले आवेगो सावन तोंद की नेरी फिर, टारी चोन लगेगी तेरी मेरी फिर, टारी चोन लगेगी तेरी मेरी फिर, करनी है मौसम ने हेरा फेरी फिर, केनू जान पुआगी इत बीमारा मा, फुलना की बस्ती है इन कंडियारा मा। आखिरी शेर कि देश मेरा ते कुप अनेरा टाल के रख, देश मेरा ते कुप अनेरा टाल के रख, सारा जगमा दिया वफा का बाढ़ के रख,
1: वा, वा, वा, वा, वा,
2: दिल जख्मी को रब्बा खूब खंगाल के रख, असर हुए इन मेरी गिरिया जारामा, फुला की बस्ती है इन कंडियारामा। ते एक गजल का कुछ शेर कि दूर गया ना मोड़ खुदाया, दूर गया ना मोड़ खुदाया, दिल गुमियाए लोड़ खुदाया, ते मजलूमा की जान बचा ले शाद साहब, मजलूमा की जान बचा ले, बेतरसाना ओढ़ खुदाया, ते नफरत का जंगार न तोले, पार्टिया अंदरों कोड़ खुदाया, नफरत का जंगार न तोले, पार्टिया अंदरों कोड़ खुदाया, हिजर फिराक ते और विछोड़ो, एक एक तन न जोड़ खुदाया, आड़ा सुन ले मजबूरा का जालिम न चंजोड़ खुदाया, ते कड समुंदरू इंसाना ना इबलीसाना रोड खुदाया, ते चिर तोड़ी अख लाण नी देती, सोच की लम्मी दौड़ खुदाया, तेरे हथे लाज वफा की आज बचाया तोड़ खुदाया, ते मकतो कि मुड़ आयो और आस न जख्मी, तेरा दर पर छोड़ खुदाया, दूर गया ना मोड़ खुदाया, दिल गुमियाए लोड़ खुदाया।
1: ये था जनाब मोहम्मद रफीक जख्मी साहब, जनाब मुश्ताक खालिद साहब ना आज करूं कि वे अपनी कलाम सुनावे।
3: एक नज़म का कुछ बंद अर्ज़ है। नज़म है माँ, हर एक दर्द बंडावे माँ, किसरे सीने लावे माँ, हर एक दर्द बंडावे माँ, किसरे सीने लावे माँ, نکا روئے اڑی کرتا روتا پھر ہساوے ماں.

0: बहुत खूब
1: किस रह बच्चा टुरनो सीखे अंगली पकड़ चलावे माँ हाथ शफकत को राख के सिर पर हर दुख तू बचावे माँ पुल्ले जद कोई रास्ता उपरू पुल्ले जद कोई रास्ता उपरू सीधे रस्ते लावे माँ चढ़े जद कोई माँ के कदमे चढ़े जद कोई माँ के कदमे जन्नत माँ पचावे माँ बच्चा का आराम की खातर अपनी चोली डावे माँ जेड़ो कौम न छां दे है जेड़ो कौम न छां दे है इसो बूटो लावे माँ माँ बोली की खिदमत करता एक एक हर्फ सिखावे माँ माँ को रुतबो मुझ उच्चो खालद फर्शु अर्श पचावे माँ बच्चा जद यतीम होए ता आके याद रोआवे माँ हर एक दर्द बनावे माँ किसरे सीने लावे माँ। एक गजल का कुछ शेर अर्ज़े कुछ लखा नाल तुली गल कुछ मिट्टी पोखल रुली गल कुछ लखा नाल तुली गल कुछ मिट्टी पोखल रुली गल तेरी गल पत्थर पर लीक मेरी गल अणमुली गल जग की सारी याद थी तिन्ना मेरी क्यों भुली गल जद ते ओठे जंदरा लाया अखां बिचू डुली गल जद ते ओठे जंदरा लाया अखां बिचू डुली गल खालद सीनो लूसन होयो तेरी जद कपुली गल कुछ लखां नाल तुली गल कुछ मिट्टी पोखल रुली गल। एक गजल का कुछ और शेर अर्जे मकतो है कि नींद है अखें सो ना सकूं नींद है अखें सो ना सकूं अख डबलावे रो ना सकूं सुचो मोती आत्मा लेके सुचो मोती आत्मा लेके कंडी माऊ पो ना सकूं शीशो शीशो दिल बनायो शीशो शीशो दिल बनायो दाग हिजर का तो ना सकूं दर्द पलेट के कितना रखिया इश्क की मुशक लको ना सकूं तेरो एक बार होके खालद और किसे को हो ना सकूं नींद अखें सो ना सकूं अख डबला में रो ना सकूं।
2: ये था जनाब मुश्ताक खालिद ते इंतबाद हूँ अर्ज करूँ जनाब इकबाल नदीम सुना के वे अपनो कलाम सुना में इकबाल नदीम साहब
3: नज़्म
2: अर्शाद
3: ना कोई रिश्तो ना कोई नातो दिल की गल हुंके कह तो केसरे ठूं पानी चलतो किसना दिसे हुंके कह तो जिया लुकाई उआ खुदाई मोटी गर्दन चंगो पसाई जिया लुकाई उआ खुदाई मोटी गर्दन चंगो कसाई मुंह बड़ो ते गल भी मोटी उसकी सुन गए हुंके कह तो थानेदार है उसको यार जिसका गोजामा में दियार थानेदार है उसको यार जिसका गोजामा में दियार मुछ मरोड़ गए ठीरना पाड़े गरीब को मारो हुंके कह तो लगे अदालत करे जलालत उद जानो वह जहालत लगे अदालत करे जलालत उद जानो वह जहालत घना फेरा सट्या डेरा तेनी मन्नी हूं के कह तो लाई वकील नी लम्मी दलील उत भी गरीब है होयो जलील लाई वकील नी लम्मी दलील उत भी गरीब है होयो जलील काला कोट को बड़ो गोजो पार नहीं सकतो हूं के कह तो छोड़ मकर करुण सखर देख की तै जानो आखर छोड़ मकर करुण सखर देख की तै जानो आखर दूजा वस्ते जख तो रियो तू आप है नंगो हूं के कह तो कुछ तैड़ा नच तो रियो राजी सब ना रख तो रियो कुछ तैड़ा नच तो रियो राजी सब ना रख तो रियो असली साथी वो विसरायो अजय एकड़ो हूं के कह तो लड़ाई झगड़ा छोड़ के चलियो मुंह ना नदीम क्यों मोड़ के चलियो लड़ाई झगड़ा छोड़ के चलियो मुंह नदीम क्यों मोड़ के चलियो कान सुनी आखी उगड़ी जीव नी बोली हुंके कह तो ना कोई रिश्तो ना कोई ना तो दिल की गल हुंके कह तो केसरे ठूं पानी चलतो किसना दिसे हुंके कह तो अरिश किसे नी देखो नी फरिश्ते सब नी देखो है अरिश किसे नी देखो नी फरिश्ते सब नी देखो है अरिश पर रहन आला गो नजारो सब नी देखो है मोहब्बत जिसका दिल में है शफकत उस कुदरत की मोहब्बत जिसका दिल में है शफकत उस कुदरत की कदे ठोकर वो खातो नहीं करारो सब नहीं देखो है کریا آزاد کری فریاد محمد نے امت وسطے.

है इख्तलाफी है, किदे पकड़ गलाटी चंगी है या दुनिया रंग रंग अगलो बंदर से, या धरती नीली पीली है या बाड़ी रंग रंगीली है, मिठी कोड़ी मरचेली है आए अजकल बेवसीली है, लखवार या लाई टंगी है या दुनिया रंग रंग। हम दर्द कौमी लजपाल बसे, गन्नी कुछ खस्ता हाल बसे, कुछ गिरगट की मिसाल बसे, हीरा मोती जौहर लाल बसे, किदे असद बुगज ने डंगी है या दुनिया रंग रंग। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये ऐद कदीम तू चारे भाई ये, सब अगली मेहर मुकाई ये, अज छेड़ी नवी लड़ाई ये, मुल्क की इज्जत नंगी है या दुनिया रंग रंग। कुछ आबिद जाहिद कुछ जाहिल, हुनरमंद कासब कुछ काहिल, किदे छन छन छन के पायल, इत किस्म किस्म का स्टाइल, लख दुश्मन ते लख संगी है या दुनिया रंग रंग। त कुछ दिलों जबानों एक होवे, कुछ दुख दर्दांगी टेक होवे, कुछ इजर फराक को सेक होवे, कुछ हर फन मोदा नेक होवे, कई बार या निची खंगी है या दुनिया रंग रंग। कुछ दिलों जबानों एक होवे, कुछ दुख दर्दां की टेक होवे, कुछ इजर फराक को सेक होवे, कुछ हर फन मोदा नेक होवे, कई बार या निची खंगी है या दुनिया रंग रंग। अगलो बंद अर्ज है की कुछ साड़े ते कुछ सड़ता रे, कुछ चौके ते कुछ करता रे, कुछ उठे चावे कुछ चढ़ता रे, कुछ बिल्ले ते कुछ छड़ता रे, आए लख अदवार तू लंगी है या दुनिया रंग रंग। ते कुछ मोमन कुछ काफर बसे, कुछ ओछा कुछ साबर बसे, कुछ लिसा कुछ जाबर बसे, निका ते इकाबर बसे, कोई नक्शबंद है कोई भंगी है या दुनिया रंग रंग। इत कई किस्म का आतम में, किदे जशन ते किदे मातम में, बानी मौजद ते खातम में, जेड़ा गया ते उनकी जाता में, हुन थारे हाथ तरंगी है या दुनिया रंग रंग। किदे रोता देख के नसेगी, किदे हस्तांगे संग हसेगी, कुछ बख्शेगी कुछ खसेगी, बस अपने पैरों फसेगी, किदे सुरमो गिणो कंगी है या दुनिया रंग रंग। ते कुछ नेक ते कुछ बदमाश बसे, इत जाहिल ते कदर शनास बसे, कुछ मुर्दा ते जिंदी लाश बसे, हलीम ते कुछ अयास बसे, किदे ऐश मजा किदे तंगी है या दुनिया रंग रंग। चेला चमचा ते अमीर होवे, सोफी आगा फकीर होवे, कुछ उत्तम कुछ हकीर होवे, कई खुदा कई असीर होवे, कई तरह की इत दरंगी है या दुनिया रंग बरंगी। कई बार या छप्पी लुकी है, कई बार या डाली टुकी है, कई बार या हारी झुकी है, कई बार बिसाख में सुकी है, कई बार या तजी मंगी है या दुनिया रंग बरंगी है। गाफल दे शब बेदार बसे, कुछ मेहनती कुछ बेकार बसे, कई शरद कई बहार बसे, कई मरम कई तलवार बसे, पक्की गिरगिट सद टंगी है या दुनिया रंग रंग। ते आपे कैदी आजाद करे, आपे चाड़े बर्बाद करे, किदे किदे पक्की बुनियाद करे, किदे आड़ा ते फरियाद करे, किदे ताबिया किदे लफंगी है या दुनिया रंग रंग। जे दवाए जवाब सुनावेगा, गल जोरे असल छुपावेगा, अमल मेरे बराबर चावेगा, मोटो गल दाड़ी लड़कावेगा, सुथन गीटा पर टंगी है या दुनिया रंग। आला अदना अखीर बसे, सोफी मुरीद दे पीर बसे, कई रांझा दे कई हीर बसे, इत आतश आप ते शीर बसे, किदे अमन फसाद ते जंगी है या दुनिया रंग बरंगी है। अगलो बंदर दे किदे ढोल नकारा बजता रे, किदे शेर का ताड़ा गजता रे, किदे बजम नयारा सजता रे, किदे भुखा पाना रजता रे, किदे शाख एहसास की अंगी है या दुनिया रंग बरंगी। इत फितना ते फसाद उठे, इत नवा नवा नुकाद उठे, कुछ मसला बेबुनियाद उठे, लूला लंगड़ा फराद उठे, कार कारमा खाना जंगी है या दुनिया रंग रंग। कुछ मरता रे कुछ दबता रे, कुछ बढ़ता रे कुछ चबता रे, कुछ जमे गुमे कुछ लबता रे, कुछ सूरज तके शबता रे, कई बार नठी ते अड़ंगी है या दुनिया रंग रंग। पसवाल इत कच्चा पक्का है, कुछ रिश्ता मसबत सक्का है, इत किस्म किस्म का कड़का है, कुछ बेसबात का टका है,
ਲਜਬਾਲ ਕਿਦੇ ਯਾ ਤੰਗੀ ਹੈ ਯਾ

0: दुनिया रंग बिरंगी है। ते किदे उच्चा उच्चा पहाड़ दिसे, किदे डूंगा नला दे नार दिसे, किदे सारा मैदान ते कार दिसे, किदे नीली सिलते तार दिसे, सीधी मोतबर या कांगी है या दुनिया रंग बिरंगी है। ते शाद साहब गौर फरमाई के तन अकल ते सोच गहराई गए, तन मौला तेरी खुदाई गए। तन अकल ते होश गहराई गए, तन मौला तेरी खुदाई गए, हर जा हर लम्हा रसाई गए, मरहबा जहन दानाई गए, कुदरत ने रंगू रंगी है या दुनिया रंग बरंगी है। ते आखिरी बंद शहर है थारी खिदमत, आखिरी बंद अर्ज कि यो गजल सिराज एक खोखो है, यो गजल सिराज एक खोखो है, दुनिया रंगीन जो तोखो है, रल मिल गए बसनो ओखो है, हर लहजा तर्ज अनोखो है, जिस पास है मुड़चो संगी है या दुनिया रंग बरंगी है, के साइलस दान नरंगी है, कोई नजरियो के बटंगी है, कदे मंदी है या चंगी है या दुनिया रंग बरंगी है। शुक्रिया।
1: ये था जनाब सिराजुद्दीन सानी साहब, अजीम साहब को शेर है। वे रेत की टेरी थी तीलां का बंगला था, वे रेत की टेरी थी तीलां का बंगला था, ते ठीक कियो पुल के सब नकश मिटा छुड़िया। इसते कि हूं असर साहब को एक शेर पेश करूं तो उसके बाद दूजा शहर न बुला रही हूं। असर साहब को शेर है कि रत का आथरू सोज जिगर को दिल का दाग कनेरा, रत का आथरू सोज जिगर को दिल का दाग कनेरा, इतना दिया बाल के रखू आऊ रंजन मेरा, तारा तुखे चन कुमायो डाली ते फुल सहके, तारा तुखे चन कुमायो डाली ते फुल सहके, बोल रे पंछी इन मालांगा किंगा गया सवेरा। ते ओनू दावत सुखम दी जनाब फरीद अहमद परवाज साहब ना, जनाब फरीद अहमद परवाज साहब
2: एक गजल आ रही
3: है। इरशाद इरशाद
4: खुजा वीत गे सवाद नी बहार
1: मां,
4: खजा वीत गे सवाद नी बहार
1: मां,
4: दिल ही गयो है भुज वजूद नी करार मां, दिल ही गयो है भुज वजूद नी करार मां, साजिश एक में देख ली तेरे की नजर की रज,

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: तो शेराज गयो कि मैरम यार न संगी कोए,
0: मैरम यार न संगी कोए,
1: मैरम यार न संगी कोए, बैरी अपना सारा देख।
0: वाह वाह वाह।
1: तो शेराज गयो ताज साहब के लगा है तकदीर के हथू,
0: वाह
1: लगा है तकदीर के हथू, कितना दूर उलारा देख।
0: वाह वाह।
1: तो शेराज के रात दिहाड़ी दिल न चीरे, रात दिहाड़ी दिल न चीरे, यादा का है आरा देख। तो शेर है कि कूंज विछड़ के अपने डारू, कूंज विछड़ के अपने डारू, मिलनी कद दोबारा देख। तो शेर है कि मौत बद जुदाई जालम, शेर के मौत बद जुदाई जालम, फिर मिलनगा चारा देख, नजर मिली नजारा देख, दिल का पारा पारा देख। एक गजल का चंद शेर है कि कद आवे गो यार न कहिए, कद आवे को यार न कहिए, बेलो आ गम खुआर न कहिए, गमा ने जिंदड़ी केरी,
0: गमा ने जिंदड़ी केरी,
1: गमा ने जिंदड़ी केरी, मेरा उस गम खुआर न कहिए। तो शेर है कि तक तक रास्ता नैन मुकाया,
0: तक तक रास्ता नैन,
1: तक तक रास्ता नैन मुकाया, लम्मी इंतजार न कहिए, ते छोड़ दे रोसो हूं बे दोसो। खालिद साहब
0: छोड़ दे
1: रोसो हूँ बे दोसो, रुठी भी सरकार न कहिए, छोड़ दे रोसो हूँ बे दोसो, रुठी भी सरकार न कहिए। तो शेर है कि चौंस गया फुल आस मेरी का, चौंस गया फुल आस मेरी का, वसलां की बदलार न कहिए। तो मक्तो आज कियो के ऐसो खुशियां की फुल खेली, ऐसो खुशियां की फुल खेली, लेती आवे बार न कहिए, कद आवे गो यार न कहिए, बेलो आ दिलदार न कहिए। हुण इस मुशायरा का आखिरी शायर जिड़ा किसी तहरफ का मुताज नहीं, जनाब चौधरी ताज दीन ताज साहब न अर्ज करूं, इन्हें अपनो कलाम सुना में। चौधरी ताज दीन ताज साहब
2: पेश है पहला एक गजल, आ तू दुनिया सारी ले जा, इश्क की एक बीमारी दे जा, उसको तरती पैर नहीं लग दो, जेड़ो इस पर आंख उगाड़ा है, अलिया जम के आज फिर लड़िए, अगली पिछली सारी पढ़िए, मरना हुई है आज न मरिए, जीत के आइए कुर्सी चढ़िए, कालो अंगो ऊपर मड़िए, फिर ऐवान के अंदर बढ़िए, सिंह अड़ा के एक दूजा पर कूड़ा का दुमूसा जड़िए, तेरो दादो है थो जंगी, जिसने कोर्ट कचहरी डंगी, जब फिर कूजा बीच खलाड़ा है, जीत मंगी ना बिल्लू हाड़ा है, अलिया जम के आज फिर लड़िए, अगली पिछली सारी पड़ी।
1: दिल मंदिर मसीता की बस्ती, दिल मंदिर मसीता की बस्ती, ये सचियां ते सुचियां रीतां की बस्ती, दिल मंदिर मसीता की बस्ती, ये सचियां ते सुचियां रीतां की बस्ती, कदे टूट गयो ते फिर मुड़ नी जुड़ से, कदे टूट गयो ते फिर मुड़ नी जुड़ से, ये नाजक जई एक शीशा की बस्ती। ये था जनाब चौधरी ताजुद्दीन ताज साहब, इसी के नाल आज को मुशायरो अपना एक नाम न पहुंचे, तो इस मुशायरा में जो शायर हजरात इसको ले रहे हैं, उनका नाम फिर थारे सामने अर्ज कर छूं, जनाब मोहम्मद रफीक जख्मी, जनाब मुश्ताक खालिद, इकबाल नदीम, सिराजुद्दीन सानी, फरीद अहमद परवाज, चौधरी ताजुद्दीन ताज, बंदो खाकसार मोहम्मद इदरीस शाद।
3: इसके नाल ही मारा प्रोग्राम कोविल मुख्य थारा ने फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तो नहीं दियो इजाजत, अच्छा जी, रब रखो।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समीन शाम के 5:50 होने वाले हैं। अब गोजरी में खबरें सुनते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वो सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोर ने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। इनमें पीएमईजीपी 2.0 पोर्टल, समाधान 2.0 पोर्टल, पीएमएस पोर्टल, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट 2.0 पोर्टल, एमएसएमई टेस्टिंग पोर्टल और एमएसएमई आइडिया हैकाथॉन 6.0 शामिल हैं। केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 89,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू और फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण ने पहला स्थान हासिल किया। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा स्थगित कर दी गई है। राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी मिली थी। परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वे अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नामकरण किया गया है। देविका सिहाग, किताम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

0: तक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, भारत सदियों से तमाम अकायद की हम आहंगी का मरकज रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। 11 मुहर्रम पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। भद्रवाह में सड़क हादसा, 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर फिर एक बार पीडीपी का हमला। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हा?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे?
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर, चैट बॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
6: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
7: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
8: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
9: नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
10: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
9: अच्छा भाभी,
10: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
9: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
11: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो यह सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिंस कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज इथी रोजान। मगर वन छ अत हाल JK सेहत ऐप, यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थवान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दुश्वनी मज दस्तियाब। ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैट बॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन हिज अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी, बेचे अत सत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अख साध शहरी छो, JK सेहत छ सारे सत सिंपल, सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
1: मोहब्बत वही।
0: शर्मिला, आकाशवाणी श्रीनगर से।

0: मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन की जानिब से भारत में 48 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह मुल्क की मजबूत मईशत पर आलमी एतमाद का वाज़ेह सबूत है और इससे नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म और अमेजोन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी जैसी के दरमियान नई दिल्ली में होने वाली मुलाकात के दौरान कंपनी ने ऐलान किया कि वो 2026 से यानी साल रवां से लेकर 2030 के दरमियान भारत में मजमूई तौर पर 48 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म मौसूफ ने कहा कि यह सरमायाकारी न सिर्फ भारत की तेजी से तरक्की करती हुई मईशत पर आलमी एतमाद की अक्कास है बल्कि इससे टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और रोजगार के शोबों में भी नुमाया पेशरफ्त होगी। समय जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत एक ऐसी कदीम तहजीब का अमीन है जिसकी बुनियाद बाहमी एहतराम, मजहबी रवादारी और बकाए बाहमी पर कायम है, जहां मुख्तलिफ मजाहब और सकाफतों को हमेशा फरोग मिला और दुनिया को अमन, मोहब्बत और हम आहंगी का दर्स दिया गया। आज SKICC में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL और इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम मुनाकिदा बैनुल मजाहब मकालमे से खिताब करते हुए एलजी मौसूफ ने कहा कि दुनिया इस हकीकत को तस्लीम कर चुकी है कि सनातन धर्म, जो दुनिया का कदीम तरीन जिंदा मजहब है, ने कभी भी खुद को दूसरों पर मुसल्लत नहीं किया बल्कि हमेशा तनवु, बर्दाश्त और बकाए बाहमी को फरोग दिया। उन्होंने कहा कि कदीम भारत ने ऐसा माहौल फराहम किया जहां ईसाइयत, इस्लाम, यहूदियत और जरतुष्त मजहब समेत मुख्तलिफ मजहब को आजादी के साथ फलने फूलने का मौका मिला। तकरीब में साबिक सदर रियासत और मरकजी वजीर डॉ करण सिंह, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नीलोफर खान, इंटरफेथ हार्मनी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर डॉ ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के डायरेक्टर डॉ मोहम्मद शम्स इकबाल, दारोशिको सेंट्रल श्रीनगर की बानी डायरेक्टर डॉ ज्योत्सना सिंह, SSP श्रीनगर डॉ जीवी संदीप चक्रवर्ती, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू और दीगर कई शख्सियात मौजूद थीं। एक रिपोर्ट के साथ इमरान नायकू।
1: शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में उर्दू, कश्मीरियत और मुश्तरका सकाफती रिवायात के उनवान से एक अहम बैनल मजाहिब मकालमा मुनाकिद हुआ जिसमें मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमाओं, दानिश्वरों, माहिरीन तालीम, अदीबों, समाजी कारकुनों, सरकारी अफसरान और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद बैनल मजाहिब हम आहंगी को फरोग देना, उर्दू जबान के तहफ्फुज व तरवीज, कश्मीर की सूफी व ऋषि रिवायात को उजागर करना और मुश्तरका तहजीबी विरसे को नई नस्ल तक मुंतकिल करना था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि साबिक सदर रियासत, साबिक गवर्नर और साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर करण सिंह ने बतौर मेहमान एजाज शिरकत की। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसी कदीम तहजीब है जिसकी बुनियाद बाहमी एहतराम, बकाए बाहमी और मजहबी रवादारी पर कायम है। उन्होंने कहा कि दुनिया के कदीम तरीन जिंदा मजाहिब सनातन धर्म ने कभी अपने अकायद किसी पर मुसल्लत नहीं किए बल्कि हमेशा तनु और बकाए बाहमी को अपनाया। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया मजहब, जबान और नस्ल की बुनियाद पर तकसीम और अदम बर्दाश्त का शिकार है, ऐसे वक्त में सनातन धर्म और हिंदुस्तानी फलसफा पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई फराहम कर सकता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक ऐसा नजरिया है जो पूरी दुनिया को एक खानदान तस्वुर करता है और नई नस्ल की जिम्मेदारी है कि वो अमन, एहतराम, रवादारी और बकाए बहमी के इस पैगाम को आगे बढ़ाए। मौसूफ एलजी ने कहा कि हिंदुस्तान के ऋषियों ने हजारों साल पहले ऐलान किया था कि सच्चाई किसी एक रास्ते तक महदूद नहीं बल्कि इस तक पहुंचने के लिए बेशुमार रास्ते हैं, इसीलिए हिंदुस्तान ने हमेशा तनु को तकसीम नहीं बल्कि एक नियामत समझा। उन्हें कहा कि यही नजरिया जम्मू कश्मीर, जो हिंदुस्तान का ताज है, में भी सदियों से कश्मीरियत की सूरत में जिंदा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कश्मीरियत दरअसल भारतीयता ही का मुजहिर है जो तमाम मजाहिब, सकाफतों और रिवायात के एहतराम की अलामत है। उन्होंने कहा कि जब 12वें और 13वें सदी में सूफी बुजुर्ग और इस्लामी उलमा हिंदुस्तान आए तो उन्हें यहाँ मोहब्बत, रूहानियत, मसावात और इंसानी दोस्ती पर मबनी तहजीब मिली। उन्होंने कहा कि सूफिया किराम ने वेद, उपनिषद, बुद्ध मत और जैन मत की तालीमात से इस्तेफादा किया जबकि संस्कृत के मुतअद्दिद इल्मी ज़खायर का अरबी में तर्जुमा भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी को अपना मजहब छोड़ने का नहीं कहा बल्कि हमेशा ही यही पैगाम दिया कि अपने मजहब और अपनी रिवायात के साथ आएं और मोहब्बत से रहें, यही हिंदुस्तान की असल शनाख्त और रूहानी अजमत है। سابق صدر ریاست اور سابق

0: एक महकमे ने मुतबादल ट्रैक रूट प्लान मुस्तर किया गया था।
1: मगम में 11 मुहर्रम का जुलूस निकाला गया जो अभी जारी है और रात 9 बजे अपनी मंजिल मकसूद आस्थाने आलिया मगम पहुंचेगा। यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी ने आज खानपुरा खाग में मुनक्किदा जुलूस में शिरकत की और इस मौके पर इमाम अली मकाम को अपना खिराज पेश किया। आज भद्रवाह में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 4 दीगर जख्मी हुए। इत्तिलात के मुताबिक यह हादसा भद्रवाह के गुलडांडा रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में जान बहक होने वाले अफराद की शनाख्त 65 साल इमामुद्दीन साकिना अखनूर और जैतून बीबी के तौर पर हुई है। हादसे में जख्मी होने वाले 4 अफराद को जीएमसी डोडा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसी दौरान आज गुलमर्ग के सुमली वाली ढोक इलाके में आशा चौकी के नजदीक एक बारूदी शेल अचानक फट जाने के नतीजे में चंदूसा बारामुल्ला का बाशिंदा जुबैर अहमद बिजाड़ वलद रफीक बिजाड़ लुकमे अजल बन गया। खानियान श्रीनगर के तबरदार मोहल्ला इलाके में आज सुबह पेश आने वाले आतिशदगी के एक वाकये में 2 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, ताहम फायर सर्विसेज की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
6: हाय, नमस्ते, मैं हूँ खुशी, आपकी टीबी साथी। पूछिए जो पूछना है।
7: टीबी के सिम्टम्स क्या होते हैं?
6: बताती हूँ।
7: ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है?
6: ये भी बताती हूँ।
7: और मेडिसिन लेना भूल जाऊँ तो?
6: रिमाइंड भी करवाती हूँ।
8: अब टीबी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, सपोर्ट और केयर सब कुछ आपके स्मार्टफोन में टीबी मुक्त भारत ऐप के साथ। यहाँ मिलेगी टीबी से जुड़ी हर जानकारी, नजदीकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर्स की लोकेशन, ट्रीटमेंट ट्रैकिंग और मेडिसिन रिमाइंडर्स और एक्सपर्ट गाइडेंस भी 24/7 बिल्कुल फ्री और कॉन्फिडेंशियल। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए टीबी मुक्त भारत ऐप।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: ज्यादा जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर कॉल करें या अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ट्यूबर क्लोसेस ऑफिसर डोडा, किस्तवाड़ एंड रामबन।
12: समीन मोहतरम, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज रात 9 बजे हमारा मकबूल आम प्रोग्राम पेश होगा हम सफर। मौजू है मसनून दुआएं और उनके माना। समीन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम हम सफर के रूह रवां हैं हजरत मौलाना फैयाज अहमद जरू साहब दामत बरकातहुम, और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपरा। सुनना ना भूलें प्रोग्राम हम

0: सफर आज रात 9 बजे ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर भी ना आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय राज्य मरकजी हुकूमत ने उन 6 फौजियों के नाम बाजाबता मंजर आम पे लाए जिन्होंने पिछले साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान की। इन फौजियों का ताल्लुक मुख्तलिफ रेजिमेंट से है और इनके नाम है सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश कुमार, अग्निवीर मूद

0: वजीर अजम नरेंद्र मोदी 3 रोजा सरकारी दौरे पर आज सेशल्स पहुंच गए, जहां सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमनी कॉबिनी वजरा और दीगर अहम शख्सियात ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर अजम सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत कर रहे हैं और उन्हें सेशल्स की कौमी असम्बली से खिताब करने का एजाज भी हासिल होगा। अपनी रवानगी से पहले जारी कर एक बयान में वजीर अजम ने कहा कि सेशल्स भारत का एक अहम बहरी हमसाया और विजन महासागर नीज आलमी खताए जनूब के लिए भारत के अजम में एक शराकतदार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत एक कदीम तहजीब की हैसियत रखता है, जिसकी बुनियाद बाहमी एहतराम पर है और जहां मुख्तलिफ मजाहिब न सिर्फ साथ रहते हैं बल्कि परवान भी चढ़ते हैं और दुनिया को अम का पैगाम देते हैं। एसकेसीसी श्रीनगर में मुनक़दा बैन अल मजाहिब मकालमे की एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया तस्लीम करती है कि हिंदू मत ने कभी खुद को दूसरों पर मुसल्लत नहीं किया बल्कि हमेशा तनव और बकाए बाहमी को कबूल किया। मनोज सिन्हा ने कहा कि कदीम भारत ने एक ऐसा माहौल फराहम किया जहां इस्लाम, ईसाइत, यहूदियत और दीगर मजाहिब को फलने फूलने की आजादी मिली।
1: पूरे देश में जो कश्मीर की धरती है, ये सर्वधर्म संभाव और आपसी भाईचारे का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण इसने प्रस्तुत किया है। सभी धर्मों का सम्मान, कश्मीर की समृद्ध परंपरा रही है, कश्मीरियत की भावना, ऋषि सूफी परंपरा, साझी विरासत, सभी धार्मिक स्थलों और त्योहारों का आदर सम्मान, ये जम्मू कश्मीर की असली पहचान है। वो माता वैष्णो देवी हो, बाबा अमरनाथ हो, दरगाह हजरत बल हो, गुरुद्वारा छठी पातशाही हो, सेंट ल्यूक चर्च हो, सभी समुदायों के लिए गहरी श्रद्धा और सम्मान के ये केंद्र हैं।
0: इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज सिविल सोसाइटी, तिजारती लीडरों और मजहबी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग करके उनके साथ आने वाली सालाना यात्रा से जुड़े उमूर पर तबादला ख्याल किया। मनोज सिन्हा ने समाज के सभी तबकों से अपील की कि वो इस पवित्र यात्रा के ऐसे इनाकात के लिए अपना रोल अदा करें जो कि समाजी हम आहंगी की एक सच्ची अलामत है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा हमें अपनी बेलोस खिदमत, सकाफत, हमदर्दी और मेहमान नवाजी को दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका फराहम करती है। ज़राअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मौजूदा सरकार जमीनी सतह पर तरक्याती अमल को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। वो आज बारामूला के रफ़ियाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई का इफ्तिताह किया। वजीर मौसूफ ने लडूरा में 11 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत वाले कुछ राबता प्रोजेक्टों का भी आगाज किया। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर को D2C इनोवेशन का कौमी मरकज बनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने आज D2CIA के पहले कौमी कॉन्क्लेव 2026 में शिरकत की, जहां D2C इंडस्ट्री एसोसिएशन के जम्मू कश्मीर चैप्टर का बाज़ाबता आगाज किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर D2CIA चैप्टर का आगाज मईशत पर मबनी एक अहम संग मेल की निशानदेही करता है। सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि कल 28 जून को जम्मू कश्मीर में पल्स पोलियो मुहिम के तहत 5 साल तक की उम्र के करीब 19 लाख बच्चों को पोलियो मुखालिफ कतरे पिलाए जाएंगे। वजीर मौसूफा ने इस सिलसिले में सभी मुतल्लिका वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों को नजदीकी पोलियो मराकज तक पहुंचाकर 2 बूंद जिंदगी के जरूर पिलाएं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पड़रू से बात करते हुए सकीना इतू ने कहा
2: 19 लाख बच्चों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। मेरी गुजारिश है आपके जरिए कि माँ बाप इसके लिए टाइम निकाले, अपने बच्चों को लाइए, जो भी नजदीकी हेल्थ सेंटर होगा वहाँ पे वो पल्स पोलियो ड्रॉप्स ले, ताकि उसकी जिंदगी जो है वो सेफ रहे, वो बीमारियों से बचे और आगे उसको कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े।
0: इस दौरान वजीर मौसूफा ने दमहाल हांजीपुरा असेंबली हलके के दूर उफ्तादा सेल खनन में एक अवामी दरबार मुनाकद करके वहां मुकामी लोगों के मसाइल मुतालबात की समाअत की। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की ज़ेर क़यादत सरकार सभी इलाकों की मसावी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। कानून साज असेंबली के स्पीकर अब्दुलरहम राठर ने आज दरीगाम बड़गाम में शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की जियारत पर हाजिरी देकर वहां जारी और मुजवजा तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जियारत शरीफ को जज्ब नजर बनाने के लिए 40 लाख रुपए पहले ही मंजूर किए गए हैं। बाद में उन्होंने नाला शाली गंगा का भी दौरा किया, जहां मुकामी लोगों ने नाले पर पुल की तामीर करने की अपनी देरी न मांग वजीर के सामने रखी। उन्होंने बांडरपुरा और क्रमशोर गांव में लोगों से बातचीत की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने श्री अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनाकाद और यात्रियों की सलामती को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को आपसी तालमेल बनाया।

0: रखने की हिदायत दी है। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से किए जा रहे सलामती बंदोबस्त का जायजा लेते हुए उन्होंने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो चौकस रहकर किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशेवराना तौर तैयार रहें। मीटिंग में जम्मू जोन में किए गए सिक्योरिटी इंतजाम का भी अहाता किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सलामती एजेंसियों के आला अफसरान ने शिरकत की। सरकार ने पासपोर्ट की इजराई के लिए दरख्वास्त की फीस में इजाफा कर दिया है। वजारत खारजा की एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि तत्काल स्कीम के तहत पासपोर्ट की इजराई की फीस अब 5,000 रुपये होगी, जबकि मामूल के तहत इजरा किए जाने वाले पासपोर्ट की फीस 3,500 रुपये होगी। फीस की नई शर्हों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आज गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून के तहत जारी तहकीकात के सिलसिले में वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां 4 अजला के 5 मुख्तलिफ मुकामात पर अमल में लाई गई, जिनमें श्रीनगर, गांधरबल, कुपवाड़ा और अनंतनाग शामिल हैं। हुकाम ने बताया कि ये छापे 2023 में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर पुलिस स्टेशन के मुश्तरका तफ्तीशी मरकज में दर्ज एक मुकदमे की तहकीकात के सिलसिले में मारे गए। इधर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक फरारशुदा स्मगलर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। एजेंसी की तरफ से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि बिलाल शबीर आवान नाम का यह स्मगलर करना कुपवाड़ा के दिलदार इलाके का रहने वाला है और उसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। एजेंसी ने कहा कि उस मामले में नार्को टेरर के एक मामले में छानबीन जारी रखे हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर कश्मीर एडवोकेट शौकत अहमद मीर ने कहा है कि वजीर अला उमर अब्दुल्ला की कयादत वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार महदूद आईनी और इंतजामी इख्तियारात के बावजूद गुज़श्ता 1.5 बरस से शफाफ और अवाम दोस्त हुक्मरानी के साथ लोगों की खिदमत में मसरूफ है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि धांधलियों के रिकॉर्ड मात करने वाले आज हुकूमत पर उंगली उठा रहे हैं। प्रदेश बीजेपी सदर सत शर्मा ने पार्टी के तंजीमी उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल के हमरा जम्मू में तंजीमी उमूर से वाबस्ता एक मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा वजीर आजम की हुक्मरानी के मॉडल को कतार में खड़े आखिरी फर्द तक पहुंचाने में लगी हुई है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज शुपियां जिले में कीड़े मार अद्वियात बेचने वाले डीलरों का मुआयना करके कई दुकानों से 235 किलो गैर मयारी अद्वियात को जब्त कर दिया। इस अचानक मुआयने का मकसद जिले के किसानों के मफाद में उनके लिए बेहतर क्वालिटी की कीमियात की फराहमी को यकीनी बनाना है। डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि उनका महकमा गैर मयारी अद्वियात और खादों की खरीदो फरोख्त के खिलाफ कमर बस्ता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट में जज जस्टिस मोक्षा खजूरिया काजमी ने आज बारामुल्ला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जस्टिस जवाद अहमद की मौजूदगी में जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला में खवातीन वकला के लिए एक बार रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिले के SSP और दीगर सिविल व पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। वादी के एक मारूफ मौलिज मुसन्निफ और समाजी कारकुन डॉक्टर निसार अहमद भट्ट त्राली की 50वीं तस्नीफ आईनए मनशियात की रस्म रोनुमाई आज त्राल में मुनाकदा एक तकरीब के दौरान अंजाम दी गई, जिसकी सदारत साबिक ब्यूरोक्रेट मेराजुद्दीन ककरू ने की। तकरीब में साबिक जज जस्टिस बशीर अहमद किरमानी मेहमान खसूसी थे, जबकि दीगर इज्जत शख्सियात में दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर शबीर मुजाहिद भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। मनशियात के खिलाफ LG का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिद्दत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदाम और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से एक समाजी कारकुन मोहम्मद गुलजार ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: जो ये नौसर समाज में पैदा हुआ है ड्रग्स का, इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए।

0: पुलिस इसमें बहुत कोशिश कर रही है। बहुत से घर बार बर्बाद हुए हैं, जिनके माँ बाप बहुत तंग आ चुके हैं, और इसमें यहाँ तक नौबत आ गई कि बच्चों ने अपने माँ बाप को कत्ल करना शुरू कर दिया है पैसे की लालच से। माँ बाप से भी गुजारिश है, सिर्फ उतने पैसे देना है अपने बच्चों को जितनी उनकी जरूरत होगी, जरूरत से ज्यादा नहीं देना चाहिए, ताकि समाज हमारा जो है वो अच्छी तरह से रह सके, अच्छी तरह से जिंदगी गुजार सके, और बच्चे जो है, जो नौजवान है, ये आज के गुल है, फूल है, ये फले फूले।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग और पुलवामा जिला में अलग अलग कार्रवाईयों के दौरान दो मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नशा और मसनूआत की कुछ मकदार बरामद कर ली है। पुलिस ने शुपया और सोपोर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत खुदरो भंग की एक बड़ी मकदार को भी तबाह कर दिया, जबकि अनंतनाग में जवाबित की पासदारी न करने वाली एक दवा दुकान को भी सील कर दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने शुपया में 5 जुआरियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से दाव पर लगाई गई कुछ रकम भी जब्त कर ली। दरियासना अनंतनाग पुलिस ने आने वाली यात्रा से कबल आज तैयारियों की एक कड़ी के तौर एक फर्जी मशक का इनेकाद किया। मरकजी पब्लिक सर्विस कमीशन ने हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ महकमों में कई ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात कमीशन की वेबसाइट upsc.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। ख्वाहिशमंद अफराद 27 जून से 17 जुलाई तक दरख्वास्तें ऑनलाइन दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल यानी 28 जून को अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुख्तलिफ मौजूआत पर इजहार ख्याल करेंगे। ये इस प्रोग्राम की 135वीं किस्त होगी। प्रोग्राम सुबह 11 बजे से आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, और ये AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इतलात नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनल्स पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद मन की बात का इलाकाई जबानों में तर्जुमा भी पेश किया जाएगा। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि इसराइल और लबनान के दरमियान अमरीका की सालसी में एक फ्रेमवर्क माहिदा तय पा गया है, जिसका मकसद देरपा अमन और सलामती हासिल करना है। इस मुजवजा माहिदे में जंगबंदी भी शामिल है, जो इस शर्त पर होगी कि हिजबुल्ला तमाम हमले बंद करे और जनूबी लबनान से पीछे हट जाए। मार्को रूबियो ने खत्ते में इस्तेहकाम बहाल करने की तरफ ले जाने वाला पहला कदम बताया। इसी दौरान अमेरिका ने ईरान पर कुछ हवाई हमले किए हैं और कहा है कि यह कार्रवाई आबनाए हरमज में एक दिन पहले एक मालबरदार जहाज पर किए गए ड्रोन हमले के रद्द अमल में की गई। अमेरिका के मरकजी कमांड ने कहा है कि इसके फौजियों ने ईरान में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने के मकामात को निशाना बनाया। ये हमले उस वक्त हुए हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से बात करते हुए कहा था कि यह पता लगाया जाए कि आया ईरान की जंग मुहिदे के खिलाफ वर्जी पर कोई नतज होंगे या नहीं। खबरों के अख्ताम से पहले मौसम पर एक नज़र। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.3 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलई आफ्ताब सुबह 5:22 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: समईन आदाब, आज का तबसरा लिए मैं शबीरुज़्ज़मां। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में मुनक्कदा नार्को कोऑर्डिनेशन का 10वां इजलास भारत में मुनशियात के बैन अक्वामी और दाखिली नेटवर्क के खिलाफ जारी मुहिम में एक इंतहाई अहम तारीखी मोड़ की हैसियत रखता है। साल 2026 से 2029 के लिए विजन डॉक्यूमेंट ऑन ड्रग कंट्रोल का इजरा और एक ही दिन में 6000 करोड़ रुपए मालियत की मुनशियात को तलब करने की मुहिम इस बात का वाजह सबूत है कि हुकूमत अब रिवायती और अलग थलग कार्रवाईयों से हटकर एक फैसला कुन, मरबूत और नेटवर्क पर मबनी जंग की तरफ बढ़ चुकी है। वजीर दाखिला का ये दो टूक बयान के अगले 3 साल ये तय करेंगे कि नशा हमें हराएगा या हम नशे को हराएंगे, इस चैलेंज की संगीनी और फौरी नुईयत को जाहिर करता है, क्योंकि ये मसला अब महज अमन अमान या पब्लिक हेल्थ का मामला नहीं रहा, बल्कि बराह रास्त मुल्क की अंदरूनी सलामती, माशी इस्तेहकाम और नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल से जुड़ गया है। इस पूरे कौमी रोड मैप और हिकमत अमली में जम्मू कश्मीर की जियोग्राफियाई, सियासी और तस्वीराती हैसियत को मरकजी अहमियत हासिल है। यही वजह है कि नई दिल्ली में बैठकर जम्मू में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए जोनल ऑफिस का ई इफ्तिताह करना महज एक इंतजामी फैसला

प्रकाश चौहान, आपने हमें पोस्ट कार्ड भेजा है सादुल शहर से। आदर्श नगर मलोट पंजाब, सिराज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरव शर्मा, शायना शर्मा और मैंडी शर्मा। अशोक वर्मा ने मेल भेजा है जिला खरगोन सनावद एमपी से। आपके साथ हैं अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप ने मेल भेजा है। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र, सुशीला, अनिकेत और अंकिता। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ, अर्चना ताई, हीरामन शिंडे, प्रणय और प्रतिभा। जसवाड़ी मध्य प्रदेश से दुर्गेश, वंदना, दिव्यांश, सूरज कुमार और डक्से ने मेल भेजा है। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोरा, प्रकाश अरोरा, चंदन अरोरा और अंकुश अरोरा। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत। और नवशारा से जावेद अहमद, जमीला, इजहान, लारेब, मोहम्मद रफीक भट्ट और मोहम्मद अशरफ भट्ट ने पोस्ट कार्ड भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज़ में नगमा। फिल्म का नाम है रूप तेरा मस्ताना।

प्रोग्राम के नाम अगली फरमाइश आई है पटेल नगर मलोट पंजाब से। आप हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, बेबी आरजू जजोरिया और आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त। आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है अजीबस शुक्रिया। इसी गीत को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवासी, अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर और राजेंद्र कटारे। बाटापारा से सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी ने मेल भेजा है। बापू कॉलोनी खंडवासी शालिया डावर, बेबी जिक्रा और आयशा। जिला धार धर्मपुरी से मूसा खत्री, ईशा खत्री और जाकिर खत्री। दतरंगी से मेल आया है भगवत वर्मा की जानिब से। आपके साथ हैं शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। जेल रोड जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर, खंडवा से संदीप कौर और दुर्गा कौर। वीरागाम राजकोट से रुचि गुप्ता और ट्विंकल और एक और नाम है उमा। सहारनपुर से सुरेश डोम, देवशंकर डोम, सोनाली डोम और आशा डोमिन ने मेल भेजा है। सुनिए अपनी पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा, फिल्म का नाम है अजीबस शुक्रिया।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और वादी की आवाज की आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। सामिन, ये मेल हमें मौसूल हुआ है इंदिरा चौक दिल्ली से। आप हैं अजीम वकार, माहिरा अजीम, नाजिमा अजीम और नगमा अजीम। खुशी खर्चे ने पोस्ट कार्ड भेजा है रामनगर रोड शांति नगर इंदौर से। आपके साथ हैं ब्राउनी खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना, परी खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। इंदिरा विहार।

सामिन, ये मेल हमें मौसूल हुआ है समस्तीपुर बिहार से। आप हैं मीरा सिंह और ज्योति सिंह। कोवात रोहतास बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह ने मेल भेजा है। बनियारी सोनावारी से मोहम्मद अशरफ डार।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
2: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन J&K।
4: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, रात के 8:30 होने वाले हैं। शोभा खबर का तैयार करदा प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर सुनते हैं।
5: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर, मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
6: जिलानामा का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले से मुतल्लिक बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ अख्तर और आबिदा अख्तर। सभी माहौलियात की तब्दीली और इसके बर्फबारी और बारिशों पर पड़ने वाले असरात ने हमारे ज़िरात के शोबे को काफ़ी हद तक मुतासर किया है। ताहम इसके बावजूद वादी के मुख्तलिफ अजला में कुछ ऐसी रिवायती फसलें काश्त हो रही हैं जिनकी न सिर्फ बाजार में तलब बहुत ज़्यादा है बल्कि अगर इनको हमारी ज़री सकाफत कहा जाए तो बेजा न होगा। इन्हीं फसलों में सुर्ख चावल या रेड राइस भी है और अब वस्ती कश्मीर के बड़गाम ज़िले में इन सुर्ख चावलों की भी काश्त होती है। इसके अलावा जिले में HADP के तहत सब्जियों की बड़े पैमाने पर भी काश्त होती है। हमारे बड़गाम के नुमाइंदे शौकत अहमद शाह ने जिले के मजमुई जरी मंजरनामे के ताल्लुक से जब सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर चाडूरा मोहम्मद मुजफ्फर मीर से इस्तफसार किया तो उन्होंने तफसीलात कुछ इन अल्फाज में दी।
7: बड़गाम चूंकि एक वसी जिला है जो कि लगभग 5201 फीट अल्टीट्यूड पे वाक़ है, जहाँ पे हमारे मेन करेवाज हैं, जहाँ पे हम इंटीग्रेटेड फार्म के लिए बहुत अच्छा है। हॉर्टिकल्चर के रूप से आप देखेंगे तो बहुत सारे बागात यहाँ पे मौजूद हैं और एग्रीकल्चर तो आपको पता ही है कि जो हमारे जो निचले इलाके हैं वहाँ पे पैड़ी की बड़ी काश्त हो रही है। वेजिटेबल में हमारा जो बुगाम है ये तो माना जाता है एरिया, उसके बाद नारकरा है बड़गाम में, नारबल का सुजेठ वगैरह एरिया, यहाँ पे वेजिटेबल क्रॉपिंग बड़ी हो रही है। मेज के बारे में आपको पता ही, चाडूरा के जो अपर हिल्स हैं जहाँ से हम बखरपुरा की बात करें, आरिजाल की बात करें, खान साहब की बात करें या खा की बात करें तो मक्की की बड़ी काश्तकारी हो रही है।
8: तो जो आपने सब्जियों की बात की, आपने कहा कि सब्जियों की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है, तो कौन कौन सी सब्जियां यहाँ पे उगाई जाती है और क्या इसमें बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ावा हो रहा है सब्जियों की उगाने में की खातिर?
7: चूंकि मैं इस वक्त चाडूरा सब डिविजन को देखता हूँ, चाडूरा में मेरी पोस्टिंग है, यहाँ पे जो बुगाम है या हमारा जो यहाँ पे इसके आस पास

0: सला के वास्त हो रहा है, चाडू रहा है, तो यहाँ पे वेजिटेबल वसी काश्त इनकी हो रही है, जैसे फूलगोभी है, बंद गोभी है, कड़म साग है, या पालक है, या जो हमारे दूसरी गाजर वगैरह सभी चीजों की, खासकर जो हमारे जो एग्जॉटिक क्रॉप्स हैं उनकी भी यहाँ पे काश्तकारी हो रही है, जिसमें टमाटर है, वेल पेपर की भी काश्त हो रही है, जो कि आजकल हमारे होटलियर चूंकि सिटी के नजदीक है हमारा इलाका, तो वहाँ पे इसकी बड़ी चलती है। चूंकि सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे पहले तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर जो एक मजमूई स्कीम है, ये तो सभी लोगों के मन में आजकल, चाहे वो जमींदार है या जमींदारी से बाहर भी, उसको भी पता है, क्योंकि ऑनलाइन ही पे ये स्कीम है जिसमें 29 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर के पास कुछ प्रोजेक्ट हैं, मैक्सिमम पोर्शन हमारे पास ही है, बाकी जो अलाइड सेक्टर्स है, हमारा हॉर्टिकल्चर है, वेटनरी है, शीप है या फिशरीज है, उनके पास भी कुछ प्रोजेक्ट है। तो हमारे एग्रीकल्चर में इसमें जैसे सीड मल्टीप्लिकेशन चेन का प्रोग्राम है, पहला प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट इसमें कल्टीवेशन ऑफ निश क्रॉप्स, जो हमारे वरासत जो हमारे बीज थे, जैसे मुश्क बुज्जी थी, या हमारे ये जो रेड राइस है, या जन गुलजा गिस वन, वो हमारे पास है, उनको काश्त करनी, या हमारा जो रेड चिली, कश्मीरी लाल मिर्च, जो मशहूर है थ्रू आउट इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, तो उनकी काश्त के लिए लोगों को मावना दी जाती है इन कामों में। हमारे यहाँ जो चाडूरा की मैं बात करूँ, हमारा रेड राइस यहाँ सुरसार एरिया में इस प्रोजेक्ट के तहत हम रेड राइस करते हैं। पिछले साल हमने यहाँ पे 3 हेक्टेयर में ये किया था, और इस साल हम इसको बढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये 10 हेक्टेयर तक हो जाए। अगर आप रेड राइस की बात करें तो पहले तो हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन इसमें बिल्कुल उसी चावल की, क्योंकि जो हमारा एरिया है सुरसियार का, इसमें ठंडे पानी और ठंडी हवाओं की ज्यादा जरूरत होती है, वो इसके बिल्कुल मुवाफिक है वहाँ पे। खासकर बात जब करेंगे कि इसके सेहत में जो इस वक्त जो डायबिटीज वगैरह है, जो हमारी हड्डियों वगैरह की ये परेशानी है, इसके लिए सारा बहुत ही अच्छा है, और इसमें जो फैट परसेंटेज बहुत कम है, प्रोटीन इसमें ठीक ठाक है।
1: तो आने वाले वक्त में क्या आप मजीद एरिया को फैलाएंगे?
0: बिल्कुल, जितना हमारा फिजिबल एरिया है, हम कोशिश करते हैं कि हम इस रेड राइस के तहत इस एरिया को लाएं। पिछले साल हमने कुछ सक्सेस स्टोरियां भी बनाए हैं, शायद आपने देखी होगी, वहाँ पे लोग बहुत ही इस मामले में खुश हैं कि वो इसकी काश्त कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा भी इसमें ठीक ठाक है। हमारी एलोकेशन पिछले साल HADP में 2,37,00,000 के करीब हमारी थी, तो जो कि हमारा 100% हो गया।
1: तो बताइए, HADP हुई एक स्कीम, तो दूसरी जो मरकजी मामले वाली स्कीमें हैं कौन कौन सी है?
0: JKSIP की जो स्कीम है, JKSIP में हमारे पास हमने पॉली हाउसेस बनाए, और हमारे पास 200 कनाल के टारगेट थे वेजिटेबल एक्सपेंशन के लिए, जो हमने किए 100%, उसमें हमारे 13,50,000 की मावनत मिली थी, जो कि हमने 100% किया, फार्मर तक पहुंचाया। इन दोनों स्कीमों में हमारा कोई अमल दखल ये नहीं कि हम बेनिफिशरी को सिलेक्ट करें, क्योंकि इसमें बेनिफिशरी सिलेक्शन हो जाती है ऑनलाइन सिलेक्शन पे, उसमें बिल्कुल सीरियल के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन कौन फार्मर, फिर हम उनकी फिजिबिलिटी देखते हैं, हाँ जी ये कर सकता है नहीं कर सकता है, उसी तरह से।
1: सॉइल हेल्थ कार्ड हमारी एक स्कीम है, तो किस तरह से ये जमीन की सेहत को बरकरार रखने में हमारी मदद करती है?
0: मरकज ने सेहत के हवाले से देखा कि हम किस तरह कर सकते, तो उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जिसमें बाजाबत टारगेट्स मिलते हैं, पिछले साल हमें 1,259 फार्मर्स के फार्मर्स पे जाके हमने उनको सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए, जिसमें से 270 हमने जो नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जो कि हमारा यहाँ पे नागाम जोन में चल रहा है, उसमें वहाँ पे उतने कार्ड हमने इशू किए।
1: तो रावा माली साल के दौरान क्या टारगेट है आपका, क्या अभी तक एलोकेशन हुई है, तो आप क्या स्टार्ट किया है आपने वो खर्च?
0: फिलहाल टेंटेटिवली हमें HADP में, जो हमारे चीफ सर ने परसों हमें एक मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा कि जो पिछले साल का ही टारगेट है, फिलहाल आप उस पे काम कर दे, क्योंकि फिजिकली हमारे पास अभी फिजिकल टारगेट नहीं आए, तो अलबत्ता जो वहाँ पे मैसेज है हमारे डायरेक्टरेट से या हमारे सेक्रेटरेट से, तो फिलहाल पिछले साल के टारगेट हम इंशाल्लाह इस साल भी।
1: एक और स्कीम है हमारी PM किसान निधि, कितने रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं हमारे, उनके आपको लगता है उनकी कुछ मावनत हो रही है इस स्कीम से?
0: जैसे कि आपने कुछ सक्सेस स्टोरी देखी होंगी, बिल्कुल ये फार्मर को मावनत करता है। हमारे यहाँ चाडोरा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 20,005 फार्मर्स रजिस्टर हैं, जिनमें से इस वक्त जो एक्टिव फार्मर्स हैं, इस वक्त हमारे जो एक्टिव है वो 18,799 फार्मर्स हैं, जो कि बिल्कुल हमसे ये बेनिफिट ले रहे हैं।
1: तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन होती है पीएम किसान निधि?
0: पीएम किसान का बिल्कुल गाइडलाइन वहीं पे है, जहाँ पे वो सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और हमारे यहाँ जो CSS सेंटर्स हैं या हमारे ऑफिस पे जाके हमने बिल्कुल अपने एम्प्लॉयज को रखा है कि वो इनको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें यही है कि 2019 से पहले उनका इंतकाल होना चाहे या उनके अपने जमीन होनी चाहे, एक फैमिली को ये मिलता है, फैमिली में कम से कम एक मियां बीवी और उनका एक बच्चा, ये फैमिली मानी जाती है, इसमें उनको मिलता है। हमारा आला कशावर्दी जो

0: हम मैकेनाइजेशन की रोबर से जो हम इनमें मशीनरी देते हैं ये प्रोजेक्ट 9 में आता है हमें, उसमें भी चूंकि ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन में बिल्कुल एक क्यू बनता है किसने कौन से एम्प्लीमेंट के लिए अप्लाई किया है, उसको हम वो करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर टारगेट आए, हमें ट्रैक्टर 10 देने हैं, हमारे पास फिजिकल टारगेट 10 आया, हम उसी लिस्ट में से 10 उठाते हैं। हाँ, इनमें से कोई फिर मना करता है कि मुझे आज पोजिशन नहीं है, फिर हम अगले को उठा देते हैं। और इसी साल एंड तक इसमें पहले हमें 25% आता है, फिर 25%, फिर 50%, तो हम इसमें बिल्कुल कोई ना इंसाफी नहीं। अगर 10 को हमने दे दिया ना, 10 में से जो पहले बिल आएगा हम उसको पेमेंट करते हैं, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे पेमेंट करना, जो पहले एस्टेब्लिश करेगा यूनिट उसको हम डाल देते हैं। ऑनलाइन पोर्टल से तो बिल्कुल भी शफाफियत, और खासकर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज हो गई, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे कोई पोर्टल नहीं था, बहुत शिकायतें हो रही थी, उसमें मुलाजिम बेचारे को भी परेशानी उठानी पड़ी, और आजकल हम बिल्कुल आजाद हैं, आराम से काम कर सकते हैं, फार्मर्स को कोई परेशानी नहीं। हमारे जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है, जैसे कि पोर्ट ड्रॉप मोर क्रॉप, उसमें ज्यादा पानी की जो सिंचाई के मुवाफिक लोगों को वहां पे बेनिफिट दिया जाता है, जैसे कहीं पे वाटर हार्वेस्टिंग टैंक खोदते हैं या ट्यूबवेल दे देते हैं, या हम स्प्रिंकलर है ड्रिप इरीगेशन उस बारे में उनको दे देते हैं। एक मिड स्कीम है जिसमें हम वेजिटेबल ग्रोइंग के बारे में फार्मर्स को छोटे छोटे, अगर कोई बड़ा हाईटेक नहीं बना सकता है, कोई बड़ा पॉली हाउस नहीं बना, उसको छोटे ट्यूबुलर उसमें दे देते हैं, उसको 10,000 तक हम मावनत कर लेते हैं। उसमें पढ़े लिखे नौजवानों के लिए हमारी यही मैसेज है कि वो हमारे जो जोन्स हैं वहां पे हमारे एओ साहिबान बैठे हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स बैठे, एक्सटेंशन असिस्टेंट बैठे हैं, उनके साथ कंटेक्ट कीजिए, उनसे मिलिए, उनके लिए बहुत सारी स्कीम है जिससे वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना रोजगार भी कमा सकते हैं। खासकर जिसके पास जमीन है, मुझे लगता है कि उसको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं एज ऑन डेट, ऐसी स्कीमें हमारी भारत सरकार ने यहाँ लाई है।
1: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
2: शुक्रिया तजमल। सामईन, महकमा एग्रीकल्चर कश्मीर ने पिछले चंद बरसों के दौरान वादी के ज़राअत के शोबे को तरक्की देने के ताल्लुक से कई तरह के इख्तराई इकदाम किए। HADP और दीगर स्कीमों के तवसुत से महकमे ने जहां किसानों को आला मैयार के बीज फराहम किए, वहीं आलात कशावर्सी से लेकर खादें और माहिराना मशवरे भी काश्तकारों को वक्त वक्त पर फराहम किए जाते हैं। हमारे नुमाइंदे शौकत शाह ने बड़गाम जिले के कुछ ऐसे नौजवानों से बात की जिन्होंने HADP और दीगर स्कीमों से मुस्तफीद होकर न सिर्फ ज़राअत के जदीद तौर तरीके अपनाए हैं बल्कि अपनी आमदनी में भी खातिरख्वाह इजाफा किया है। इन नौजवानों ने इन फलाही स्कीमों की अमलावरी के ताल्लुक से अपने तासुरात यूं बयां किए।
3: जाड़ोरा एरिया से मेरा ताल्लुक है, मैं एक किसान हूं, तो हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे किसान इस्तेफादा करते भी हैं और कर भी सकते हैं कि अगर उनके पास पूरी जानकारी उन स्कीमों के हवाले से दी जाए तो बहुत हद तक किसान उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। मगर अभी हमारे खदशात भी बहुत है, अगरचे होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है या PM किसान सम्मान निधि स्कीम है या किसान क्रेडिट कार्ड है या सॉयल टेस्टिंग हो रही है, मगर बहुत सारे किसानों को अभी तक इन स्कीमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। वक्त के साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने अपडेट किया है, उसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन आई है, अब हाइब्रिड सीड्स प्रोवाइड की जाती है या किसानों को जो साइंटिफिक फार्मिंग सिखाई जाती है किस तरह से आपको फार्मिंग करनी है ताकि उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है मगर वो महदूद दायरों में। मेरा ताल्लुक खुद एक किसान घराने से है, हम सब्जियों की काश्त करते हैं, हमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल करते हैं, उससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, उससे हमारा प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आई है। मगर बदकिस्मती की बात ये है कि एक तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम और दूसरा ये कि किसानों को अगर ये क्रॉप इंश्योरेंस मिलता तो हम मशहूर रहते।
4: मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है, मैं बड़गाम से हूँ। तो महकमा एग्रीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है उन्होंने किसानों के लिए मुहैया रखा है, जिससे सब्जी में बहुत सा इनकलाब आया है। जो भी स्कीम आती है डिपार्टमेंट की तरफ से वो किसानों की बहबूदी के लिए होता है। लोगों को चाहिए कि वो डिपार्टमेंट की हर एक बात को मिनवान अमला और उनकी तरफ रुजू करे, चाहे कोई भी फायदा हो डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई भी स्कीम हो उसका भरपूर फायदा उठाए। और डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो लोगों को इसमें कोई भी स्कीम हो इसकी जानकारी और लोगों को बेनिफिट पहुंचाने में उनको भी एक अहम रोल रहता है, उनको उनमें सपोर्ट करना चाहिए।
2: और अब पेश है प्रोग्राम का इदारिया, पेश कर रही हैं आबिदा अख्तर।
5: शुक्रिया जाजा। सेमिनार से एक दो दहाइयां कबल वादी में मुख्तलिफ वजूहत

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की

0: जुदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटानिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे दो कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान आईएनएस इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 570वीं

0: जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि कैंपेगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि कैंपेगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साय जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन ना करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम ना बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में

0: अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमरीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय रात के 9 बज चुके हैं। पेश है सुपांसर प्रोग्राम हम सफर। आज के प्रोग्राम का मौजू है मसनून दुआएं और उनके माना। مقرر ہیں حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب، پیشکش سلیم اعجاز قپرا۔
2: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر۔ یہ پروگرام چھ تہتام واتناوان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغ سندر بالا، چھتبل سری نگر، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سری نگر۔

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौम आज़ादी की तकरीबात में मेहमान एजाजी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेस, दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्याल का इजहार करेंगे। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द-बुर्द से मुतालिक मामले के बाद अखलाकी बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल मुकाबलों में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 3 रोजा दौरे पर आज दोपहर विक्टोरिया पहुंचे हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशेल्स के सदर की जानिब से गर्मजोशी से खैर मकदम किए जाने की सताइश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सेशेल्स बहरे हिंद में एक अहम बहरी शराकत दार और एक करीबी दोस्त है। जनाब मोदी ने कहा कि वो एक सूदमंद दौरे के मुंतजर हैं, जिसका मकसद भारत सेशेल्स देरीना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना और दोनों मुल्कों के अवाम

0: था और 25-26 का बजट था। एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: वज़ीरे आज़म के म्यूजियम और लाइब्रेरी PMML में आज अनजहानी वज़ीरे आज़म PV नरसिम्हा राव के 105वें यौम पैदाइश के मौके पर उनकी हयात और विरासत के तई वक्फ एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस नुमाइश का इफ्तिताह PMML की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदरनशी नृपेंद्र मिश्रा ने किया और प्रधानमंत्री संग्रहालय में लगी इस नुमाइश को देखने वालों के लिए खोल दिया। इस नुमाइश में ऐसी नायाब तस्वीर, सरकारी दस्तावेजात, तकारीर, खतो मुरासले और आर्काइव से मुतालिक साजो सामान रखा गया है, जिससे अवामी जिंदगी में नरसिम्हा राव के काबिल कद्र सफर का इल्म होता है। वजारत दिफा ने आज कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी पोस्ट्स गर्दिश कर रही हैं जिनकी रूह से वजीर दिफा राजनाथ सिंह

0: शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई वो 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, और इसके झटके जो है दिल्ली एनसीआर चंडीगढ़ श्रीनगर हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, ज़ैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर मतला अब्र आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। US ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर 1 खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौमे आजादी की तकरीबात में मेहमान आजादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
3: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
2: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल इतवार 28 जून 2026।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन G&K।
5: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात के 9:30 हुए हैं। पेशे प्रोग्राम पेशरफ्त। आज के मेहमान हैं मुतहरा आबिदा वही देव, क्लाइमेट कंसल्टेंट। आज के प्रोग्राम का मौजू है क्लाइमेट चेंजेस एंड इफेक्ट्स ऑन कश्मीर। प्रोग्राम के मेज़बान हैं इरफान अमीन मलिक।

0: पहले प्रोग्राम में बुलाने का, ये देखिए कि इट इज़ रियल, क्लाइमेट चेंज इज रियल नाउ, ये इशू नहीं रहा अब, ये इट हैज़ अराइव्ड, ये हमारे पास है। आप देखिए अब ये गवर्नेंस इमरजेंसी बन गई है, ये अब वो नहीं है कि होता रहा है, वो हो रहा है वहाँ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट हैज़ ऑलरेडी अराइव्ड। तो उसमें जो जब तक हम अपनी गवर्नेंस फिक्स नहीं करेंगे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल इट। आप देखिए आपके स्नो पैक कम हो रहे हैं, आपके स्प्रिंग्स खुश्क हो रहे हैं, वाटर सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इट हैज़ ऑलरेडी हैपन्ड। तो उसमें हमको अलार्म होने की ज़रूरत है, हमको ये वार्निंग है, दिस इज़ ए वार्निंग, हिमालयाज की वार्निंग है ये, तो हमको वी हैव नीड टू फिक्स इट। एंड आई फील आफ्टर सो मेनी ईयर्स, इतने साल, 40 साल गुजारने के बाद इस मौजू पर और इस एरिया में, कि ये अब गवर्नेंस इशू है, इसको गवर्नेंस ही फिक्स कर सकता है।
1: और अगर हम फूड की बात करें, आपको लग रहा है जैसे आप बोल रहे हैं गवर्नेंस का एक असर है, ओब्वियसली उस पे तो काम होगा ही होगा, गवर्नेंस एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, लेकिन जो फूड हमारा जो है, जैसे हम पैड़ी की अगर हम बात करें, हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स की अगर हम बात करें, फिर हम पानी की बात करें, जैसे आप ड्राई स्प्रिंग्स की बात कर रहे थे, तो कितना हिट हो रहा है और कितना हिट आप देख रहे हैं इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स?
0: बहुत हिट हो गया ऑलरेडी हो गया। आप देखिए ना, ग्लेशियर्स आपके रिट्रीट हो रहे हैं,
1: अच्छा,
0: थ्रू आउट द वैली ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, स्नो पैक एट हिस्टोरिक लो है, कभी इतना कम नहीं हुआ, लास्ट विंटर जो है कोई स्नो नहीं हुआ। क्लाउड बर्स्ट अब रिप्लेस करते हैं प्रिडिक्टेबल रेन को, मतलब इसका है क्लाउड बर्स्ट अब हो रहे हैं, रेन जब हमको ये था कि रेन आज आ जाएगी, ये बारिश का मौसम है, अब तो ख़त्म हो गया, अब तो है ही नहीं वो, अब क्लाउड बस्ट एकदम आ जाता है। अब देखिए लाइटनिंग कितनी होती है, शाम हो जाती है, हमारे देखिए हमारा मौसम कितना बदल गया, कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया, शाम को कितनी आंधी होती है, ये कश्मीर में देखा ही नहीं था आंधी, इतनी आंधी और इतनी हाई स्पीड से, ये देखा ही नहीं था। दिस हैज हैपन्ड इन माई लाइफ टाइम, इट हैज हैपन्ड, आई हैव नोन इट ऑल। मैंने स्प्रिंग्स पे, अनंतनाग स्प्रिंग्स पे इन अर्ली 90s काम किया था, वो एक पेपर भी पब्लिश किया था, अनंतनाग सल्फर स्प्रिंग्स पे, सल्फर स्प्रिंग्स है ना अनंतनाग में, तो मैंने उस पर काम किया था, उन दिनों मैं अपना रिसर्च कर रही थी, तो लिमनोलॉजी साइड मैंने किया था, तो आज तो वो खुश्क है सारे, यू गो एंड सी देयर इज नो सल्फर स्प्रिंग नाउ,
1: अच्छा,
0: दे आर ऑल ड्राई। ये तो है ना, दिस इज हैपनिंग व्हेन आई वॉज वर्किंग, अब आज आते आते आते आते ये ख़त्म हो गया। मैंने EIA किया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज़ की, गुलमर्ग की, पहलगाम की, सोनमर्ग, यूसमर्ग, ऑल, एब्सोल्युटली ऑल, और जम्मू के सारे इलाकों की। आज वो हालत मैं देखती हूँ तो आई फील एब्सोल्युटली स्टंड कि ये क्या हो गया है, सारा चीज़ ख़त्म हो रहा है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो इसका ये मतलब है ना कि हमको कहीं ना कहीं फिक्स करना है, कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं पे तो गलती हो गई है ना। आप देखिए CAG की रिपोर्टें हैं, आपका डल लेक, होकर, सर, बुलर, मॉन्सबल, ऑल अंडर साइमल्टेनियस स्ट्रेस। मैंने आज देखिए कौन क्या चीज काम कर रही है, हमारे मुल्क में रेगुलेशंस की कमी नहीं है, एक चीज़ मैं बता दूं, रेगुलेशंस बहुत है। आप देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस में रेगुलेशन है, पोल्यूशन कंट्रोल में रेगुलेशंस है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 है, रेगुलेशंस की कोई कमी नहीं है, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन हमारा इशू है। एवरी डिपार्टमेंट इज़ वर्किंग इन साइलोज। आप देखिए अगर जम्मू कश्मीर की आप बात करेंगे तो आपके जो वेटलैंड्स है यहाँ पे, आपके जो वाटर बॉडीज़ है यहाँ पे, आधे वाटर बॉडीज़ फॉरेस्ट के अंडर है, आधे वाटर बॉडीज़ वाइल्ड लाइफ के अंडर है, आधे वाटर बॉडीज़ लेक अथॉरिटी के अंडर है, आधे वाटर बॉडीज़ वाइल्ड लाइफ के, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के पास है। तो ये साइलोज में काम कर रहे हैं लोग, People are working in silos. अब ये जमाना गया, अब we have to think over it और एक unified, एक ہم کو ایک باڈی بنانی ہے, اتھارٹی بنانی ہے ود مینڈیٹ, جو جو مینڈیٹ ان کو ملے گا اور لیگل جس کی سینکٹیٹی ہو اس کو بنا کے ایک کام کرنا پڑے گا, کیونکہ حالت از بیونڈ ناؤ. اب یہ حالات ایسے پہنچے ہیں کہ لیونگ کنڈیشنز اب مشکل ہو جائیں گی. ہمارا آپ کا یہ دیکھیے پیڈی یلڈ کام ہو گیا.

0: लास्ट ईयर आपको याद होगा, पैडी यील्ड काम हो गया आपका, आपको पानी नहीं मिल रहा है। अभी 20-25 दिन हो गए, महीना बैक समबडी वाज टेलिंग मी कि चाडोरा दैट एरिया, वहाँ निहाली जो बनाते हैं ना पैडी के लिए,
1: जी
0: उसके लिए पानी ही नहीं है, देयर इज नो पानी।
1: नहीं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है तो नेचुरली बहुत ज्यादा पानी लगता है।
0: अब हमने आज तक, आप बोलते वाटर इंटेंसिव की बात है, सही है, आज तक हमारे रिसर्च में, हमारी यहाँ कितनी रिसर्च बॉडीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो इस मौजू पे कोई रिसर्च ही नहीं हुई है कि ये वाटर इंटेंसिव है, इसको हम कैसे कम पानी में, जैसे 6 इंच का पानी चाहिए आपको पैड़ी में, तो हमको 2 इंच में या 3 इंच में कैसे पानी बनेगा, मतलब दैट रिसर्च नीड्स टू बी एप्लीकेबल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पे जब आप PhD करते हैं तो रिसर्च टॉपिक आप लेते हैं लंदन का, आप लेते हैं अमेरिका का, आप लेते हैं तमिलनाडु का, आप लोकल रिसर्च नहीं कर, विद द रिजल्ट क्या है, आपके पास डाटा ही नहीं है।
1: आपको लग रहा है इसकी वजह से जो आप बोल रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स की तरफ फार्मर्स को जाना चाहिए?
0: ऑफ कोर्स जाना चाहिए, मगर उनको बताएगा कौन, उनको बताएगा कौन? देखिए ना, जब तक आप कहीं पे कोई बॉडी ना हो, कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी ना हो, वो बताएंगे ना, आप साइलोज में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बताएगा अपने हिसाब से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बताएगा अपने हिसाब से, दूसरे डिपार्टमेंट बनाएंगे अपने हिसाब से, तो एक यूनिफाइड बॉडी होनी चाहिए ना जो एक डायरेक्शन इशू करे कि फलानी फलानी चीज करना है, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, देन एंड देन फार्मर कैन लिसन। आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इसको बोल रहे हैं कि ये सुनो, ये करना है, ये करना, वो बेचारा करेगा क्या? सुसाइड्स हो रहे हैं, लोगों को मेंटल स्ट्रेस हो रहे हैं, लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको पता है, यंग जो एंटरप्रेन्योर आपके पास, आपको मैं एक मिसाल दे दूं, यंग लड़का आ जाता है, वो कहता है चलो जी मैं एंटरप्रेन्योरशिप में जाऊंगा, अब नौकरी नहीं मिल रही था, एंटरप्रेन्योर में जाऊंगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप में जाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में फॉर एग्जांपल जाता है, या कहीं और महकमों में जाता है, वहाँ से NOC इसको मिलनी है, वहाँ NOC इसको नहीं मिलती है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है वो बंदा कि वो छोड़ के चला जाता है, वो बोलता है मुझे ज़रूरत ही नहीं है, विद द रिजल्ट दैट हैज़ एन इफेक्ट ऑन हिज हेल्थ। वो जब जवान लड़का है, वो काम नहीं कर पा रहा, उसकी उसकी लाइफ इफेक्ट हो रही है, उसकी शादी, दूसरी चीजें होती है जिंदगी में, दोस गॉट इफेक्टेड, तो वो करेगा क्या?
1: जो हम स्नोपैक की बात कर रहे थे, जो हमारा जो हिंदुकश रेंज है, हिंदुकश रेंज में हमने देखा था कि स्टडी के मुताबिक 28% 2025 नवंबर से मार्च 2026 तक जो स्नो कवर है वो ड्रॉप होके 28% रह गया है, तो इससे जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है, आपको लग रहा है कि ये भी इम्पैक्ट हो रहा है?
0: ऑफ कोर्स होगा इम्पैक्ट, आपका एक तो पानी इफेक्ट हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होके हमारे दरियाओं में और इसमें नालों में आ जाता था, अब इस वक्त क्या हो गया, एक तो स्नो भी कम है, स्नो पैक भी कम है, उसमें क्या हो जाता है कि उसमें आपको अर्ली जो टेम्परेचर राइज हो जाता है वो मेल्ट हो जाता है जल्दी, वो आ जाता है नीचे, पानी आ जाता है नीचे, और ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज तो हो जाएंगे।
1: पीक ऑफ समर में आप बोल रहे हैं,
0: पीक ऑफ समर में तो होगा ही नहीं, इस वक्त भी आपको पानी नहीं मिल रहा है, 24 आवर पानी नहीं होता है, श्रीनगर में नहीं होता है पानी, सुबह शाम पानी होता है, हम चूंकि अब स्टोर करते हैं पानी, उस वजह से लगता नहीं है, अदरवाइज देयर इज अ सीरियस इश्यू।
1: मैंने इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी जगहों पे देखा, जो हमारा पैस्टोरल कम्युनिटी है, ट्राइबल्स जैसे गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ हैं, उन पे भी मैंने देखा कि क्लाइमेट चेंज के असरात हैं, जैसे मैंने देखा कि वो जब माइग्रेशन करते हैं, वो जो रूट्स वगैरह है, वो अब माइग्रेशन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, वो बोल रहे हैं, मैंने एक से बात की, उनका कहना था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, प्लास्टिक टेंट्स में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर उनका लाइव स्टॉक उनको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये जो पैस्टोरल कम्युनिटी है उनकी जो इकोनॉमी है ये भी हिट हो रही है?
0: ऑफ कोर्स हिट होगी। आप देखिए ना, अब जो उनका रूट हो रहा है वहाँ पे मीडोज में, वो खुले मैदानों में आते थे, वहाँ रहते थे, वहाँ टेम्परेचर जब राइज हो गया तो वहाँ पे क्योंकि खुला होता है, वहाँ पे ज़्यादा शेड नहीं होते, वो ट्री कवर ज़्यादा नहीं होता है, तो वहाँ पे खुली धूप आके, और धूप में इतनी तमाजत है, इट इज़ सो हॉट, धूप में इतनी तमाजत है कि इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है।
1: सही बात है।
0: आप देखिए ना ACs आपके पास कितने हैं, एवरीबडी इज हैविंग एन AC नाउ इन कश्मीर, AC तो देखा ही नहीं था, और वी यूज इट इवन नाउ।
1: सही बात है।
0: तो विद द रिजल्ट जो इमिशंस हो जाते हैं, टूरिज्म का इशू हो गया, इमिशंस हो जाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता मीडोज की तरफ चले जाते हैं, तो ऊपर चले जाके टेम्परेचर तो राइज हो जाएगा।
1: लेकिन मैम, एक यू आर क्लाइमेट पॉलिसी कंसल्टेंट, आपका एक पूरा ओवरव्यू रहता है।

0: क्लाइमेट चेंज के हवाले से, मैं एक चीज़ में हैरान हूँ कि हम उस रीजन में रह रहे हैं, हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है ग्लोबली वो उतना नहीं है, बट जितना हम हीट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, हमारी इमिशंस उतने नहीं है। इसको ऐसे समझें दैट वी आर अनफॉर्चुनेट पीपल लिविंग इन दिस रीजन।
1: ऑफ कोर्स मैंने इसमें लिखा है, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, मैंने लिखा है कि कार्बन पोर्टल की बात हो गई ना, कार्बन ट्रेडिंग का इशू स्टार्ट हो गया है इंडिया, एक पोर्टल भी है, आप वहाँ पे क्या हो रहा है, ये पावर मिनिस्ट्री स्टार्ट किया, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन्होंने कर दिया कि विद द एग्रीकल्चर फार्मर्स के साथ। अब अनफॉर्चुनेट देख लीजिए क्या है, वही मैं गवर्नेंस की जो बात कर रही थी, अनफॉर्चुनेट देख लीजिए हमारा इलाका जो है, पर्टिकुलरली कश्मीर जो है, ये माना जाता है कि ये सिक्वेस्ट्रेशन हमारी मैक्सिमम होगी नेचुरली, एज अ ले मैन सब बोलेंगे हमारा इतना फॉरेस्ट कवर है, हमारा इतना वो है, हमारा इतना ये है, हम कितना कर सकते। अब उसको ट्रेडिंग के लिए, उसके लिए एक लाहे अमल चाहिए, उसको एक एक्शन प्लान चाहिए, उसको एक आपका पूरा चेन चाहिए,
0: जी
1: वो मिसिंग है। दैट इज वॉट आई एम, वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस यहाँ आता है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप देखिए ना, मतलब इश्यूज ऐसे हैं, तो जो किताब पे आता है हमारे पास इतना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है शायद नहीं है, मतलब यू कैन नॉट, जब आपके पास डाटा ही सही नहीं है तो आप मेजर क्या करेंगे,
0: सही बात है।
1: मतलब दोज आर इश्यूज वी आर फेसिंग। ये एक डायलेमा है कि हमारा इतना रीजन है और हम कार्बन क्रेडिट का पैसा हम वसूल कर, हम विल बी अ इट विल बी अ ह्यूज सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर जम्मू एंड कश्मीर, बट इट इज़ नॉट, हम जीरो पे स्टार्ट है। रेस्ट ऑफ द कंट्री जो मैं जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स है, वो इनने स्टार्ट किया कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, उनने कार्बन ट्रेडिंग स्टार्ट की, कार्बन क्रेडिट वो बेच रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू डू ऑन दैट सेंस ऑफ, बिकॉज यहाँ पे अगेन गवर्नेंस की जो मैं डॉट्स, अगर इसको डॉट्स को कनेक्ट करें तो आप देखिए गवर्नेंस गैप, उसके बाद आपके पास जो बॉडी हो, एक कंप्रहेंसिव बॉडी हो, वो करे ना, उसको फिर जब जिम्मेदारी आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो लोग कर देते हैं। हमारे पास कमी नहीं है ना, ना रूल्स की कमी है, ना रेगुलेशन की कमी है, ना एक्सपर्ट्स की कमी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स बहुत है, हमारे पास जानने वाले बहुत है, हमारे पास इसको इकट्ठा करने की ज़रूरत है, उसको एक शक्ल देने की ज़रूरत है जहाँ से हम कर सकते हैं, हम वी कैन डू इट, अभी भी मौका है दैट हम सुधर जाए।
0: और लाइटनिंग की अगर हम बात करें, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहले भी लाइटनिंग हम देखते थे आइसोलेटेड एरियाज में, लेकिन अब जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे लाइटनिंग हम देखते हैं, आए दिन एक रिपोर्ट आता है, अगर हम ट्राइबल्स की बात करें, उनका लाइफ स्टॉक बुरी तरह से मुतासर होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा उनकी जो इकोनॉमी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस चीज़ को कैसे हम एक फ्रेमवर्क बनाएं, एक पॉलिसी बनाएं, ताकि ये जो लॉसेस हैं वो हम इसको टैकल कर सकें।
1: यही क्लाउड बर्स का जो इशू है ना हमारे इसमें, आप देखिए लास्ट ईयर एक एक प्रोग्राम भी हुआ था, इसमें क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा, हम क्यों इतने ये हो रहे, क्योंकि हमारा जो हिमालयन रीजन है दैट इज़ अ रीजन वायर जो हवाएं आती है सेंट्रल एशिया से, हवाएं जो आती है वो ऊपर जाके ठंडी हो जाती है एकदम, जब ऊपर ठंडी हो जाती है तो ये एक क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है, क्लाउड आहिस्ता आहिस्ता बन के एकदम बहुत सारे क्लाउड जमा होके फट जाते हैं और पानी आ जाता है नीचे। अब इसका ये इशू है कि हमने जो ग्राउंड है जहाँ पे गिरता है वहाँ हमने डिन्यूड किया, वहाँ हमने फॉरेस्ट भी ख़त्म किया, वहाँ हमने ज़मीन भी ख़त्म की, वहाँ हमने बुशेज भी ख़त्म की, जिस एरिया में आप ठाठरी की बात कर लीजिए, परसों भी हो गया ठाठरी में एक फ्लैश फ्लड हो गया, लास्ट ईयर रामबन में बहुत ज़्यादा नुकसान,
0: गांधरबल
1: हो गया
0: में भी रिसेंटली,
1: गांधरबल में भी हो गया, पहलगाम में हो गया, और सो मेनी प्लेसेस। तो ये क्या होता है, ये पानी जब बहुत जोर से आता है, इट कम्स विद ए हाई स्पीड, तो ये स्ट्राइक जब करता है जमीन को, जमीन चूंकि डिन्यूड है, आपके पास जमीन में कुछ भी नहीं है, नीचे खाली है जमीन, नंगी जमीन है, तो वो फट जग के वो अपने साथ जो भी साथ है वो लेके चला जाता है,
0: अच्छा
1: पेड़ हो, घर हो, इंसान हो, लाइफ स्टॉक हो, आके चला जाता है। तो इसको हम क्या करें, अब इसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या हो जाता है कि हम उनको अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास हो, देखिए ना यू हैव टू, अब हमको ये, जब मैं गवर्नेंस की बात कर रही हूँ तब मैं गवर्नेंस गैप की बात कर रही हूँ कि जब तक उनको वार्निंग सिस्टम नहीं होगा 5 मिनट 10 मिनट पहले उनको मिल, एटलीस्ट ह्यूमन लॉस हम अरेस्ट कर सकते हैं।
0: ओके

0: लॉस्ट अरेस्ट कर सकते हैं ना, एटलीस्ट वी विल नॉट लूज द ह्यूमन रिसोर्स, वो है। बाकी बाकी इंसानों को, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कितना कर? और वो जो जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हमारी, क्योंकि हम सेज्मिक जोन, आपने बात नहीं की, सेज्मिक जोन 6 में हम है,
1: सही बात है,
0: कंस्ट्रक्शन का भी इश्यू है हमारे पास। हम पहाड़ों और ऊंची जगहों पे इतने बड़े बड़े घर नहीं बना सकते, इवन इवन इन वैली, इन जो फ्लैट हमारा एरिया है उसमें भी हम नहीं बना सकते। अल्लाह ना करे अगर किसी वक्त जलजला आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हमको बिल्डिंग्स मारेंगी, हमको अर्थक्वेक एज सच नहीं मारेगा, बिल्डिंग्स मारेंगी, क्योंकि हमने कॉन्क्रीट और मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं। हमारा पुराने जमाने में यहाँ नहीं होता था, पुराने जमाने में कंस्ट्रक्शन नहीं होता था, पुराने जमाने में वो एक, मैंने उसमें एक भी लिखा है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस जो है कि हमको प्लानिंग में ऐसे करना है कि हमारे पास दजी दीवारी होती थी।
1: हाँ सही बात है, मैं पढ़ रहा था
0: वो दजी दीवारी होती थी, उसमें आप देखिए डाउन टाउन में या कहीं कहीं पुराने इलाकों में कुछ कुछ मकान मुड़ गए हैं, गिरे नहीं है। ये क्या होता है कि दजी दीवारी में 9 इंच की दीवार चढ़ जाती है जो कंस्ट्रक्शन में, जो ब्रिक है आपकी, तो मोटा दीवार नहीं होता है, मोटी जो दीवार हम बनाते हैं ना वो 14 इंच की, जो हम नहीं बना सकते हैं, तो उस वजह से कि क्या हो जाता है, ये जो दजी दीवारी है उसमें लॉस नहीं होता था। कंस्ट्रक्शन इज टू बी रीओरिएंटेड। आपको कंस्ट्रक्शन जो ये मॉन्स्ट्रस स्ट्रक्चर्स आप कहते हैं, आप यही हाल है आपके टूरिज्म इलाकों का, जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वहाँ पे भी इतनी बिल्डिंग्स खड़ी खड़ी करके इमिशन इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा इमिशन हो गया है, तो तब वो भी तो कंट्रीब्यूट करता है कि जो हमारे पास कोई स्नो पैक है वो भी मेल्ट हो रहा है।
1: लेकिन मैं वही बोल रहा था कि अगर हमारा इमिशन उतना है ही नहीं तो हम करें तो करें क्या?
0: इमिशन नहीं है हमारा, इमिशन मानता नहीं है ना, आपका पंजाब में स्टार्ट हो गया तो वो तो आपके पास आएगा, वो तो मानता नहीं ना बॉर्डर,
1: क्योंकि हमारे यहाँ इतने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं है हमारे यहाँ।
0: एनसीआर में है, एनसीआर में है नहीं, जो भी जो आपके व्हीकल है, आपको पता है व्हीकल जो दिल्ली में और सब जगह में वो हो जाते हैं ना, वो कंडम हो जाते हैं, वो दे आर नॉट अलाउड, बेस इनका है
1: स्टैंडर्ड्स, टाइम फ्रेम होता है इनका,
0: स्टैंडर्ड्स विस स्टैंडर्ड्स के अंडर उनको फिर ये करते, वहाँ से पीपल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गो एंड गेट फ्री, वो बहुत सस्ती सस्ती गाड़ियाँ लेके, और हमारी आप देखिए, आप श्रीनगर की इस पे सड़कों पे चलिए, आप देखिए कितनी गाड़ियाँ बाहर के नंबर्स की गाड़ियाँ है,
1: सही बात,
0: अब उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत है to see the impact what's happening in winter. Winter में क्या होता है यहाँ पे, winter में चोक हो जाता है इंसान,
1: सही बात है, air quality बहुत ज़्यादा खराब है,
0: air quality बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, we are not, हम, मैंने बोला ना डाटा नहीं हमारे
1: तो
0: पास,
1: आप ब्लेम कर रहे हो ऑटोमोबाइल सेक्टर को जो हमारी
0: air quality, हर एक सेक्टर को, ब्लेम की बात नहीं है, बट इनके पास ऐसा नहीं है कि हम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि लोग ये, मगर हम गवर्नेंस की बात जो मैं अगेन ये करूंगी कि गवर्नेंस क्या होता है, वो एक डायरेक्शन देता है कि दिस इज टू बी डन।
1: जो सेंसस 2026 अभी चल रही है, आपको लग रहा है दैट पॉलिसी विल बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंगली? अभी जब सेंसस का रिपोर्ट आएगा, गवर्नमेंट को पता चलेगा कितने व्हीकल्स किन के पास, कितनों के पास हैं, देन देयर विल बी अ काइंड ऑफ ए न्यू पॉलिसी जिसमें ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी, खासकर क्लाइमेट के हवाले से।
0: इरफान साहब ये बोला कि पॉलिसी की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, इंडिया इज़ फुल ऑफ पॉलिसीज, फुल ऑफ अमेंडमेंट्स, फुल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हमारा इशू हमारे पास वो मैन पावर नहीं। देखिए ना, इम्प्लीमेंटेशन में ये होता है कि आपके पास जो मैन पावर है, जो आपके पास एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स है, उनका कुछ अभी नहीं बनता है, कहीं पर नहीं है, आपके जो प्लान्स बनते हैं ये बंद, उसमें एनवायरमेंटल एक्सपर्ट की बड़ी ज़रूरत है, उसमें है ही नहीं, मतलब प्लानिंग जो आप करते हैं वो करते हैं विदाउट दिस कि यहाँ पे आप आज, आप अभी बात हो रही थी कहीं पे कोई गार्डन बन रहा है फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से, मतलब किसी को, हमारे पास स्टेक होल्डर्स और कम्युनिटी की जो आपस में इंटरेक्शन है, आपस में तालमेल है, वो मिसिंग है, दैट इज मिसिंग।
1: टूरिज्म के हवाले से बात करें, एक टूरिस्ट जब यहाँ लैंड करता है श्रीनगर एयरपोर्ट से तो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, इतनी गाड़ियाँ हैं, तो इसको भी आप बोल रहे हैं कि इसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जैसे जब हम क्लाइमेट चेंज की बात भी करते हैं, वी हैव टू रेगुलेट ऑटोमोबाइल सेक्टर अकॉर्डिंगली, उसमें जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, और ट्रैफिक जाम में जब एक टूरिस्ट फंसता है, वो उसका जो मतलब एडवेंचर है, उसका जो एक जर्नी है, उस वो बुरी तरह से मुतासर होती है, तो आपको लग रहा है वहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत है?
0: मैं अभी आ रही थी तो इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक।

0: साहब आप पूछे ही नहीं, सो मच ऑफ ट्रैफिक, करेंगे क्या इसको, क्या इश्यूज है, क्या है इसको चैनलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है, इसको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत, जैसे दिल्ली में किया था ऑड एंड एवन, कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत स्ट्रांगली है, क्योंकि जो टूरिस्ट आपके पास आता है वो आपके पास आपकी गाड़ियाँ देखने नहीं आता है, वो आपके पास आपकी बिल्डिंगें देखने नहीं आता है, ही वॉन्ट्स टू हैव अ सुकून, लाइफ ऑफ सुकून, सुकून उसको मिले, इसको पीस मिले, इसको आराम से ज़िंदगी गुजारे, कहीं पर गुलमर्ग में जाए, पहलगाम में जाए, या कहीं और टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाए, तो वो आपका ठंडी हवा लेने आता है, तो आपके पास है ही नहीं वो, तो आपके पास टूरिस्ट फुटफॉल जो है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, इट विल हैव अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री।
1: और ऑन टॉप ऑफ दैट जो हमारे प्लास्टिक और जो पॉलीथीन के बैग्स हैं वो टूरिस्ट स्पॉट्स में इजीली जाते हैं,
0: और
1: वहां
0: आपके
1: पे
0: पास
1: गार्बेज साइट्स बनते हैं अनफॉर्चुनेटली,
0: कहां कहां नहीं है गार्बेज साइट, कहाँ कहाँ नहीं है, हम आज तक नहीं कर पाए, जो हम सर्कुलर इकॉनमी की बात करें, रेस्ट ऑफ इंडिया में आप देखिए ना, आहिस्ता आहिस्ता तो लोग करते, कहीं से स्टार्ट करें ना, मोहल्ले मोहल्ले वाइज स्टार्ट करें, लोगों को टेक्नोलॉजी बताए, जो श्रीनगर म्यूनसिपैलिटी का काम है, टेक्नोलॉजी लोगों की बताए, है टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, ऐसा नहीं है, जैसे किचन वेस्ट आपका है वो आप किचन में ही उसको सेग्रीगेट करके उसको यूटिलाइज करके आपका पर में कंपोस्ट निकल सकता है, आपके गार्डन, आपकी जो जो बैकयार्ड वो होती है वेजिटेबल गार्डन होती है उस पे हम काम कर सकते हैं, वो मगर लोगों को कोई बताएं तो।
1: जो हमारे स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसमें ऑब्वियसली हमारा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी है, इंडस्ट्रियलिस्ट्स का क्या रोल देखते हैं आप अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं एज रिस्पॉन्सिबिलिटी?
0: मैं तो अब ये कहती हूँ कि इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है, कॉरपोरेट सेक्टर हैज़ टू जंप इन, क्योंकि जो इंडाइटमेंट अभी आ गई इसकी सीएजी की
1: जी,
0: होकर सर में उन्होंने बताया, जो जहलिम तवी प्रोजेक्ट था उस पे उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने अपने ये कर दिए, आप सुरन सर मानसर की बात कर लीजिए उस पे बात हो गई है, वीकनेसेस गवर्नेंस वीकनेस उन्होंने आइडेंटिफाई करी है, वुलर की बात करें वीकनेसेस मानस बल देख लीजिए, कोई चीज़ देख लीजिए जहाँ पर नहीं है, आपको जो जो इंडस्ट्री हमारी है, इंडस्ट्री हम उसको ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और एक है यहाँ पे, देखिए जो सेबी है और आईआईसी है, सेबी और आईआईसी कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर काम करती है टू लुक आफ्टर द कॉरपोरेट सेक्टर, मोस्टली कॉरपोरेट सेक्टर को देखने के लिए, उसमें आपके जम्मू कश्मीर में सिर्फ 4 लिस्टेड कंपनीज है,
1: अच्छा,
0: वो भी कठुआ और सांबा बेल्ट में है, सर्वेश्वर है, देन प्रो है, आपका और दो है, नजर आ रहा है 4 है टोटल लिस्टेड कंपनीज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे है, वो है वहां पे, रेस्ट आपकी लिस्टेड कंपनी विद द रिजल्ट कि जो उनका फुटप्रिंट है, जो इनका फुटप्रिंट है, जो सेबी का और सीआईआई का फुटप्रिंट है वो हमारे पास नहीं है, विद द रिजल्ट अकाउंटेबिलिटी इंडस्ट्री की है ही नहीं, आपका इतना बड़ा सेक्टर है टूरिज्म सेक्टर, आपका इतना बड़ा सेक्टर है टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इतने टूरिस्ट उसको करते, उनका कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, तो सेबी और सीआईआई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का दखल होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री पे, तभी काम करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए कि वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल, वी आर अकाउंटेबल टू द कम्युनिटी, वी आर अकाउंटेबल टू द प्लेस वी आर वर्किंग इन।
1: पानी की अगर हम बात कर रहे थे, हमारा हाइड्रो पावर और फिशरीज के अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट हो रहा है और बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स जो हमने देखी है उसमें फिशरीज और दोनों सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, तो कहाँ काम करने की ज़रूरत है इसमें, ताकि जो हमारे बूमिंग सेक्टर्स हैं इनको एटलीस्ट हम
0: अपना वेस्ट ठिकाने लगाना है, जो वेस्ट है ना आपका, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट, क्योंकि लीचिंग जो आप देख लीजिए, लीचिंग हो रही है हमारे अचन में
1: जी,
0: उससे ग्राउंड वाटर सारा खराब हो गया है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर वेस्ट।
1: आखिर पे क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से लोगों के लिए?
0: लोगों के लिए ये पैगाम रहेगा कि लोग समझे अपनी जिम्मेदारी और क्वेश्चंस पूछे, जो प्रोजेक्ट कहीं हो रहा है, कहीं पे रोड खोदी जा रही है, जाके उनको पूछें कि ये क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि लोग बेहस नहीं रह सकते, लोगों का एक एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमको एक क्वेश्चन पूछना है, हमको पूछना है क्या हो रहा है, That is the difference between us and West. This is the difference. कि लोग अवेयर है।
1: मैम, प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: सामने इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेजबान इरफान अमीन मलिक

0: और प्रोड्यूसर वसीम फारूक को दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: समय यह था प्रोग्राम पेशरफ।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
2: आदाब, भारत की पोलियो से जीत की कहानी सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएगी, लेकिन इस जीत को कायम रखने के लिए हमें अपनी कोशिशों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा मुकम्मल तौर पर टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, दो बूंद हर बार। पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
1: पैदाइश से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। नेशनल पोलियो साइकिल, इतवार 28 जून 2026।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन G&K।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समिन शब के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लिएंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Marke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defence Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defence Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year. The Ministry said that these posts have selectively quoted an isolated portion of the speech to falsely imply that Mr. Singh claimed that no Indian soldier lost his life during Operation Sindoor. Explaining the context of the Defence Minister's remarks, the Ministry said that at the time of Mr. Singh's address, a particularly persistent and dominant narrative had emerged in certain sections of the media and on social media claiming that Indian pilots had been lost during Operation Sindoor. The Ministry said this narrative was entirely false, yet it was being amplified aggressively with the clear intent of diminishing the success of the operation and demoralizing public sentiment. The Ministry said that it was in direct reference to this specific and mischievous narrative that the Defence Minister made the statement in question. Union Minister for Electronics and IT Ashwini Vaishnav and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath laid the foundation stone for 2 major electronics manufacturing projects worth 6,750 crore rupees in Jewar, Uttar Pradesh. Addressing the gathering, Mr. Vaishnav said that Jewar is poised to emerge as one of India's leading hubs for electronics and semiconductor manufacturing in the coming years. Explaining the significance of the projects, the minister said that the facilities would manufacture advanced multi-layer printed circuit boards, PCBs, one of the most critical components of modern electronic devices.

हम आकाशवाणी सिरी नगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय शाम के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले कल यहां से नशर होने वाले प्रोग्रामों पर एक नज़र डालते हैं। समीन कल सुबह 11 बजे वजीर अजम हिंद जनाब नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में 135वें बार कौम से मुखातिब होंगे। इसके फौरन बाद आप मन की बात प्रोग्राम का कश्मीरी तर्जुमा सुनेंगे। समीन याद रहे, मन की बात प्रोग्राम का कश्मीरी तर्जुमा रात 8 बजे दोबारा नशर होता है।

रात 9:30 पर आप सुनेंगे डिस्कशन टाइम। शुरका हैं मौलाना शौकत हुसैन केंग, डॉक्टर अली मोहम्मद कासिमी और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम। फरमाइशी नगमों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम आपकी फरमाइश आप समाप्त करेंगे शब 10 बजे। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जावेद अंदराबी। सवेरे सुबह 6:35 पर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबुगाही मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन शो प्याम सुबह। आप समाप्त करते हैं सुबह 7:10 पर। सुबह 8:15 पर प्रोग्राम पेश खिदमत होगा सवन तारीख। शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर ममताज यत्तू और डॉक्टर सतीश विमल।

7.65 प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है, ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। सुबह 9 बजे मकामी रोजनामा से ली गई आज की सुर्खियां आप समाप्त करते हैं। 7.65 प्रोग्राम जेके बैंक डायरी ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 9:45 पर। सुबह 10 बजे 7.65 प्रोग्राम नशर होगा रेडियो साथी।

नन्हे मुन्ने बच्चे अपना प्रोग्राम होनहार सुनेंगे सुबह 10:30 पर, 12:10 पर उर्दू गज़लें और 12:40 पर चंद कश्मीरी गज़लें आप सुनेंगे। मगरबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो आप समाप्त करेंगे दिन के 1:10 पर। प्रोग्राम नई मंजिलें आप समाप्त करेंगे दिन के 2:30। सभी सपहर 3 फौज भाइयों के लिए प्रोग्राम नशर होगा। पहाड़ी प्रोग्राम आप सुनते हैं 4:30 पर मन की बात प्रोग्राम का शिना तर्जमा ब्रॉडकास्ट होगा। शाम 5 गोजरी प्रोग्राम समाप्त करें। गैमी भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर और हालात हजरा का प्रोग्राम शहरबीन नशर होता है हर रोज शाम 7। समीन ये थी तफसील कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों के। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 MHz पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शब के 11:14:45 हो रहे हैं। आज की मजलिस यही पे बर्खास्त करने की दीजिए इजाज़त। सुबह मामूल के प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में 6:28 पर इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं। जब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।

फिल्म का नाम है परिंदा और प्यारा सा गीत है आशा जी की आवाज में, और साथ निभा रहे हैं उनका सुरेश वाडकर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

11:35 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ जुड़े हुए आप और प्रोग्राम चल रहा है गीत मेरे मनमीत, आपके साथ इस सफर में मैं विकास। पंचमदा की कंपोजिशंस आप तक पहुंच रही हैं और जैसा कि आप समझ ही चुके होंगे और पंचमदा की कंपोजिशंस का सबसे ज्यादा अगर फायदा देखा जाए तो वो आशा जी को हुआ। हो सकता है वो इसलिए भी क्योंकि आशा जी उनके स्टाइल के लिए सही आवाज रही, लेकिन लता जी एक जगह पर कहती हैं कि पंचमदा ने उन्हें वो गाने दिए जो वो उनके लिए सही समझते थे। और उन्होंने एक जगह उनसे कहा कि जो गाने मैं आपको ध्यान में रखकर कंपोज करता हूं वो गीत मैं कभी भी आशा जी को आगे भेजता नहीं, और वाइस वर्सा, यानी ठीक इसका उल्टा, जब मैं आशा जी के लिए कंपोज करता हूं तो वो गीत मैं आपको नहीं देता। और इस तरह लता जी के पास रहना बीती जाए और बीती ना बिताए जैसे गीत गए।

पंचम दा को वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत शौक था, उन्हें बहुत पसंद था ये संगीत और उन्होंने अपने संगीत में उसे भरपूर जगह दी, एक्सपेरिमेंट किया, कई देशों को जब जब घूमा, वहां के इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ लाए और उन्हें अपने गानों में आजमाया भी। लेकिन तबला और सरोद बढ़िया तरीके से बजाने वाले आर.डी. बर्मन ने कई सारी शास्त्रीय धुनों को भी तैयार किया। अगर मैं कुछ गीतों की लिस्ट यहाँ शेयर करूँ, आपको बताऊं, तो शायद समय निकल जाए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ गीत मैं आपके लिए बता ही देता हूँ। जैसे मेरे नैना, सावन बाधो, राग शिवरंजनी, राग तोड़ी का रैना बीती जाए और यमन कल्याण में बीती ना बिताई रैना। ये कुछ ऐसे गीत जो आज भी हम पसंद करते हैं, सुनते हैं और जब जब रेडियो पर या अपने घरों में हम इन्हें बजाते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आप उन गानों को गुनगुनाना

शुरू कर दें। फिलहाल घड़ी बता रही है कि विकास अब तुम्हारे स्टूडियो छोड़ने का वक्त आ चुका है, इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल जो रखते हैं आपका ख्याल। विकास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा

आवाज की दुनिया के दोस्तों को रश्मि कुकरेती का नमस्कार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और कार्यक्रम है पानी पर लिखी कहानी। आज इस कार्यक्रम में हम जो कहानी आपको सुनवाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अंजलि और इसे लिखा है रश्मि रविजा ने। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती। अंजलि बहुत कुछ करना चाहती है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि उसकी जिंदगी एक जगह स्थिर होकर रह जाती है। वहां होती है निराशा, वहां होता है गहन अंधकार, लेकिन उस अंधकार में हाथ थाम कर जो उजाले की ओर लेकर चलता है वो होता है सच्चा दोस्त। कुछ ऐसे ही रूपरेखा है इस कहानी की। आइए सुनते हैं पानी पर लिखी कहानी अंजलि।

साहिल दौड़ता भागता प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो पता चला ट्रेन 2 घंटे लेट है। ऑफिस से तो समय पर ही निकला था पर ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गया। सोच रहा था पहली बार अंजलि ने उससे कोई मदद चाही है और वो समय पर नहीं पहुंच पाएगा। अजनबी शहर, अनजान चेहरों के बीच अंजलि परेशान हो जाएगी, ऐसा न हो वो अकेले ही चल पड़े। पर आज मन ही मन भारतीय रेलवे का शुक्रिया भी अदा किया। आज ट्रेन के लेट होने से खींच नहीं हुई बल्कि सुकून की सांस ली उसने। एक नींबू पानी लिया और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिला और बिखरी यादें अपने आप सिमटने लगी। अंजलि उसकी छोटी बहन साक्षी की सहेली थी। दोनों एक ही क्लास में थी और अक्सर साक्षी के साथ अंजलि भी घर पर आया जाया करती। साक्षी जब छोटी थी तो उससे बहुत डरती थी। अब तो दादी अम्मा बनकर सलाह दिया करती है। उसकी देखा देखी अंजलि भी उससे

0: डरने लगी। वो घर में घुसता और दोनों सहेलियां या तो छत पर भाग जाती या घर के किसी महफूज कोने में छुप जाती, और अगर सामने पड़ जाती तो वो भी रौब जमाने के लिए जोर से साक्षी को किसी न किसी बात पर डांट देता। साक्षी सहम जाती और अंजलि जल्दी से अपने घर चली जाती। जब साहिल को पता चला कि गली के कोने पर जो बड़ा सा आलीशान मकान है वो अंजलि का घर है और वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है, तो उसने साक्षी को समझाया।
1: सारा दिन खीखी करके घूमती रहती हो, इम्तिहान पास आ रहे हैं, पढ़ाई नहीं करनी?
2: हाँ भैया।
1: इतने बड़े घर की लड़की से दोस्ती न करो। अरे उन लोगों का रहन सहन, बात व्यवहार सब अलग होता है, दोस्ती बराबर वालों में ही अच्छी लगती है।
2: अंजलि बहुत अच्छी लड़की है भैया, घमंड तो जरा छू भी नहीं गया है, बहुत घुल मिल कर रहती है, बड़ों की बहुत इज्जत करती है। सब पैसे वाले खराब थोड़े ही होते हैं भैया।
1: जिससे चाहो दोस्ती रखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अमीर सहेली की देखा देखी कोई ऊट पटांग मांग न कर बैठना।
2: ठीक है।
0: अब साक्षी उसके सामने कभी अंजलि को अपने घर पर नहीं बुलाती। काफी दिनों तक उसने अंजलि को देखा नहीं और वो भूल गया। साक्षी कॉलेज में आ गई थी। एक दिन कॉलेज में उसका साड़ी डे था। दो दिन से उसकी तैयारी चल रही थी और साहिल उसे चिढ़ाए जा रहा था।
1: ये कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है या किसी फैशन परेड में? कॉलेज में पढ़ाई की जगह ये सब होता है? कमाल है, कैसा कॉलेज है तुम्हारा?
2: भैया परेशान मत करो।
0: माँ ने भी उसे डांट कर बाहर वाले कमरे में भेज दिया। जब तक ये तैयार होकर चली नहीं जाती मुझे कोई काम नहीं करने देगी। वो ड्राइंग रूम में टेबल पर पैर फैलाए टीवी देखने लगा, तभी डोरबेल बजी। सामने एक परी सी खूबसूरत लड़की नीली साड़ी में खड़ी थी। वो बिना पलके झपकाए देखता रह गया तो धीरे से बोली,
3: साक्षी है?
1: साक्षी।
0: और दरवाजा खुला छोड़ अंदर चला गया, पर बरामदे से देखता रहा।
1: ये कौन सी सहेली है साक्षी की? इसे तो कभी नहीं देखा।
0: साक्षी साड़ी संभालती हुए कमरे में आई और चीख पड़ी,
2: अंजलि हाय, तो कितनी सुंदर लग रही है।
1: तो ये अंजलि थी, पर इतनी बदल कैसे गई? वो तो दो पोनीटेल बांधे फ्रॉक पहने रहती थी, इतनी बड़ी कैसे हो गई?
0: दोनों सहेलियां घर से निकल गईं और वो खिड़की के पास आ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये अंजलि ही थी। दूर तक उसे जाते देखता रहा। बाद में साक्षी से पूछ भी लिया,
1: वो अंजलि थी तुम्हारे साथ? तुम्हारी अंजलि से अभी दोस्ती है?
2: हाँ, लो, हमारी दोस्ती खत्म कब हुई थी? हम तो स्कूल से ही पक्की सहेलियां हैं।
1: ओह नहीं नहीं, वो कभी देखा नहीं ना घर पर।
2: वो तुमने डांट दिया था ना कि अमीर लड़कियों से दोस्ती मत करो, इसीलिए तुम जब घर पर होते हो तो मैं अंजलि को लाती ही नहीं। और वैसे भी तुम घर में रहते ही कितनी देर हो, कभी क्रिकेट, कभी दोस्त, कभी कॉलेज, पर मेरी सहेली के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हो? बताओ।
1: नहीं नहीं, अब मतलब वो तो यूं ही, अब पहचाना नहीं ना इसलिए।
0: पर अब वो अक्सर साक्षी से अंजलि के बारे में पूछ लेता। साक्षी भी सहज होकर सब बता देती, कभी कभी उसके लिए सहायता भी मांग लेती।
2: अच्छा भैया, वो तुम्हारे किसी दोस्त के पास इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं क्या? अंजलि के लिए ला दो ना प्लीज।
1: ठीक है, मैं ला दूंगा।
0: या कभी कभी अमुक राइटर की कोई किताब लाने को कहती, वो कहीं से भी ढूंढ कर ला देता। धीरे धीरे साक्षी भी समझ गई थी अंजलि के लिए उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पर जब अंजलि जब भी उसके सामने पड़ती घबरा कर चली जाती। उसके मन में शायद उसके बचपन वाली डांट का अब तक असर था, पर साक्षी बताती कि अंजलि भी उसके बारे में अक्सर पूछती रहती है।

0: उसे पता था अंजलि और उसका कोई मेल नहीं। जब पढ़ाई खत्म कर उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, तब साक्षी ने ही बात शुरू की।
1: भैया, अंजलि की शादी की बात चल रही है। तुम भी तो कितनी अच्छी जॉब में हो। अंजलि बहुत बहुत अच्छी लड़की है। कितना अच्छा हो अगर अंजलि हमारी भाभी बन जाए।
2: साक्षी, बहुत पटर पटर बोलने लगी है तू। ऐसा कुछ नहीं है, और मैं तो अभी 4-5 साल तक शादी की बात सोच भी नहीं सकता।
1: क्यों भला?
2: अरे बहुत से काम निपटाने हैं। घर की मरम्मत करवानी है, रिनोवेट ही करवाऊंगा मैं तो पूरा। और हाँ, गाड़ी लेनी है। मम्मी पापा को पूरा देश घुमाना है, लोन चुकाना है, और सबसे बड़ी बात तेरी शादी करनी है। अभी बहुत वक्त है साक्षी।
1: पर तब तक अंजलि के पेरेंट्स इंतजार थोड़े ही करेंगे।
2: इसीलिए तो कह रहा हूँ, फिजूल की बातें सोचना छोड़ते हैं। वैसे भी अंजलि को उसके स्टैंडर्ड का घर ही मिलना चाहिए।
1: भैया, अंजलि वैसी लड़की नहीं है, हर जगह एडजस्ट कर लेगी।
2: बेकार की बातें मत कर। अच्छा चल जा, चाय बना के ला। चल
1: क्या

0: अंजलि उसे अच्छी लगती थी। माँ और साक्षी से उसकी तारीफ भी सुनता रहता था। अब कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी आवारागर्दी भी कम हो गई थी। वीकेंड्स पर अक्सर घर पर ही होता। अंजलि कभी रास्ते में मिल जाती, कभी छत पर से नजर आ जाती। साहिल को देखते ही अंजलि के चेहरे पर एक घबराहट सी छा जाती। उसके बालों की जड़ें पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों से लद जाती और लाल चेहरा लिए वो कतरा कर निकल जाती। वो कभी मुस्कुरा देता, कभी सोचने लगता।
1: इतना भी क्या घबराना, अरे इतने दिनों में भी उसने मुझे नहीं पहचाना, क्या अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ उसे? ठीक है।
0: एक बार उसने उसे थोड़ा और परेशान करने के लिए पूछ भी लिया।
1: अब वो नोट्स साक्षी ने दिए थे, ठीक थे ना?
2: हाँ अच्छे थे।
1: ठीक है। और वो मैं ये कह रहा था कि कभी भी कोई किताब चाहिए तो बताने में संकोच नहीं करना।
2: जी जरूर।
0: फिर उसने खुद को ही रोक लिया। क्या फायदा जिस राह की कोई मंजिल नहीं, उस पर भला क्यों कदम बढ़ाना।

उसने मन ही मन एक दुआ कर डाली कि अंजलि को खूब अच्छा घर और बर मिले, उसे जीवन की सारी खुशियां मिले। कुछ महीनों बाद सुना कि अंजलि की शादी तय हो गई है। उसके कुछ दिन बाद एक दिन वो घर की तरफ आ रहा था और अंजलि उसी रास्ते से गुजर रही थी। अंजलि ने नजरें उठाकर बहुत गुस्से में उसे देखा। वो उन नजरों का मतलब देर तक तलाशता रह गया। अंजलि नाराज है उससे, पर उसने तो हमेशा उसकी मदद ही की है। फिर उन नाराज निगाहों का माजरा क्या था, उसे समझ नहीं आया। अंजलि की शादी के दिन नजदीक आते जा रहे थे। साक्षी की तैयारियां जोरों पर थी। बस एक ही विषय था उसके पास, कब क्या पहनेगी। जब दो दिन रह गए तो उसका मन डूबने लगा और वो ऑफिस के काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। अंजलि की विदाई के बाद ही लौटा। अंजलि का घर वैसा ही था, पर सूना सूना लग रहा था। छत पर से देखा, अंजलि की छत पर बने मंडप की सजावट धूप में फीकी पड़ गई थी। छत पर अक्सर अंजलि के रंग बिरंगे कपड़े और दुपट्टे वगैरह सूखते रहते थे। आज छत वीरान लग रहा था, उसके मन के एक कोने जैसा। साक्षी से अंजलि की शादी की बातें, उसके दूल्हे की हाजिर जवाबी के किस्से सुनता रहा। मन में एक टीस तो उठती, पर वो मन को समझा देता। यही दुआ तो की थी अंजलि के लिए कि वो हमेशा खुश रहे।

0: साल बाद साक्षी की भी शादी हो गई। साक्षी की शादी में अंजलि अपने एक साल के बेटे के साथ शामिल हुई थी। अब उसे नौकरी करते हुए कई साल हो गए थे। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। पुराने घर की ऐसी काया पलट कर दी थी कि लोग पहचान नहीं पाते। माँ पापा साक्षी कब से उसके पीछे पड़े थे, शादी कर लो शादी कर लो। रोज ही माँ कोई न कोई तस्वीर दिखाती और उस लड़की के गुण गाती तो वो बहाने बनाकर टाल देता। पर अब कोई बहाना भी शेष नहीं बचा था। उसने भी हाँ कहने की सोच ही ली थी कि साक्षी के एक फोन ने जैसे उसे सुन्न सा कर दिया। रोती हुई साक्षी कह रही थी,
1: भैया जानते हो अंजलि के साथ क्या हुआ?
2: क्या हुआ?
1: उसके हस्बैंड।
2: क्या हुआ उसके हस्बैंड को?
1: He's no more.
2: Oh no.
1: हाँ भैया, अंजलि तो पत्थर हो गई है। आंसू भी नहीं बहते उसके, सारा दिन छत घूरती रहती है।
2: मुझे लगता है एक बार मुझे जाना चाहिए। अंजलि के माता पिता जब भी मिलते हैं मेरा हाल चाल जरूर पूछते हैं। उनके इस दुख के समय में मुझे उनसे मिलना ही चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए, कल ही चलना तुम मेरे साथ।
0: अंजलि और उसके बेटे का चेहरा बार बार सामने नजर आ जाता। कैसे सह पाएगी अंजलि ये पहाड़ सा दुख? माँ को जैसे ही खबर मिली वे अंजलि के घर चली गईं। अंजलि को उसके माता पिता अपने पास लेकर आए थे। साक्षी भी अपनी सहेली का दुख बांटने आ गई थी। सुबह होते ही अंजलि के घर चली जाती, रोज रात में रुंधे स्वर में अंजलि की दशा का वर्णन करती। ये सब सुनकर उसका कलेजा टूक टूक हो जाता। एक नजर अंजलि को देखने की उत्कट इच्छा जाग जाती। उसे पता था वो कुछ कह नहीं पाएगा, पर दो पल उसके साथ बैठेगा तो सही। अंजलि को इतना तो जता दे कि उसके दुख से वो भी कितना दुखी है। दूसरे दिन साक्षी के साथ अंजलि के घर गया, जी कड़ा कर गेट के अंदर प्रवेश किया। अंजलि की माँ बाहर वाले कमरे में ही अंजलि के 3 साल के बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। साक्षी अंदर चली गई, वो अंजलि की माँ के पास बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अंजलि की माँ उठी ये जानने के लिए कि अंजलि ने कुछ खाया है या नहीं। साक्षी का बड़ा सहारा है, अनय और अंजलि को बहुत संभाला है उसने। तुम भी आओ बेटा, कहती हुई उसे अंदर बुलाकर ले गई। अंजलि एक कुर्सी पर निस्पंद बैठी थी। साक्षी पलंग पर अनय को एक पिक्चर बुक दिखा रही थी। अंजलि ने आंखें उठाकर उसे देखा और थोड़ी देर देखती ही रही। पत्थर सी आंखें थी उसकी, उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे एक वीरानी सी ठहर गई हो। फिर खिड़की के बाहर नजरें टिका दी अंजलि ने। अंजलि की माँ ने साक्षी से पूछा, अंजलि ने खाया कुछ? खाया क्या, छुआ भर है। अंजलि की माँ ने ही दूसरी कुर्सी खींचकर उसे बैठने के लिए कहा। साहिल अपनी हथेलियों को घूरते हुए जड़ बना बैठा रहा, कुछ भी बोल नहीं पाया। अंजलि खिड़की से बाहर देखती रही। अनय ही उसे शांत बैठा देख अपनी किताब उसके पास लेकर आ गया। वो बाहर निकल आया और एक संकल्प लिया, इन वीरान आंखों में नए सपने उगा कर रहूंगा।

0: कुछ दिनों बाद साक्षी भी चली गई, पर वो सुबह शाम अंजलि को फोन करती और उसे भी अंजलि का हाल चाल पता चलता रहता। साहिल ने साक्षी से ही अंजलि को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा, पर साक्षी का कहना था अंजलि बिल्कुल तैयार नहीं है। आखिर एक दिन अंजलि से वो मिलने गया।
1: अंजलि, तुम एमए कर लो, देखो घर से बाहर निकलोगी तो दिल भी बहलेगा।
2: नहीं, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा और पापा भी कहते हैं अभी रहने दो।
1: अरे लेकिन अगले महीने सेशन शुरू होने वाले हैं, अभी एडमिशन नहीं लिया तो फिर पूरा एक साल रुकना पड़ेगा। जरा सोचो अंजलि, तब तक क्या करोगी, ऐसे ही दुख में डूबी रहोगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगे।
2: देखो साहिल, आगे पढ़ने में मेरी कोई रुचि नहीं है, मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। इतना है मेरे पास कि आने के भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा।
1: नौकरी के लिए कह कौन रहा है, अरे वो तो बात की बात है, अभी एडमिशन तो ले लो। अच्छा फिर भले तुम यूनिवर्सिटी मत जाना।
2: मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं पढ़ना।
1: फिर क्या करोगी, यूं ही उदास बैठी रहोगी? अरे तुम अनय की तरफ देखो, तुम्हें इस तरह उदास देखकर उसका बचपन कैसे गुजरेगा? उसे भी एक हंसती मुस्कुराती मम्मी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे तुम्हारी भी उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? देखो बचपना छोड़ो, मैं एमए का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूं, तुम उसे भर दो और पढ़ाई शुरू करो। देखो तुम समझ नहीं रही हो, जैसे मैं साक्षी को डांट सकता हूं ना, वैसे तुम्हें भी। चलो चलो अभी फॉर्म भरो।
2: ठीक है।
0: शायद अंजलि ने गुस्से में कुछ कहने के लिए सिर उठाया, पर साथ ही अपनी माँ को और उनकी साड़ी पकड़कर सहमे से अनय को देख चुप हो गई और फॉर्म भरने लगी। साहिल पता करता रहता कि कब से क्लास शुरू होने वाले हैं, और जब क्लास शुरू हो गए तो उसने साक्षी को बुलवा लिया। शुरू में कुछ दिन साक्षी ही जबरदस्ती अंजलि को यूनिवर्सिटी लेकर गई। अंजलि सिर्फ पढ़ाई शुरू करने में आनाकानी कर रही थी, एक बार पढ़ना शुरू किया तो फिर उसमें ही रम गई, पर उससे वैसी ही दूरी बनी रही। एक आध बार अंजलि के घर गया भी और पूछा,
1: अंजलि पढ़ाई ठीक चल रही है ना? देखो कोई जरूरत हो तो जरूर बताना।
2: हाँ हाँ ठीक चल रही है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी।
1: कैसी हो?
2: मैं ठीक हूँ, आने चलो देर हो रही है।

0: अंजलि,
1: आज तक तो कभी बात भी नहीं की आपने, अब इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ।

0: अंजलि ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने फर्स्ट क्लास से एमए पास किया और फिर पीएचडी करने लगी। उसे ये सब देख बहुत खुशी होती। उसने जो राह दिखाई उस पर अंजलि आगे ही बढ़ती जा रही थी। माँ अब भी अक्सर साहिल पर शादी के लिए जोर डालती, पर अब अंजलि को यूं अकेला देख उसे अपनी दुनिया बसाने की इच्छा नहीं होती। साक्षी समझती थी, अब वो कुछ नहीं कहती। इस बीच साहिल को दूसरे शहर में एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और उसे दूर जाना पड़ा। अनय के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और अंजलि उसे लेकर ससुराल गई हुई थी। मन में एक कसक तो रहती कि आते वक्त अंजलि को एक नजर भी नहीं देख पाया, मिल पाता या नहीं, कुछ कह पाता या नहीं, या तो किसी बहाने से एक नजर तो देख लेता। अंजलि की मनःस्थिति समझता था, इसलिए वो कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहता था। साक्षी के जरिए अंजलि की खबर मिलती रहती थी। अंजलि की पीएचडी पूरी हो गई और अब एक कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर के रूप में उसकी नियुक्ति हो गई। कभी अपने शहर जाता और अंजलि पर नजर पड़ जाती तो उसे आत्मविश्वास से भरपूर देखकर अच्छा लगता, हालचाल पूछ लेता। अब अंजलि की आंखों में उतना गुस्सा नहीं नजर आता, फिर भी वो ज्यादा बात नहीं करती थी, छोटा सा जवाब देकर आगे बढ़ जाती। पर इतना सा बदलाव भी उसे भला लगता। वो अंजलि को भरपूर समय देना चाहता था। उसे अपने दिल की बात कहने की कोई जल्दी नहीं थी। वो पहले अंजलि को अपने दुख से उबरने देना चाहता था, उसे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहता था, ताकि अंजलि को ये न लगे कि वो उसे कोई सहारा देने के उद्देश्य से ये सब कर रहा है। और फिर जैसे एक राह मिल गई, साक्षी का फोन आया।
1: भैया।
2: हाँ?
1: तुम्हारे शहर के कॉलेज में ही एक सेमिनार है जिसमें अंजलि को भाग लेना है।
2: ओ।
1: हाँ, और ठहरने का सारा इंतजाम कॉलेज में ही है, पर वहाँ ट्रेन शाम को पहुँचती है, नया शहर है और अंजलि ने कभी अकेले सफर भी तो नहीं किया, वो थोड़ा डर रही है। तुम उसे स्टेशन से लेकर कॉलेज तक पहुँचा देना प्लीज।
2: वो तो मैं पहुँचा दूंगा, लेकिन क्या ये सब अंजलि ने तुम्हें कहा मुझे इन्फॉर्म करने के लिए?
1: हाँ हाँ भैया, अंजलि ने ही फोन पर मुझे कहा है कि तुम्हें बता दूं।
2: ओह, तब तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा।
1: वो तो मुझे मालूम है भैया।
0: उसे रात भर नींद नहीं आई, ऑफिस में भी जैसे तैसे काम निपटाया और अब स्टेशन पर था। क्या पता अंजलि कैसे बात करेगी, अब तक अजनबी जैसे ही थे दोनों। पर एक तसल्ली थी, जब खुद ही साक्षी से कहा है तो वो रूखेपन से तो बात नहीं करेगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, ट्रेन पास आती जा रही थी और उसके दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। ट्रेन रुकी, वो कोच के सामने ही खड़ा था। अंजलि गेट पर ही बैग थामे खड़ी थी, उसे देखते ही मुस्कुरा दी और इस मुस्कुराहट ने अजनबीपन की पहली दीवार गिरा दी।
2: वेलकम वेलकम, बैग उठा लूं? अरे डर लग रहा है, कहीं तुम नाराज होकर ये ना कहो कि मैं तुम्हारी हेल्प।
3: साहिल, नाराज होना होता तो तुम्हें इन्फॉर्म करती।
2: तो चलें।
3: इसीलिए तो आई हूँ, बताओ कहाँ चलना है।

साहिल ने बैग हाथों में लिया। अंजलि सहज रूप से उसके साथ चल दी। अजनबीपन की दीवार गिर चुकी थी। दीवार के पार उसे दूर तक जाते एक खुशनुमा रास्ते

वक्त हुआ है 12:55 और ठीक 31 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार 1:10 पर गीत सुहाने मेरे यानी राखी के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंच गए। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने यह भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री के भाषण का संदर्भ देते हुए मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस समय मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ लोगों ने यह धारणा बना ली थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कई पायलटों की जान गई थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये बातें पूरी तरह झूठी थी और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को धूमिल करने के इरादे से प्रस्तुत की जा रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल चेतावनी दी कि जो कोचिंग सेंटर जरूरी सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें दिल्ली में काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वीडियो मैसेज में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत रेगुलेटरी कानून लाएगी ताकि ज्यादा सख्त निगरानी, बेहतर जवाबदेही और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दिल्ली में चल रहे सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे उनकी संख्या 900 हो या 1000, संख्या मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि वहां पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी और उनकी सुरक्षा कैसी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी तरह की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की जानकारी ईमेल, मैसेज या फोन के जरिए दे सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 57 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

डिटेक्टिव फिल्म का गाना आपने सुना हेमंत कुमार और गीता दत्त की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया मुकुल रॉय ने। जब मन शांत हो, रात सुहानी हो या सफर लंबा हो, तब ये गीत दिल के सबसे करीब आ जाते हैं। इनकी सादगी, मधुर बोल और दिल को छू लेने वाले सुर आज भी उतने ही ताजा लगते हैं जितने बरसों पहले थे।

0: बारिश फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और चितालकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया चितालकर रामचंद्र ने। पुराने गीत सिर्फ धुने नहीं होते, वो यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। हर गीत अपने साथ किसी बीते पल की खुशबू, किसी मुस्कान की गर्माहट और किसी अनकही भावना की मिठास अपने साथ लेकर आता है।
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और गीता दत्त की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। जिंदगी की भागदौड़ में जब मन कुछ पल सुकून तलाशता है तब यही मधुर नगमे हमारा हाथ थाम लेते हैं। इनकी हर पंक्ति, हर सुर और हर एहसास दिल के किसी न किसी कोने को छू ही जाता है।

माया फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। बड़ा ही दिल को छू लेने वाला गीत था। इसकी हर पंक्ति में जज्बातों की गहराई थी और हर सुर में एक ऐसी मिठास जो सीधे दिल तक उतर गई। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। ये भी उन्हीं गीतों में से था जिसने बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दिया और मन को भावनाओं से भर दिया।

बेगाना फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सपन जगमोहन ने।

हुआ है 1:31 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आराम फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया अनिल बिस्वास ने। सदाबहार गीत समय की सीमाओं से बंधे नहीं होते, बरसों बाद भी जब वो कानों में पड़ते हैं तो वही अपनापन, वही सुकून और वही एहसास फिर से ताजा हो उठते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ गीत हमेशा दिल के सबसे करीब बने रहते हैं।

अदा फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद की आवाज में। बहजाद लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। तलत महमूद की दर्द भरी आवाज में एक ऐसी नरमी, सादगी और गहराई थी जो सीधे दिल तक उतर जाती थी। उनकी गायकी में शोर नहीं बल्कि एहसासों की खामोश गूंज सुनाई देती है। जब वो किसी दर्द भरे गीत को अपनी मखमली आवाज में गाते हैं तो हर शब्द मानो दिल की धड़कनों का हिस्सा बन जाता है।

वक्त हुआ है 1:47 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

मोहर फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने।

जब प्यार किसी से होता है फिल्म से आपने गीत सुना रफी की आवाज में। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 2 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से

0: कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी ने उनका स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS शिक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में 6,750 करोड़ रुपए की 2 बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में जेवर इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए भारत के प्रमुख केन्द्रों में से एक बनने के लिए तैयार है। परियोजनाओं के महत्व पर श्री वैष्णव ने कहा कि इन सुविधाओं में उन्नत मल्टी लेयर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाए जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी प्रभाव पर बल देते हुए कहा कि प्रस्तावित दिल्ली लखनऊ वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति देगा। कुशीनगर जिले के अहिरौली बाजार पुलिस स्टेशन इलाके में हाटा पिपराइच रोड पर एक कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 25 साल के विवेक सिंह, 31 साल की शालू और 55 साल की माधुरी इलाज के लिए मोटरसाइकिल से गोरखपुर जा रहे थे। आरोपी कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। ये दुर्घटना दोपहर करीब 1:30 बजे हाटा पिपराइच रोड पर सोनबरसा पट्टन के पास हुई। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर एम अभिषिक्त किशोर और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने 30 जून को भारत की राष्ट्रपति की विशाखापत्तनम यात्रा के लिए कल सुरक्षा और प्रोटोकॉल व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने INS डेगा, राष्ट्रपति के यात्रा मार्गों और नोटेल के बैठक स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभी विभागों को प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने और सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, बिजली, पेयजल, चिकित्सा सेवाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए अचूक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि राष्ट्रपति की यात्रा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात मार्ग में परिवर्तन, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और निगरानी सहित व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में घनी आबादी वाले गुलिस्ताए जौहर इलाके में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें कल 3 पैरामिलिट्री जवान मारे गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे से शुरू होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima.

0: वक्त हुआ है 2:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ
1: सा रे गा मा
2: तुम भी गाओ

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ,

भ्रष्टाचार फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ये रात सुरमई है, चांदनी की हल्की हल्की चादर धरती पर बिछी है और हर तरफ एक मीठी सी खामोशी पसरी हुई है। ऐसी रात में दिल अनायास ही किसी अपने को याद करने लगता है। कुछ अनकहे जज्बात, कुछ मीठी यादें और कुछ पुराने गीत सब मिलकर इस रात को और भी हसीन बना देते हैं। सच्ची तो है, सुरमई रातें अक्सर दिल की सबसे खूबसूरत कहानियां अपने साथ लेकर आती हैं।

हो तो ऐसी फिल्म से आपने गाना सुना मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब दिल किसी पर ठहर जाता है तो लाखों चेहरों की भीड़ में भी वही एक चेहरा सबसे अलग, सबसे अपना और सबसे खास नजर आता है। शायद यही मोहब्बत की सबसे प्यारी पहचान है।

तेरी मेहरबानियां फिल्म से आपने गाना सुना अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

वो सात दिन फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, माफ कीजिएगा, इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कहते हैं प्यार सोच समझकर नहीं किया जाता, हो जाता है। यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये न किसी वजह का मोहताज होता है, न किसी हिसाब किताब का। कब कोई अनजाना चेहरा अपना सा लगने लगे, कब किसी की मुस्कान दिल में घर कर जाए, इसका पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कहा गया है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है।

पथ पर आपसे बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही सुरभि सक्सेना के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

प्यार झुकता नहीं फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 27 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगा

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हर्मिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कल इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट ने भी पुष्टि की दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि भारत ने पिछले 12 सालों में हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी तरक्की की है। एक प्राइवेट मीडिया चैनल के डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें एडिशन में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने हेल्थ पॉलिसी को लेकर नजरिया बदला है। अब सरकार सिर्फ बीमारी के इलाज के बजाय अच्छी सेहत पर और सिर्फ बीमारी को ठीक करने के बजाय पूरी हेल्थ केयर पर ध्यान दे रही है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को सबसे अहम माना गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कल मरकापुरम जिले के किस्टम सेट्टीपल्ले गांव में संजीवनी डिजिटल नर्व सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की कि संजीवनी डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम 15 अगस्त से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा, जिसमें हर नागरिक के लिए डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड की सुविधा होगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र से लेकर जिला अस्पतालों और सुपर स्पेशलिटी संस्थानों तक की हेल्थ केयर सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। राजस्व खुफिया निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट के जरिए चीन में बने पटाखे और आतिशबाजी के सामान भारत में तस्करी करने की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अभियान के दौरान निदेशालय के अधिकारियों ने चीन से आए 2 40 फीट के कंटेनर रोके, जिनके बारे में गलत जानकारी दी गई थी। उनमें ट्रॉली बैग और स्पिरर हैं। बारीकी से जांच करने पर पता चला कि इन कंटेनरों में करीब 46,000 पटाखे और आतिशबाजी के सामान छिपाकर रखे गए थे, जिन्हें चालाकी से अन्य सामानों के पीछे छिपाया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Pattrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आपको सुनवाते हैं कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में।

इशारों इशारों में ये हुनर अपने आप ही आ जाता है जब मोहब्बत हो जाती है। और जनाब, रात जितनी गहरी होती जाती है उतनी ही तेरी यादें करीब आती जाती हैं। दिन की भीड़ में तो हम खुद को संभाल लेते हैं, मगर रात की खामोशी हर बार तेरा ही नाम पुकारती है। काश ये फासले भी रात की तरह गुजर जाते और सुबह तेरे साथ होती, तेरे नाम होती। और ऐसे में अगर वो शक्ल, वो मासूम सी शक्ल याद आ जाए तो होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है हमराही और मैं हूं सुरभि आपके साथ। सच्चा प्यार सिर्फ किसी का हाथ थामने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों, खुशियों और मुश्किलों का साथ निभाने का नाम है। जब रिश्ते भरोसे, सम्मान और अपनापन से बनते हैं तो जिंदगी का हर सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो प्यार बांटते रहिए, क्योंकि यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है।

हमराही सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। बहुत खूब कहा है किसी ने कि आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, आंखों में है बसा हुआ तूफान देखना, निकले हैं दिल से मेरे यूं अरमान देखना। भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, भूला हूं जिसके वास्ते मैं अपने आप को, वो भी है मेरे हाल से अनजान देखना, निकले हैं दिल से यूं मेरे अरमान देखना।

कुमार की आवाज में कल आज और कल फिल्म का ये गीत चलिए सुनते हैं हमराही प्रोग्राम में सुरभि के साथ।

मेरे गीतों मेरे गजलों को रवानी दे दे, मेरे गीतों मेरी गजलों को रवानी दे दे, तू मेरी सोच को एहसास का पानी दे दे। मुद्दतों तरसा हूँ मैं तुझसे मोहब्बत के लिए, ख्वाब में आके मुझे यादें वो पुरानी दे दे। तेरी राहों में बिछा रखी हैं पलके मैंने, मेरी आंखों को मसर्रत का तू पानी दे

और इसी गाने के साथ हमराही का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमीनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा दोनों देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमीनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल

0: सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे यूनाइटेड किंगडम की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीईटीए के तहत मिल रहे नए मौकों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत यूके पार्टनर्स इन प्रोग्रेस बिजनेस प्लीनरी की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बात की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा टीईटी परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने आज होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता है। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 2,000 से ज्यादा चार्टर उड़ानों के जरिए 11,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सेवाएं प्रदान की गई, जिससे चारधाम क्षेत्र में सुरक्षित, भरोसेमंद और बेहतर कनेक्टिविटी मिली। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आंधी चलने की आशंका प्रकट की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermony, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermony. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार।

जिंदगी का हर नया कदम अपने साथ नई उम्मीदें, नई खुशियां लेकर आता है। हर शुरुआत खास होती है क्योंकि वही हमें नए अनुभव, नई मंजिलों तक पहुंचाने का रास्ता मिलता है। इसीलिए डर को पीछे छोड़िए, दिल खोलकर आगे बढ़ते रहिए और हर पल को मुस्कुराकर अपनाइए, क्योंकि खूबसूरत सफर हमेशा पहले कदम से ही शुरू होता है।

0: ये दुनिया उसी की होती है जो दिल में प्यार, चेहरे पर मुस्कुराहट और इरादों में सच्चाई रखता है। दौलत और शोहरत से ज्यादा कीमती होते हैं अच्छे रिश्ते और नेक कर्म। इसीलिए हर दिन किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक इंसान की बड़ी पहचान है। दुख कितना भी हो, कितना बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन दुख को आप धीरे धीरे चीजों के साथ बदल कर खुशियां पा सकते हैं। तो चलिए गीतों का सहारा भी लेते हैं, जब दिल उदास हो, मन उदास हो, सुनते हैं ये गीत रफी साहब की आवाज में। फिल्म है कश्मीर की गली।
1: आयो से की

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अरुणिमा और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, भर चुके जख्मों को अब फिर न खरोंचा जाए, इस नए दौर में कुछ हट के भी सोचा जाए। अपनी आंखों को रखो पुश्त की जानिब अपने, जो करे वार उसी वक्त दबोचा जाए, इस नए दौर में

अपने जो नया कोई फसून साज आया, हो रहे उसके हमें याद तेरा नाज आया, याद तेरा नाज आया।

अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, अभी भी एक उम्र पे जीने का न अंदाज आया, जिंदगी छोड़ दे पीछा मेरा मैं बाज आया। पास

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ अरुणिमा। आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा। मेरी किस्मत में तेरे जलवों की बरसात नहीं, तू अगर मुझसे खफा है तो कोई बात नहीं। याद में तेरी कल अश्क बहाना होगा, कल तेरा शहर भी छोड़ के जाना होगा। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले।

और देखिए चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ ही चुके हैं। अरुणिमा धीरे धीरे अपने अंजाम की तरफ है। तो चलते चलते आपको सुनवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत हेमंता की आवाज में, फिल्म है 16 साल। लेकिन उससे पहले किसी ने बहुत खूब कहा है कि आईने का साथ प्यारा था कभी, आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। आज कहते हैं जिसको ना खुदा, हमने उसको पार उतारा था कभी। आईने का साथ प्यारा था कभी, एक चेहरे पर गुजारा था कभी। चलिए सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत हेमंता की आवाज में।

और इसी गाने के साथ अरुणिमा का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। 5:10 पर भोर सुहानी में एक बार फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर कल विक्टोरिया पहुंचे। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हमनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का एक अहम समुद्री साझेदार और करीबी दोस्त है। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें इस यात्रा से अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से चले आ रहे रिश्तों को और मजबूत करना तथा देशों के आम लोगों के बीच आपसी लाभ के लिए सहयोग बढ़ाना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हमनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हमनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और

0: दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कंपनियों से कहा है कि वे ब्रिटेन की कंपनियों के साथ अपने संबंध मजबूत करें ताकि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता के तहत मिल रहे नए अवसरों को लगातार बिजनेस ग्रोथ में बदला जा सके। उन्होंने लंदन में भारत ब्रिटेन व्यापार सत्र की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को मजबूत करने के लिए CETA का एक क्रांतिकारी फ्रेमवर्क के तौर पर स्वागत किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और निर्देश दिया कि इस रैकेट में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये कदम भिवंडी पुलिस द्वारा TET परीक्षा से एक दिन पहले रैकेट के तीन कथित सदस्यों को गिरफ्तार करके एक बड़े पेपर लीक को नाकाम करने के बाद उठाया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव शॉ और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 सालों में स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। देश सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम कर रहा है ताकि हर नागरिक को आसानी से और सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। राज्य मंत्री ने इसका ब्यौरा दिया। एक प्राइवेट मीडिया चैनल में डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव के 9वें संस्करण में उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य योजना को लेकर नजरिया बदला है। अरुणाचल प्रदेश में केई पानीयूर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान कल एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले के उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान आज फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन केमिन मार्ग अब भी बंद है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गई। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. This visit reaffirms the strong and enduring friendship between India and Seychelles and strengthens the shared commitment of both nations to enhance bilateral ties across all sectors. Akshit Vaidyana, Akashwani News, Delhi.
1: Prime Minister Modi reached Victoria yesterday on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 135th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live-streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO, and the Ministry of Information and

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है भोर सुहानी और मैं हूं आपके साथ सुरभि। नमस्कार। सुबह का समय हमें बहुत ही खूबसूरत संदेश देता है कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। बीते हुए कल की चिंताओं को पीछे छोड़िए और आज से पूरे उत्साह के साथ उठिए और आज के दिन को अपनाइए। जैसे हर सुबह नई रोशनी लेकर आती है, वैसे ही जिंदगी भी हर दिन आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया अवसर देती है।